मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के बैसाख माह की

24वीं तिथि, तदनुसार 14 मई सन 2026, प्रातः के 5:57 होने को है। हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स एट 20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य जरूरी उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन भागीदारी से भाग्योदय लक्ष्य के तहत आयोजित किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज का विचार। विषय है स्त्रियों की सबलता पर गांधी जी के विचार। वाचक स्वर बरखा थानवी व्यास का है।
4: नमस्कार, आज का विषय है स्त्रियों की सबलता पर गांधी जी के विचार। मेरा आदर्श ये है कि पुरुष पुरुष रहते हुए स्त्री बने तथा स्त्री स्त्री रहते हुए पुरुष बने। पुरुष को स्त्री बनना चाहिए, अर्थात उसमें स्त्रियों की नम्रता और विवेक होना चाहिए, और स्त्रियों को पुरुष बनना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि उसे भीरुता को छोड़ हिम्मत वाली और बहादुर बनना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों में ईर्ष्या भाव बहुत होता है, लेकिन पुरुषों में ईर्ष्या होती ही नहीं। ऐसी बात नहीं है। उसी तरह सभी स्त्रियां भी ईर्ष्यालु नहीं होती। बात सिर्फ इतनी है कि चूंकि स्त्रियों को 24 घंटे घर में रहना पड़ता है, इसलिए उनकी ईर्ष्या अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पुरुष और स्त्री दोनों निर्भय बन सकते हैं। पुरुष प्राय ऐसा मानता है कि वह निर्भय रह सकता है, लेकिन ये बात हमेशा सच नहीं होती। और इसी तरह स्त्रियां भी अपने को निर्बल मानकर अपने लिए अबला नाम चलने देती हैं। ये बात भी ठीक नहीं है। स्त्रियों को भयभीत रहने

0: की तनिक भी आवश्यकता नहीं। स्त्री और पुरुष दोनों जब तक विकार के वशीभूत हैं तब तक दोनों का भय है। आत्मा का उद्धार आत्मा ही कर सकती है, आत्मा का बंधु आत्मा ही है। स्त्रियों का उद्धार स्त्रियां ही कर सकती है, इसके लिए तपश्चर्या की जरूरत है। यह बात सच है कि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा तपश्चर्या शक्ति अधिक होती है, लेकिन ये तपश्चर्या विवेक पूर्वक की जानी चाहिए। कोई भी दूसरा व्यक्ति स्त्रियों की रक्षा नहीं कर सकता। ऐसा कह सकते हैं कि वे अपनी रक्षा आप ही कर सकती हैं। वे स्वावलंबी बन सकती हैं अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में मेरे अंतर से ये ध्वनि निकलती है कि हाँ, वे स्वावलंबी बन सकती है। यदि वे सत्याग्रह सीख ले तो वे पूर्ण रूप से स्वावलंबी और स्वतंत्र हो सकती है। फिर उन्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत ना रहे। इसका अर्थ यह नहीं कि वे किसी से किसी किस्म की सहायता नहीं ले। जरूरत होने पर वे सहायता अवश्य ले, लेकिन यदि संसार उसको सहायता ना करे तो उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वे निराधार हैं। यदि हम उपलब्ध पदार्थों का उपयोग करते हुए भी अपने मन को उनसे अलग रखें तो हम स्वावलंबी ही रहते हैं। फिर भले ही हम समस्त जगत का आश्रय लें तो भी पराधीन नहीं बनते। यदि कोई आश्रय नहीं भी देता तो भी हमें लगता है कि कोई बात नहीं। उस समय हम क्रोध नहीं करते और ना किसी की निंदा करते हैं। इसका नाम ही सत्याग्रह है। हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। यह बात हमारी बुद्धि में बैठ जाए इतना ही पर्याप्त नहीं, हमें हृदय से ऐसा महसूस करना चाहिए। भय त्याग का मतलब ये नहीं कि हम जगत की परवाह ना करें। मेरा कोई नहीं है, इस विचार का हमें त्याग करना चाहिए। सबका आधार ईश्वर ही है। स्त्रियों को यही विचार करना है कि वे स्वयं कैसे अपने आप को सबल बना सकें और अपनी निर्बलता को कैसे निकाल बाहर करें।
1: आज का विचार कार्यक्रम में अभी आपने सुने स्त्रियों की सबलता पर गांधी जी के विचार। वाचक स्वर बरखा थानवी व्यास का था।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलमारू चैनल है। प्रातः के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। पहली स्तुति अनूप जलोटा और साथियों के स्वर में।

प्रत्येक पंक्ति में एक सुंदर शिक्षा है और यह भजन का आनंद तभी है जब इसमें दी गई शिक्षाओं को ध्यान से सुना जाए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया जाए।

0: रन के भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा।
1: ये कौन है पांच लुटेरे जो दिन रात हमें लूटा करते हैं और हमें मालूम नहीं होता ये हमें लूट रहे हैं और हम इन्हें अपने साथ रखते हैं हमेशा, तो इन्हें पहचानना बहुत

सतीश देहड़ा और साथियों की गई इस स्तुति के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ। इस पाठ में आज आप सुनेंगे बालकांड के दोहा संख्या 65 के पहले चौपाई से दोहा संख्या 67 तक का पाठ।

पिता दक्ष के यज्ञ में पति के निरादर से अपमानित होकर सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला। देवादिदेव महादेव ने जब ये समय

समाचार सुना तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उनसे आदेश पाकर अनुचर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करके सभी देवताओं को दंडित किया। दक्ष की वही गति हुई जो शिवद्रोही की होती है। मरते समय सती ने हरि से यह वर मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव चरणों में उनका अनुराग बना रहे। इस वरदान के फलस्वरूप सती ने पर्वतराज हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से उमा जन्मी तब से ही पिता के घर सारी सिद्धियों और संपत्ति की भरमार हो गई। चहुं ओर सुख तथा समृद्धि का साम्राज्य फैल गया। पर्वतराज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होने लगे। पार्वती के जन्म का समाचार सुन नारद मुनि एक दिवस हिमाचल के घर पधारे। आदरपूर्वक मुनि के चरण धोकर पर्वतराज ने पुत्री को मुनि चरणों में डाल दिया तथा त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ नारद जी से उन्होंने कन्या के गुण दोष बताने का निवेदन किया। मुनि ने मंगल वचन कहे, तुम्हारी कन्या स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। लोग उमा, अंबिका तथा भवानी के नाम से इसकी वंदना करेंगे। ये अपने पति को अत्यंत प्रिय होगी तथा इसका सुहाग अचल रहेगा, किंतु इसकी हस्तरेखाएं संकेत करती हैं कि इसका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेशधारी होगा।

अभी आपने सुना रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ। आज इस पाठ में बालकांड के दोहा संख्या 65 की पहली चौपाई से दोहा संख्या 67 की अंतिम चौपाई तक का पाठ सुनवाया गया। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 4 बजे। ये कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। जिले की चिट्ठी आप सुन सकते हैं शाम 6:40 पर और सिंधी कार्यक्रम का समय रहेगा 12:10। ये दोनों ही कार्यक्रम जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

ग्रामीण श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत शाम 7 बजे। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे सुरक्षित भविष्य के लिए पर्यावरण संरक्षण, पालतू पशुओं का लू व तापघात से बचाव, प्रधानमंत्री आवास योजना, अक्षय ऊर्जा और इसी के साथ लोक संगीत सुनवाया जाएगा। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे मुक्ता जैन और डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युववाणी शाम 5:05 पर। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे ब्लड ग्रुप, बांगर खादर, तापघात से बचें और स्टार्टअप इंडिया। आज की बात का विषय रहेगा युवा और कौशल विकास। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे सुधीर कुमार व्यास, भवानी छंगानी और शारदा नैन।

बहनों का कार्यक्रम होगा घर आंगन दोपहर 1:05 पर। कार्यक्रम में चर्चा के विषय होंगे महिला उद्यमिता, घर से शुरू होने वाले छोटे उद्योग, योग महिलाओं के लिए सर्वांगीण स्वास्थ्य, परवरिश में माँ की विशेष भूमिका, स्मार्टफोन का संयमित उपयोग। कुछ बातें रसोई की होंगी, कुछ ब्यूटी टिप्स के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी मनोज कंवर खंगारोत और खुशबू हर्ष।

0: एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। सौरभ कार्यक्रम में सुनिए गंगा विशन विश्नोई का राजस्थानी कविता पाठ, समय रहेगा सुबह 8:30। ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल अमारू चैनल है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सत्यनारायण शर्मा की वार्ता, विषय है किसान कॉल सेंटर।
1: किसान भैया राम राम। आज आप बात करा विशेष रूपू अपने किसान रसारू और बात आ है के भाई वर्तमान रमने अपा देश रमने खेती किसानी जिका जुड़ा किसान बे अपा पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान रे आधार पर ही अपा खेती करया करा। एक किसान रो जिको बेटो है, किसान जी की संतान है, बा कोई विशेष जी की शिक्षा या ट्रेनिंग जी की भले हुए को नहीं। बे आप पूर्वज जाऊं या बड़े रहू जिको ज्ञान लेवे या सीखे वही तकनीक भाई पुरानी तकनीक जी की है आप खेती में करया करे और फसल जी की लिया करे। भगत रह सागे कई चीजा रो बदलाव जिको आ गयो है। नवासार जी कहे बे आ गया है कई तकनीक जी की है खेती बाड़ी में वापर गई है। कई किस्म जी की है अपने खेती बाड़ी खातर बीजा जी की है पर की है जिकी अपने खेत खातर अपने भौगोलिक जिकी स्थिति है परिस्थिति है बिर अनुसार उचित रिया करे या अपने किस्म या अपने क्षेत्र जिकी मिट्टी है बिर अनुसार किसी फसल जिकी अपने बोनी चीज है और किया खेती अपने बिरी करनी चीज है। तो ऐ सगली जानकारी जिकी है बा अपने यदि मिल जावे भगत सारू तो आपा चोखो मुनाफो जी को है वो खेती ले सका। किसाना खातर के बेन किसी भी चरे रो ज्ञान जी को है पैदावार सारू या कोई उन्नत कृषि तकनीक है बा जानकारी दी लेनी है ई समस्या रो हल दूर करन सारू किसान

सेंटर जी को है आपने सरकार खोलिया। जी की किसान कॉल सेंटर है ई रमेने खेती किसानी जुड़ा जी की समस्या है बियाना समाधान सरु कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित एक किसान हेल्पलाइन निःशुल्क सेवा है जी की शुरुआत जी की है भारतीय कृषि मंत्रालय और भारत सरकार है संयुक्त प्रयासों में करी गई। भारत सरकार द्वारा संचालित ई किसान कॉल सेंटर में एक किसान जी को है देश के किसी भी कोने में बैठो है वो किसान टोल फ्री नंबर 1551 या 1880-1551 पर फोन कर खेती बाड़ी जरूरी किसी भी समस्या रो समाधान जी को है आपरी स्थानीय भाषा में प्राप्त कर सके। जब बात करा अपन राजस्थान में तो आपा हिंदी में जी की है आ जानकारी ले सका। देखो इमें दो नंबर बताया एक तो 1551 तो 1551 जी का नंबर है BSNL रा लैंडलाइन फोन आपा करा तो 1551 डायल करा तो अपनी बात भी में हो जावे या किसी दूसरे लैंडलाइन या मोबाइल पर बात करनी है तो 1881-1551 ई नंबर पर अपा डायल कर परा अपनी समस्या नो समाधान जी को है किसान कॉल सेंटर सु ले सका। किसान कॉल सेंटर जी का है टोल फ्री नंबर उत्तर प्रदेश

0: सोहनी देवी के स्वर में आपने ये लोक भजन सुना। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आर्थिक विषयिकया मंत्रिपरिषद समित्या अस्मै विपणन सत्राय 14 ग्रैष्मिक सस्यानां एमएसपीति न्यूनतम समर्थन मूल्यानि वर्धयितुम् अनुमोदितम्। नवदेहल्यां केंद्रीय मंत्रिसभा सभायाः अनन्तरं प्रसार माध्यमान् संबोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अनेन निर्णयेन उत्पादकेभ्यः तेषां उत्पादानां कृते लाभप्रदं मूल्यं सुनिश्चितं भविष्यति इति।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: अस्य सत्रस्य विपणन कालाय ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यानां वृद्धिं स्वीकृत्य नवदेहल्यां केंद्रीय मंत्रिसभायाः निर्णयः देशे कोटिशः खाद्य प्रदायकेभ्यः स्वोत्पादानां उचितं लाभप्रदं च मूल्यं प्राप्नुयात् इति सुनिश्चितं करिष्यति इति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वस्तनादारभ्य अस्य मासस्य 20 दिनांकपर्यन्तं UAE, नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली इत्येतेषां देशानां यात्रायां भविष्यति। विदेश मंत्रालयस्य सचिवः CB जॉर्जः सूचितवान् यत् पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य प्रथमपादे श्रीमोदी UAE अध्यक्षं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मिलिष्यति। सः अवदत् यत् उभावपि नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतः ऊर्जा सहकारे परस्पर हितस्य क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयेषु च विचार विनिमयं करिष्यतः। अद्य नवदेहल्यां ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य द्विवार्षिकं सम्मेलनम् आरभ्यते। सम्मेलनस्य अध्यक्षः विदेशमंत्री एस जयशंकरः भविष्यति। ब्रिक्स देशानां विदेशमंत्रिणः सदस्यराष्ट्राणां प्रतिनिधिदलप्रमुखाश्च अस्यां सभायां भागं ग्रहीष्यन्ति। केन्द्रीय अन्वेषण विभागः NEET UG 2026 इति परीक्षायाः विषये अभिकथित अनियमिततायाः प्रश्नपत्रस्य अनियमिततया प्रकाशनेति विषये च 5 अभियुक्तान् गृहीतवान्। प्रकरणस्य 5 अभियुक्ताः जयपुरतः 3, एकैकौ गुरुग्राम नाशिकतः, अन्ये अनेके च संकिताः सम्प्रति परीक्षमाणाः सन्ति। असम सर्वकारः अस्य मासस्य 26 दिनांके राज्य विधानसभायां यूनिफॉर्म सिविल कोड UGCC इति समान नागरिक संहिता विधेयकं

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कह सकते हैं कि आधारभूत मूलभूत सुविधाएं जो हैं उनका होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और देखिए, सरकार के द्वारा भी बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं, बहुत से ऐसे कार्यक्रम बनाए जाते हैं जिनके माध्यम से अलग अलग वर्गों का जो है विकास उसमें शामिल होता है। बात करते हैं हम प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम की, जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोगों के लिए एक व्यापक पहल की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है। खास बात यह है कि शिक्षा, आर्थिक अवसर और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित ये कार्यक्रम सन 2006 में शुरू हुआ। विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया और प्रयास किया गया कि किस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को समान अवसर प्राप्त हो सकें। बात अगर शिक्षा की हम करते हैं तो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति के माध्यम से शिक्षा तक पहुंच में सुधार और आधुनिकीकरण। शिक्षा हम सभी के लिए आवश्यक है, तो भला क्यों कोई वंचित रहे? क्या वर्ग, क्या अल्पसंख्यक या कोई भी समुदाय हो, उसे शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसीलिए सरकार के द्वारा ये काम किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, ऋण योजनाओं में भागीदारी, स्वरोजगार और कौशल विकास के लिए बढ़ावा देना, कहने का तात्पर्य ये कि उनको आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से मेन स्ट्रीम में शामिल करना, विकास की मुख्य धारा में शामिल करना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है इस 15 सूत्री कार्यक्रम की। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना जैसी योजनाओं के द्वारा बुनियादी ढांचा जो है उसको मजबूत किया जाए, उन्हें आवास दिए जाएँ, उनके रहने की व्यवस्था की जाए, इसी के साथ साथ उन्हें वो बुनियादी आवश्यकताओं की भी पूर्ति की जाए जो आवश्यक हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए बहुत सारे उपाय सरकार के द्वारा किए गए हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है और सबसे मुख्य

बात कि 25% से अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि अगर किसी क्षेत्र में ऐसा कोई अल्पसंख्यक समुदाय है जहां पर आबादी का 25% समुदाय अल्पसंख्यक है, तो वहां पर ये योजनाएं बहुत बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कार्य कर रही हैं। सरकार के द्वारा विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं श्रोताओं, लेकिन बस ये है सवाल कि कदम हमको स्वयं को बढ़ाना पड़ेगा, योजनाओं की जानकारी हमको स्वयं को रखनी होगी, तभी हम इनका लाभ बढ़ा पाएंगे।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान।
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: श्रोताओं, अब बात करते हैं मौसम की। आप देख रहे हैं मौसम का हाल और इस हाल से हम सब हैं बेहाल, लेकिन इस बेहाली में जीवन को चलाना तो ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है, घर से बाहर निकलना भी ज़रूरी है। हाँ, जिनका काम चल सकता है घर से बाहर बिना निकले वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कामकाजी लोग हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, उन्हें तो घर से बाहर निकलना ही होगा। और ऐसे में ये समय हमारे लिए बहुत कष्टकारी है, अपने आप को सचेत रखने का है, सावधान रखने का है, क्योंकि दोपहर 12 से 4 बजे के बीच में जो लू है वो चलती है। और ऐसे में समय समय पर चेतावनाएं भी हम पढ़ते रहते हैं कि इस समय में जो है वो बाहर जाने से बचना चाहिए, लेकिन काम है, मजबूरी है तो निकलना ही पड़ता है। और ऐसे में कुछ सावधानियां रख करके हम निकल सकते हैं, जैसे कि हम सूती कपड़े पहने जो कि हल्के हों, जिनके माध्यम से हमारे शरीर को हवा लगती रहे। इसी के साथ साथ जब भी घर से निकलें तो नींबू पानी, लस्सी है, छाछ या ORS का सेवन करके निकलें। सिर हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। आप स्कार्फ लगा सकते हैं, टोपी लगा सकते हैं, हेलमेट तो अगर आप वाहन पे हैं तो आपको लगाना ही है। इसी के साथ साथ श्रोताओं, ये भी कहा जाता है कि कच्चे प्याज का सेवन जो है वो बहुत ज़्यादा इस समय में किया जाए तो लू लगने के जो संभावनाएँ हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। तो ऐसे में भरपूर पानी पीना हमें हाइड्रेट करे रखता है। हम इंतजार न करें कि हमें प्यास लगे हम तभी पानी पिएं, समय समय पर हमें पानी पीते रहना चाहिए। आम का पना, बेल का शरबत, नारियल पानी और छाछ, ये सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहनना भी हमारे लिए सेहतमंद है। और जैसा कि हमने आपसे चर्चा की, दोपहर 12 से 4 बजे के बीच जहाँ तक हो सके आप जिस स्थान पर हैं उसी स्थान पर रहें, आवागमन ना करें। एक बार अगर लू लग जाती है श्रोताओं तो हमें तुरंत छांव में या ठंडी जगह पर चले जाना चाहिए, ठंडे पानी की पट्टियां रखनी चाहिए और हवा के संपर्क में आना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि कहीं पर स्थिति गंभीर है तो डॉक्टर से भी हम संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और उपाय है, वो है
5: ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए।
4: जी हाँ श्रोताओं, ये एक उपाय है जिसके माध्यम से हम अपने आप को लू से बचा सकते हैं। लेकिन हाँ, सवाल यही है कि अगर हम गर्मी से आकर के तुरंत ठंडे ठंडे पानी से नहाएंगे तो फिर हमें नुकसान हो सकता है। इसके लिए हमें थोड़ा अपने आप का पसीना सुखाना है, थोड़ा हवा के संपर्क में आना है, उसके बाद फिर हम नहा सकते हैं ठंडे ठंडे पानी से।

0: पड़ोसियों से
1: क्या
0: झांके न खिड़कियों से
1: दरवाजा खटखटाया लगता है कोई आया
0: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब नहा रहे हैं
1: मम्मी को तो डैडी से

जीवन की यही सबसे खासियत है कि जब हम अपनों के साथ होते हैं तो फिर हमें चाहे गाना आए या ना आए हम गा ही लेते हैं, नाचना आए या ना आए हम नाच ही लेते हैं, हमारे कदम खुद ब खुद थिरक ही उठते हैं। यही अपनों की खासियत है श्रोताओं, और यही उनसे हमारा जुड़ाव है, हमारा लगाव है कि हम उनके साथ अपनी हर खुशी बांट लेना चाहते हैं, हर दुख को हम उनके साथ बैठ के कम कर लेना चाहते हैं। जहाँ दुख कम होते हैं वहीं खुशियाँ उनके साथ होने से बढ़ जाती हैं, चार चांद लगाती हैं हमारे जीवन में, और इन्हीं खुशियों के बदौलत श्रोताओं हमारी ज़िंदगी निरंतर चलती रहती है। और इसी निरंतरता को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि हम लगातार अपने जो काम हैं उनको करते रहें। जो भी हमारे कार्य हैं वो हम उस तरीके से प्लान करें, उस तरीके से उनका एक ऐसा खाका बनाएं, एक योजना बनाएं जिससे हमें असफलताओं से दूर रहना पड़े, हमें सफलता के नज़दीक आना हो। निरंतरता सफलता की कुंजी है, ये आप और हम सभी जानते हैं। और इसके लिए खास बात यह है श्रोताओं कि हम छोटे छोटे लक्ष्य बना सकते हैं अपने। बहुत बड़े बड़े लक्ष्य एकदम से होंगे तो मन कई बार डर जाता है, और इसीलिए हम कहें कि हम छोटे छोटे कामों को करें तो लगातार हम मेहनत जब करते रहेंगे तो हमें बड़े और भारी काम जो है वो करने की भी आदत हो जाएगी। दैनिक दिनचर्या हमारी प्लान्ड होनी चाहिए, क्योंकि जब हम एक काम सही समय पर करते हैं तो फिर हमें उसकी आदत बन जाती है। छोटे छोटे कामों के माध्यम से हम अपने आप को शुरू कर सकते हैं, अपने काम को शुरू कर सकते हैं, जो कि हमें ऊर्जा से भरा हुआ रखता है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि हम अपने आप को खुद अपने आप से नापें, जानें कि हम कितनी प्रगति कर रहे हैं, कल हमने क्या किया था, आज हम कहीं क्या कर रहे हैं, और सबसे खास बात कि हमें प्रेरणा कहाँ से मिल रही है, क्या हम सही रास्ते पर हैं या नहीं, ये भी हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार मन ऐसा होता है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता, लेकिन काम तो करना है, तो इसीलिए हम अपने मन को हारने न दें,

है ना कि मन मजबूत है तो काम के परिणाम अच्छे होंगे। तो मन को अपने मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को जो है हमेशा पुरस्कृत भी करें, अपने आप को धन्यवाद भी दें जो आपने मेहनत करी है, जो आपको परिणाम मिले हैं उसके लिए। अगर परिणाम नहीं भी मिले हैं तो भी जो आपने मेहनत करी है उसके लिए आप हकदार हैं प्रशंसा पाने के। कई बार मन में डर रहता है, हम असफल भी होते हैं, लेकिन ये असफलता हमें नई दिशा की ओर ले जाती है, और ये नई दिशा हमें अभी इसी वक्त ध्यान में रखनी होती है और उसी पर केंद्रित होना होता है कि हम किस प्रकार से अपने आप को जो है वो इस ओर ले जाए रखें, लगातार बढ़ते रहें, क्योंकि निरंतरता से ही सफलता निश्चित ही मिलती है, और ये सफलता हमारे जीवन में यही एक रोशनी पैदा करती है कि किस प्रकार से हमारे जीवन के जो ये पल हैं, ये क्षण हैं, ये दिन हैं, ये जो समय है, ये हंसते हंसते ही कट जाए।

जिंदगी यूं ही चलती रहे, लेकिन हाँ, हम एक ऊपर वाले से प्रार्थना जरूर करते हैं कि जरा आहिस्ता चल जिंदगी। ए जिंदगी आहिस्ता चल, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है, आहिस्ता चल जिंदगी। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूट गए कुछ छूट गए, रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए कुछ छूट गए, रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है, आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए, कुछ रिश्ते बनते बनते टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए, उन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है, आहिस्ता चल ए जिंदगी, अभी कुछ दर्द मिटाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम भी और ज़रूरी हैं, जीवन की उलझ पहेली को पूरा सुलझाना बाकी है, आहिस्ता चल ए जिंदगी, कुछ दर्द मिटाना बाकी है। जब सांसों को थम जाना है, फिर क्या खोना क्या पाना है, जब सांसों को थम जाना है, फिर क्या खोना क्या पाना है, पर मन के जिद्दी बच्चे को यह बात बताना बाकी है, पर मन के जिद्दी बच्चे को यह बात बताना बाकी है, आहिस्ता चल ए जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। श्रोताओं, चंद पंक्तियां हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई। दिन रात की भाग दौड़ में हम बहुत कुछ भूलते हैं, और ऐसी ही कुछ चीज़ें हमारे मन के अंदर होती हैं जो इन पंक्तियों के माध्यम से परिलक्षित होती हैं, कि हम कई बार जुड़ते जुड़ते रह जाते हैं, टूटते टूटते बिखर जाते हैं, लेकिन यही बिखराव हमें अंदर से भी तोड़ता है, और हम कई बार ऐसा होता है ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि जो हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें तो हमेशा अपनी ज़िंदगी को आगे ही बढ़ाना है।

जी हाँ श्रोताओं, हम अकेले नहीं हैं, हमसे औरों का भी जीवन जुड़ा हुआ है। तो सभी का ख्याल रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए हम इस दौर को हंसी और खुशी के साथ पूरा व्यतीत करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज का ये कार्यक्रम बस यहीं तक, आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात, आकाशवाणी बीकानेर का। ये ढोल अमारू चैनल है। सुबह के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

लक्ष्मीकांत पेरीलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम था हीरो।

एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम था अभिमान। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा गीत आपने सुना। मुकेश, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में फिल्म का नाम था संगम। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में आपने गीत सुना। फिल्म का नाम था महुआ। गीत को लिखा था कमर जलालाबादी ने और संगीत सोनिक ओमी का था। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म सहरा के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर सुबह के 8 बज रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
2: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स A20 लचीलापन, नवाचार और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
3: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
4: The UAE is an important partner.
5: UAE हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल UAE भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्ति करता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। LNG के क्षेत्र में भी

0: भारतीय कंपनियों और यूएई की आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 एमएमटीपीए एलएनजी की आपूर्ति की जाएगी।
1: एमएमटीपीए एलएनजी टू इंडिया।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच आबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
3: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
3: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
5: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
8: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
3: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
9: मौसम में

0: में अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
2: अमरीकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमरीका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराइकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल

0: रही हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, चार और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Two-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grains and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1 year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. And now the news in detail. A two-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Global leaders have arrived in the national capital ahead of the BRICS foreign ministers meeting. The leaders who arrived here yesterday include Foreign Minister of Iran, Sayed Abbas Araghchi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand, Sihasak Phuangketkyo, Foreign Minister of Cuba, Bruno Rodriguez Perella, and Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Nguyen Minh Hang. Other leaders who arrived were Foreign Minister of Malaysia, Dato Seri Utama Muhammad bin Haji Hassan, and UAE's Minister of State, Ministry of Foreign Affairs, Khalifa Shaheen Al-Marar. A report.
3: During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. The BRICS foreign ministers held their last meeting on the margins of 80th session of the United Nations General Assembly on 26 September 2025. The meeting was chaired by India in its capacity as the incoming BRICS chair for 2026. Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
2: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement.

0: Rebel AIADMK MLAs. The same newspaper also informs decision on Kerala CM will be announced today. Indian ships given priority pass in Strait of Hormuz, says Iran Deputy Foreign Minister, writes the Pioneer. US President Donald Trump given a red carpet welcome in China. The Asian Age carries his picture during the welcome ceremony. The paper headlines, Trump in China on three-day visit to hold Xi talk on Iran war and trade. The Times of India writes, dealmaker and dragon, Trump seeks to do business with Beijing. The Hindu in its editorial title, Testing Troubles, writes that leaks and breaches have destroyed the National Testing Agency's credibility. The K. Radhakrishnan Committee, which was constituted to recommend reforms in the examination process, recommended restructuring of the NTA and creating strong institutional linkages with state and district authorities in order to produce a secure test administration apparatus. And finally, the Times of India writes, in a rare and emotional moment during proceedings linked to passive euthanasia, the Supreme Court praised the family of Harish Rana for donating his corneas and heart valve after permission was granted to withdraw life support, observing that his life continues in others through the noble act. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Two-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grain and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1 year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and NewsOneAir app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। सुबह के 8:30 हुए हैं। सौरभ कार्यक्रम में आइए सुनते हैं गंगा विष्ण विष्णुई का राजस्थानी कविता पाठ।
3: राजस्थानी भाषा री मारी कविता जो शीर्षक है मैं माटी हूं। इया ही समझ लोगा करी खेंचल मने आप आपरी मर्जी मुजब सांचे में ढालन री। इया ही समझ लोगा करी खेंचल मने आप आपरी मर्जी मुजब सांचे में ढालन री। आपरी जबान देवन री भूल गया शायद माटी री आपरी खिमता व्या करे बा छाती में लुको रख। बे भूल गया शायद माटी री आपरी खिमता व्या करे बा छाती में लुको रखे आसरा बीज जका पगारे मतो मत। आसरा बीज जका पगारे मतो मत हरेक माटी सो नी गिड़ा जा सके। मन बुझब आकार हरेक माटी सु नी घड़िया जा सके। मन मुजब आकार कदई माटी भी घड़े आपरो स्वरूप। खीप बावलिया खेजड़ी में बने आसरो जीव जिनावरारो तपते थार में। जीव जिनावरारो तपते थार में। मारी दूसरी कविता है जिगिर नाम है बेलीपो। मैं बैठे हो गतागम में घोर अंधेरे में लागे जीवन में। लागे जीवन में सिवा इन कालखरे और की नहीं है मारे सारू। मैं बैठे हो गतागम में घोर अंधेरो और लागे जीवन में सिवा इन कालखरे की नहीं है मारे सारू। सेवट करूँ तो काई की मार्ग नहीं सूझे। सेवट करूँ तो की मार्ग नहीं सूझे। कोई रोशनी रे लीक नहीं लाते किनरे कहूँ और कुण सुने। किनरे कहूँ कुण सुने शहर रिंद रोई में सुशियर चमगंगो होयडो डरूं फरूं। मन हिवलास मारे जो हिवलास हिमिंट जंगल माए कठे लादे कोई मीत कोई यार कोई बेली। कठे लादे कोई मीत कोई यार कोई बेली अचानक आवाज सुनी जी गंगा ओ गंगा। मन रो बेम काना रो भरम लग गयो। मन रो बेम और काना रो भरम लाग गयो और मैं रेल री पटरी पर

बढ़तो गयो, मैं रेल री पटरी पर आगे बढ़तो गयो। धमीड़ू पड़िया मोहरा में और सर सर सुनिजो गाड़, जिकी देऊं तो मारो बाल गोठियो। क्यों तो अरे भाई कठे भटक तो फिरे बावड़ा, लाग्यो के मिठास की सुरज हो गयो है, लाग्यो की मिठास सुरज हो गयो है। पड़का मारती ए बीरी गाड़ियाँ, जाना जीवन रो इमरत लेर आई है, जाने जीवन रो इमरत लेर आई है। मारा बेली तू भलो आयो नी, उन हाथ मारे खोआ माथे धरियो गाने, उन रो हाथ मारे कांधे माथे धरियो, जाने साक्षात भगवान कृष्ण मारो कांधो सांभियो। आंसुड़ा में बेहूं तो सगड़ो कलमस, आंसुड़ा में बेहूं तो सगड़ो कलमस, हरखरो हिमाड़ो बण सामी आयो और बण गयो, और बण गयो मारो कानो, जाने मारो भाईलो आयो। वो कहो चाल चाय पी रहा, मारी आंखें में तिर गया बे पुराना चित्र, जद ऊंची बोटी माथे चढ़ डाल आपरे भार सुन चुकाई देऊं तो हो, और मारी बेली बोरिया भेड़ा कर तो, डाल आपरे भार सुन चुकाई देऊं तो हो, और बेली मारा ए बोरिया भेड़ा कर तो, आप आपरा जोड़ा माटो हड़को होनो जरूरत मुझे काम में लेऊं ता। हारा बेली आ थारो वजन सु ज्यादा लागे कि तू भारी, आज तू थारे वजन ज्यादा लागे कि तू ये भारी, आज तू मोड़ो लायो और गता गम चेतना ने जलाई दी, आज तू घणो मोड़ो आयो, गता गम चेतना ने जलाई दी बेरियारी आस, जलाई दी तू बेरियारी आस, आज तू जलाई दी बेरियारी आस। मारी राजस्थानी भाषा री एक और रचना है, जो नाम है बाबू जीरो हाथ। अदराते अदराते को डरावने सपने सु कांपती काया, अदराते कोई डरावने सपने सु कांपती काया, और पसीने सु तर बतर माथे पर अचानक निवासो परसो। अदराते कोई डरावने सपने सु कांपती काया, और पसीने सु तर बतर माथे पर अचानक निवायो परसो। मैं आंखें खोल देखियो बाबू जी शरणे बैठ्या, मैं आंखें खोल देखियो बाबू जी शरणे बैठ्या, मारा सिर पड़ोस रहा, मैं काटो हाथ जा लियो। पूछो बाबू जी सिद्ध गए परिया, इन बटको बढ़ती दुनिया में मन एकलो छोड़, इन बटको बढ़ती दुनिया मन एकलो छोड़, बाबू जी सिद्ध गए परिया, मने क्यों नहीं सिखायो थे एकलो रहनो, मने क्यों नहीं सीखो सही दुनिया में एकलो रहनो, झूठ बोलनो हक मारनो। बाबू जी हूँ घर उड़ जाऊँ तो बारे उड़ जाए, बारो मैं सांभू तो मन खिंड जावे, बाबू जी मैं घर उड़ जाऊँ तो बारो उड़ जाए और बारे सांभू तो घर मन खिंड जावे। बाबू जी जब आपने वीर होनो ही हो तो कम सु कम दुनियादारी री ए इनरी आंकी बांकी चाला तो समझार जाऊँ ता। बाबू जी थाने जद आपने वीर होनो ही हो तो कम से कम दुनियादारी री इन आंखें बांके चाला तो समझार जाऊं ता। आप क्यों बरगद ज्यों छत्र छाया रहा थे मारा, क्यों मुंडे निकलते उनसे पहला हरेक बात थे मारी पूरी कर दी। बाबू जी मारी मांग ज्यों घरों आंगनों अडेड़ो लागे, मारे ओढ़निया रे साथे साथे आख्या घरा रंग भी अलोप हो गया, मारे ओढ़निया साथे साथे मारा ओढ़निया ने साथे साथे आख्या घरा रंग भी अलोप हो गया, और मक्सी पड़ गई वाखड़ गई रौनक, और गोरती गाय रूणी टीकली बछड़ी अजय पेरोल कानी आप नहीं तकावे। बाबू जी भरे पूरे घर में आप रे खंखरे बिना सुनियाड़ बापोड़ी है, बाबू जी भरे पूरे घर में आप रे खंखरे बिना सुनियाड़ बापोड़ी है, बापरोड़ी है, आपरो लगायो हर श्रृंगार झूर झूर, आपरो लगायो अदरा ते गो डरावते सपने सु,
अदरातें

कोई डरावणे सपने सो कांपती काया, हर पसीने सो तरबतर माथे पर अचान चक निवासो परसो। अदराते कोई डरावते सपने सो तो कांपती काया, हर पसीने सो तरबतर माथे पर अचान चक निवायो परसो। मैं आंखियां खोल देखियो, बाबूजी शरणे बैठिया। मैं बाबूजी शरणे बैठिया हा, मारा सिर पड़ोस रिया। मैं काटो हाथ जाल, पूछे पापा जी सिद्ध गे प्रिया। ई बटको बढ़ती दुनिया में मन एकलो छोड़, बाबू जी तछित गे प्रिया। दुनिया बढ़ती ई बटको बढ़ती दुनिया मन एकलो छोड़, बाबू जी मन क्यों नहीं सिखायो थे एकलो रहनो, झूठ बोलनो, हक मारनो। मन क्यों नहीं सिखायो थे एकलो रहनो, झूठ बोलनो, हक मारनो। बाबू जी घर सुड़ जाऊँ तो बारो उड़ जाए, और बारो सामू तो घर खिंड जावे। बाबू जी जद वीर होनो हो तो कम से कम दुनियादारी री इन आंखी बांके चाला तो समझार जाऊँता। बाबू जी जद वीर होनो हो तो ये दुनियादारी री आंखी बांके चाला तो समझार जाऊँता। आप क्यों बरगद जूं छत्र साया रहा मारा, क्यों मुंडे से निकलने से पहले हर एक बात थे पूरी कर दी। बाबू जी मारी मांग जूं घरों आंगणों अडोड़ो लागे, मारी ओढ़णी रे साथे साथे आखे घर री रंग यालो पो गई। और मक्सी बड़गी बाखड़गी रौनक, गोरती गाय उन टीकली बछड़ी अधे पेरोल कनी तकावे आपने। बाबू जी भरे पूरे घर में आप रे कंखारे बिना सुनियाड़ बापड़ी, सुनियार बापड़ी। आपरो लगायो हर सिंगार झूर झूर, आपरो लगायो हर सिंगार झूर झूर, छोटे भाई जूं सुकण लाग्यो। बाबू जी आपरे हाथ रो पर्स मारी सकली चिंता तनाव रो राम बाण हो, आपरे स्पर्श मारी सकली चिंता तनाव रो राम बाण हो। आप क्यों इन जिया जून में एकलो छोड़ मन छिटका दियो। बाबू जी मुड़कता बोलिया, नी मैं तेने छिटकायो ना एकलो छोड़ियो, नी मैंने छिटकायो ना एकलो छोड़ियो। ये जीवन री महाभारत में तन मैं लड़नो ही सिखायो, तू ही मारो कृष्ण है, तू ही मारो अर्जुन है, तू ही मारो कर्ण है। दुनिया री कई रीत है, कई ढाल बात चाले बिन समझ, सतरो मार्ग मत विसराए। दुनिया कई रीत कई ढाल चाले बिन समझ, सतरो मार्ग मत विसराए। मंदरी आस को ऊपड़ हुसी, विश्वास तू हरी रखे जे मारी लाडे सर। ये अखबार ये बखाया थारी परीक्षा है, आ कसौटी है मारे सीख री। ये बखाया थारी परीक्षा है, आ कसौटी है मारे सीख री। थारो दिजो इन पड़ुतर है, कर्म यात्रा रे हरेक मान खेर है, आप पूरी करनी पड़सी। तू अंश है मारो इं हारिया नहीं सरेला, तू अंश है मारो इं हारे नहीं सरेला। मोह छोड़ और कर्म कर। बाबू जी हाथ फेरता अलोप हो गया, बाबू जी माथे पर हाथ फेरता अलोप हो गया। मारी आंखियां सामने खुली, मारी आंखियां साची ने खुली तो सामने देखियो गीता रा पाना खुलिया, और मारी हाथ में मोर पंख मुट्ठी में हो, मारे हाथ में मोर पंख मुट्ठी में हो। अब हमारी अगली रचना है जी, मेरा नाम है आकाश। जू विस्तरित मन मारो, जू विस्तरित मन मारो, अनंत रे लहर का बिचाड़े भी तने जौन रे खेचड़ करतो। जू विस्तरित मन मारो, अनंत रे लहर का बिचाड़े भी तने जौन रे खेचड़ करतो। हर एक तारे में गुथ्योड़ी एक निर्वाणी कहानी, हर कहानी में बेउदे भगतरी धार। हर एक तारे में गुंथोड़ी एक निर्वाणी कहानी, और कहानी में बेउती है भगतरी धार। और इन नसीम सो परिया है वजूद मिनख रो, उन रे प्रेम रो चाहे थारो और चाहे मारो। वितान रे हेठ है, वितान रे हेठ है मैं माटी रलनिया, फिर भी अमीरा घुट पीउड़ा सा मिनख। उगेरा है तेरा सुर जका बन जावे अण इनतरो हिस्सो, जका बन जावे इन अनंतरो ईसो। नदी बाखर मरु भौम तितली,

गया नक्षत्र जका बन जावे इन नंत्रो ईसो नदू बाकर मरुभौम तितली और नक्षत्र उनरी आबा और पिछाण सु जोवे आकाश। उनरी आबा और पिछाण सु जोवे आकाश वो तुरे उनरे विस्तार में पाऊँ थारी छिप कांजी पाऊँ थारी किन पाऊँ थारी छिप कांजी राधा रे हिडर विस्तार थारी बसरी सरा सुर आसमान दीप हो गए थारी बंसरी सा सुग्र आसमान दीप हो गए। मारी अगली रचना मारे अगली रचना का नाम है आज फेर। आज फेर नी जाने क्यों मन आंकड़ बांकड़ है। आज फेर नी जाने क्यों मन आंकड़ बांकड़ है नी जाने क्यों कालज में कड़जड़ है। इन बाबत सोचूं करूं घणो विचार इन बाबत सोचूं करूं घणो विचार चेते आवे ओड़ू मारी चेते आवे ओड़ू मारी टाबर पणेरी अर फूक जाऊं बाल पण में और पूग जाऊँ बाल पड़े में हरखूँ मारे लाडसूँ खेलूँ भाईला रे साके खाऊँ बाउजरी डांट पण रहूँ एकदम मस्त मस्त इन भात हमेशा सूँ ज्यों बुढ़ाई दूँ मन री आंकड़ बांकड़ हमेशा सूँ बुढ़ाई दूँ मन री आंकड़ बांकड़ और काल जरी कड़जड़ने और काल जरी कड़जने काल जरी कड़जड़ने।

अभी आपने सुना सौरभ कार्यक्रम में राजस्थानी कविता पाठ। कवि थे गंगा विशन विश्नोई। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं बेगम आबिदा परवीन।

0: आबिदा परवीन को आपने सुना सुगम संगीत में। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अब आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागौर और जोधपुर जिले के दौरे पर। मेड़ता सिटी में राव दूदा और जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों और पशुपालकों से जैविक खेती अपनाने और युवाओं से कृषि से जुड़ने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने देर रात 187 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी। हालांकि सीकर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागौर और जोधपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे नागौर के मेड़ता सिटी में मेड़ता के संस्थापक राव दूदा की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इनके अलावा केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर, पंजाब के पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। प्रतिमा अनावरण के बाद जनसभा का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय रक्षा मंत्री चार भुजानाथ मंदिर और मीरा मंदिर दर्शन के लिए भी जाएंगे। इसके बाद वे जोधपुर पहुंचेंगे। वहां श्री सिंह रातानाड़ा चौराहे पर आयोजित पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा अनावरण समारोह में भाग लेंगे। समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों और पशुपालकों से जैविक खेती अपनाने और रासायनिक खाद के प्रयोग से बचने की अपील की है। उन्होंने युवा पीढ़ी से खेती और कृषि से जुड़ने के साथ स्थानीय पैदावार के अनुसार प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने को कहा है। मुख्यमंत्री कल जालौर के पंसेरी गांव में किसानों और पशुपालकों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आम जन की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार किया है ताकि राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित हो। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान चलाकर प्रदेश की सभी पंचायतों के सुनियोजित विकास का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं से भी संवाद किया। महिलाओं ने उनसे अपने अनुभव साझा किए। श्री शर्मा ने कहा कि राजीविका से जुड़ने के बाद राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं।
2: हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना राजीविका की लखपति दीदी की योजना ये चलाई है। आज इसमें 22 लाख बहनों को ट्रेनिंग इसमें राजस्थान के अंदर मिली है और लगभग 17 लाख बहन हमारी लखपति दीदी बन गई है।
1: मुख्यमंत्री ने आज सुबह पंसेरी गांव का पैदल दौरा भी किया। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रदेश में पेयजल और बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता

0: देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पानी और बिजली आपूर्ति को लेकर आमजन को किसी तरह की परेशानी ना हो, इस संबंध में शिकायतें मिलने पर संबंधित जिला कलेक्टर और विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। श्री शर्मा ने कल मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि सभी कलेक्टर नियमित रूप से पानी बिजली आपूर्ति को लेकर साप्ताहिक बैठकें कर मॉनिटरिंग करें और संबंधित शिकायतों का विभागीय अधिकारी प्राथमिकता के साथ तुरंत निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि गर्मी के दौरान आमजन को राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने पेट्रोल डीजल बचत के लिए सभी अधिकारियों को वाहनों का कम से कम उपयोग करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने कार पूलिंग व्यवस्था अपनाने के निर्देश दिए। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। वैश्विक नेता नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। इससे पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जाँच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य सरकार ने देर रात राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 187 अधिकारियों के तबादले किए। तबादला सूची में 70 से अधिक एसडीएम और 35 एडीएम, 8 जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और 16 विकास प्राधिकरण तथा नगरीय निकाय के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। साथ ही सचिवालय और संयुक्त सचिव स्तर के 15 और विभिन्न विभागों के 20 निदेशक और अतिरिक्त निदेशक इनमें शामिल हैं। तबादला सूची में बीकानेर के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जसवंत सिंह को पंचायती राज विभाग में अतिरिक्त आयुक्त और संयुक्त शासन सचिव तृतीय के पद पर, बीकानेर के अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन गोपाल राम बिरदा को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर लगाया गया है। डॉक्टर ज्योति चौहान का राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कार्यकारी निदेशक से चिकित्सा शिक्षा विभाग में संयुक्त शासन सचिव के पद पर तबादला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को अपनी उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णयों की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि किसानों के हित में लिए गए इस फैसले से उनके जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की भारत वापसी हुई है। इसका उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनर्स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत, जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
1: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच कल सीकर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू सहित कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई। चूरू में 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। हालांकि मौसम में आए इस बदलाव के बावजूद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी रहा।

0: कल पांच शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। फलौदी प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान करीब 47 डिग्री और न्यूनतम तापमान 34 डिग्री दर्ज हुआ। भीषण गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में राज्य के दक्षिणी पश्चिमी और पूर्वी भागों में अधिकतम तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं आगामी 48 घंटों के दौरान बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं बादल गरजने, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागौर और जोधपुर जिले के दौरे पर, मेड़ता सिटी में राव दूदा और जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों और पशुपालकों से जैविक खेती अपनाने और युवाओं से कृषि से जुड़ने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने देर रात 187 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी। हालांकि सीकर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। सुबह के 9:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत। कलाकार हैं अल्लाह जिलाई बाई।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आपने सुने अल्लाह जलाई बाई के गाए लोकगीत। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल अमारू चैनल है। सुबह के 9:30 हुए हैं। डीजे प्रस्तुत है NCERT का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। आज आप इसकी 1284वीं कड़ी सुनेंगे।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरख राम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
0: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
0: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
0: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
0: जी श्रोताओं, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
0: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी। जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
0: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी,
0: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
0: इसके मुख्य लक्षण हैं चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
2: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
0: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
2: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
0: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
2: ठंडा करने के लिए उसे

0: कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें
1: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वो सांस भी ठीक से ले पाएगा।
0: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें, लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
1: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें। उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या न करें,
0: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं
0: जी।
1: तो भाई, मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी।
0: जी,
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
0: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारु और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूँ।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।

0: घास थोड़ी सी घास ले ले।
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
0: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
2: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
0: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।

0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
1: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
2: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
3: तो बच्चों, सुना आपने, बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
4: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
5: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
6: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन

0: जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें, तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
1: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
2: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
3: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। पर ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
2: आजा खेलते हैं।
3: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
4: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
3: अच्छा वो क्या?
4: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
3: हाँ
5: दूसरा क्या?
4: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
2: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कड्याल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे। शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

0: और तलवार भी।
1: आपके पास फौजी वर्दी है?
0: हाँ।
1: आपको अपनी वर्दी बहुत अच्छी लगती है ना?
0: बिल्कुल, मुझे अपना देश और वर्दी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। इस वर्दी को पहनकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और यही मुझे सैनिक के कर्तव्यों का एहसास कराती है।
1: मेरे को भी यह वर्दी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन मैं भी इसे पहनूंगा और देश की रक्षा करूंगा।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

0: बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि यह भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था, और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: देखो चुन्नी लाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
1: हाँ।
3: ये देखो, पास आ जाओ, आ गया हो, आ गया। ये देखो, ये इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते से।
3: बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता था।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी, और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।

0: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
1: बस थोड़ी दूर और। वो देखो उस गड्ढे के पास।
0: जी
2: अच्छा, बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
3: उधर से दुश्मन आ रहे हैं, फायरिंग

0: साहब, हाय साहब, आप जाइए साहब।
1: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैनगन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
2: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
2: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
3: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
2: थैंक यू सर जी, थैंक यू।
1: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वनियांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। आज आपने इसकी 1284वीं कड़ी सुनी। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सुबह के 10 बजे हैं श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनो सुनो सुनो।

0: केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। अगला गीत आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह और साथियों को। फिल्म का नाम है हैप्पी न्यू ईयर।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
3: संग प्रीत लगाई सजना सजना।
2: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: होता है।
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।
2: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
1: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: श्रेया घोषाल, उदय मजूमदार और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना गुरु फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा था गुलजार ने और संगीत एआर रहमान का था। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं। जावेद अली और सोनू निगम की आवाज़ों में आप सुनेंगे गजनी फिल्म का ये गीत।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए भूले बिसरे गीत।

कविता सेठ को आप सुन रहे थे मातृ फिल्म में। और लीजिए अब सुनिए अनपढ़ फिल्म का गीत, आवाजें हैं आशा भोसले और साथियों की।

0: आया हूँ तशरीफ का मैं कोकरो
1: केम छे
0: सारू छे
1: सू छे
0: एक दो तीन चार पाँच छे
1: हाथ
0: गया।

ये गीत हमने कार थीप फिल्म से लिया था, स्वर थे किशोर कुमार और आशा भोंसले के। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं नागिन फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की।

नागिन फिल्म से ये गीत लिया था, स्वर था लता मंगेशकर का। और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों को, ये फिल्म है हम जोली।

हमजोली फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। ओली जब सुनिए हेमंत कुमार के साथ लता मंगेशकर को, ये फिल्म है झनक झनक पायल बाजे।

0: मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों के गाए बात एक रात की फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज। दिन के 12 बजने को है। अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण।

0: विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चल रहे संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स A20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
2: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्य वर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। ये कार्यक्रम हम अपने जयपुर के आमेर चैनल से रिले करेंगे। आज 10:30 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

चर्चा होगी सुरक्षित भविष्य के लिए पर्यावरण संरक्षण, पालतू पशुओं को लू व तापघात से बचाव, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण, अक्षय ऊर्जा, इन विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे।

युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवावाणी शाम 5:05 पर। आज की बात का विषय रहेगा युवा और कौशल विकास। लघु जानकारी का विषय रहेगा ब्लड ग्रुप बांगर खादर ताप घात से बचे स्टार्टअप इंडिया। इसके अलावा रोजगार समाचार और क्विज टाइम भी होगा।

1:05 पर हमारी बहनें सुनेंगी कार्यक्रम घर आंगन, जिसमें आज चर्चा होगी महिला उद्यमिता, घर से शुरू होने वाले छोटे छोटे उद्योग। चर्चा होगी योग महिलाओं के लिए सर्वांगीण स्वास्थ्य, परवरिश में मां की विशेष भूमिका, स्मार्टफोन का संयमित उपयोग, और इसके अलावा रसोई से और ब्यूटी टिप्स भी होंगे।

ये थी कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। 12:10 होने को है। अब सिंधी कार्यक्रम हम अपने जयपुर के आमेर चैनल से रिले कर रहे हैं।

0: सभी बुधंदड़न के प्रिय नंदवानी जो प्यार भरियो नमस्कार सिंधी कार्यक्रम में अवां जो स्वागत आहे अज जे सिंधी कार्यक्रम में अवां बुधंदा भेंट वार्ता ए गडोगड बुधंदा गीत संगीत अज जी भेंट वार्ता में असा भेंट करे रहा आयूं वरिष्ठ साहित्यकार श्री भगवान अटलानी जिन सा ए भेंट वार्ता जो उनवान आहे साहित्यिक सफर खां साहित्य अकादमी अवार्ड ताई जो सफर दादा तमाम जो असांजे आकाशवाणी जी स्टूडियो में घणो घणो स्वागत आहे
1: मेहरबानी
0: सबिन खां पहिरीं दादा मां तव्हांखे साहित्य अकादमी अवार्ड मिलण जूं घणियूं घणियूं वाधायूं थी ॾियां
1: मथो रातो आहे
0: दादा मां जीअं असांजी ॻाल्हि ॿोल जो उनवान बि आहे कि तव्हांजो साहित्यिक सफ़र खां वठी साहित्य अकादमी अवार्ड ताईं जे सफ़र ताईं जी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त सभ खां पहिरीं मां तव्हां खां इहो ई ॼाणणु चाहींदसि कि तव्हां कहिड़ी फील्ड सां जुड़ियल हुआ तव्हां कहिड़ो कमु कंदा हुआ सभ खां पहिरीं असांखे इहो ॿुधायो
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मां कमु कंदो हुउसि हू जयपुर में रहियुसि
0: जी
1: न त ॿियनि जॻहियुनि ते रहियुसि
0: त तव्हांजी जॉब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुई ऐं तव्हां लेखनीअ जे सफ़र में कॾहिं खां लिखणु शुरू कयो
1: मुंहिंजो लिखण जो सिलसिलो जॾहिं मां पंजे छहें दर्जे में पढ़ंदो हुउसि तॾहिं खां शुरू थियो
0: अच्छा
1: ईअं चइजे त मां लिखी सघां थो इहा ॻाल्हि मूंखे ॿियनि ॿुधाई
0: अच्छा
1: पहिरियों पहिरियों दफ़ो हिकु ॾाढी ॾाढी मुंहिंजे लाइ ॾकाईंदड़ वारदात थी
0: जी ॿुधायो दादा
1: मां सम्झा थो छहें सते दर्जे में पढ़ंदो हूंदुसि शाम जे वक़्तु राम जे मैदान में
0: जी जी
1: ॿारनि हिकु ॿाहिरां आयल मास्तर खे घेरे वरितो छो घेरे वरितो छो त उनखे इम्तिहान जूं कापियूं या चंडा ॾिनी वियूं हुयूं
0: अच्छा
1: त ज़ाहिर आहे ॿारनि जे मन में उत्सुकता हुई त कंहिंखे सुठियूं मार्कूं मिलियूं केरु पास थियो केरु फेल थियो
0: जी
1: त जॾहिं हुन खां इहे सुवाल पुछऊं ॿारनि त हुन ॿारनि खे चयो त भॻवान नारे जो ॿारु केरु आहे
0: अच्छा
1: मूंखे ड्रुकूं पाए करे वठी विया हुते कोन हुउसि ओॾीमहिल
0: अच्छा
1: मां वियुसि त हुन मास्तर मूंखे धड़कारियणु शुरू कया
0: अच्छा
1: हाणे तूं जेकॾहिं पासबुक्स मां नकल करे लिखंदे अॻिते हली करे छा कंदे
0: अच्छा
1: छो त इहो इल्ज़ाम मुंहिंजे लाइ बिल्कुलु बि उमेद खां ॿाहिरि हो त मुंहिंजे अखियुनि में ॻोड़ा अची विया ऐं तॾहिं मूंखे पतो पियो त मां अहिड़ो सुठो लिखी सघां थो जो इहो वहम पैदा थिए त न कंहिं कुंजी मां नकल कई आहे कंहिं पासबुक मां नकल कई आहे
0: अच्छा
1: लिखण जो सिलसिलो लॻातार जारी रहियो
0: जी
1: मिडिल स्कूल मां निकिरी करे जॾहिं हायर सेकेंडरी स्कूल में आयुसि त हायर सेकेंडरी स्कूल में मैगज़ीन जो एडिटर रहियुसि
0: अच्छा
1: सभिनी खां पहिरीं उन वक़्तु जेका सभिनी खां वधीक मशहूरु अख़बार हुई राजस्थान में उन में मुंहिंजे कंहिं दोस्त मूंखे बिना ॿुधाए मुंहिंजी ग़ज़ल मोकिले छॾी
0: जी जी
1: हिंदी में
0: अच्छा
1: उहा छपजी करे आई त मूंखे ताजुब थियो सुठो बि लॻो ॾाढो त शुरूआति इहा थी 1967 में
0: त तव्हां शुरूआति कहिड़ी भाषा सां कई ऐं हिंदी ऐं सिंधी लेखनीअ जे जॾहिं पाण काई बि डबल भाषा में लेखनी कंदा आहियूं त उन में छा टकराव थींदो आहे ऐं तव्हांखे काई अहिड़ी दिक़त न ईंदी आहे कि तव्हांजा हेतिरा किताब छपियल आहिनि हिंदी में बि ऐं सिंधी लिपीअ में बि पर जेॾी महिल पाण लिखूं था त इहो टकराव खे तव्हां कीअं मतिलबु पूरो कंदा आहियो
1: मूल रूप सां मां हिंदीअ में लिखंदो रहियो आहियां हीअ जेका ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाए रहियो आहियां उहा बि हिंदीअ सां वाबस्तु आहे
0: जी
1: मुंहिंजो पहिरियों किताबु 1985 में सिंधीअ में आयो
0: अच्छा
1: किताबु छपाइण जी तकर मूं न कई हिंदीअ में मुंहिंजो किताबु 1987 में आयो
0: अच्छा
1: ऐं उन ते राजस्थान साहित्य अकेडमी रांगे राघो पुरस्कार ॾिनो
0: अच्छा पहिरीं किताब ते वाह वाह
1: तंहिंखां पोइ 1995 में मूंखे मीरा पुरस्कार मिलियो राजस्थान साहित्य अकेडमी जो जेको हाईएस्ट अवार्ड आहे
0: अच्छा
1: पर उहो जे किताब ते मिलियो

0: हिंदीअ में हूंदे बि सिंधी भारत में अची करे पंहिंजो पाण खे कीअं अॻियां वधाए सघिया, उन लाइ कहिड़ा संघर्ष उन्हनि कया, इन ते आधारित उपन्यास आहे।
1: अच्छा,
0: ऐं मां सम्झां थो हिंदीअ में सिंध जे विरांगे ऐं सिंधियुनि जी कुवत इन ते लिखियलु पहिरियों उपन्यास आहे।
1: पहिरियों उपन्यास आहे ऐं उहो तव्हांजो लिखियलु आहे।
0: ऐं मां सम्झां थो तंहिंखां पोइ बि कंहिं सिंध जे विभाजन ते उपन्यास न लिखियो आहे।
1: सुठो तव्हां ॿुधाए रहिया आहियो। मां इहो चाहींदसि की मूंसां गॾु असांजा ॿुधंदड़ उहो किताबु, छो की हिंदीअ में आहे त असांखे ज़रूरु पढ़णु बि खपे,
0: जंहिंसां अपनी मरीचिका
1: अपनी अपनी मरीचिका असांखे पढ़णु बि खपे, ऐं इन सां असांखे सॼी पंहिंजे सिंध जे विरांगे जी दास्तान पढ़ण लाइ मिलंदी।
0: फ़क़ति विरांगो न, विरांगे खां पोइ भारत में अची करे पेर कीअं ॼमायासीं,
1: हा,
0: उन लाइ छा छा असांखे करिणो पियो, इहा सॼी दास्तान बि उन उपन्यास में आई आहे।
1: त दादा, हीउ उपन्यास अगरि पाण पढ़णु चाहियूं त इहो कीअं मिलंदो, अवेलेबल कीअं आहे?
0: प्रभात प्रकाशन दिल्ली इनखे छापियो आहे।
1: अच्छा, सुठो तव्हां ॿुधाए रहिया आहियो पंहिंजे साहित्यक सफ़र जूं कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं जेके असांखे ॿुधंदे ई जॾहिं हेॾो सुठो थो लॻे त ज़रूरु तव्हां त उन सफ़र मां निकिता आहियो। त तव्हां ॿुधायो कि बैंक जी नौकिरी कंदे कंदे पंहिंजी लेखनीअ खे तव्हां वक़्तु कीअं ॾींदा हुआ?
0: ॿ ॻाल्हियूं। पहिरीं बैंक में मूंखे जेके बि असाइनमेंट्स मिलिया उन्हनि मां क़रीब क़रीब 11 साल
1: अच्छा
0: मुंहिंजी रुचि जे अनुसार मिलिया।
1: अच्छा,
0: राजभाषा अधिकारी मां रहियुसि, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो ट्रेनिंग सेंटर आहे अजमेर में,
1: अच्छा,
0: उनमें पढ़ाइण जो मौक़ो मूंखे मिलियो।
1: अच्छा,
0: त इन क़िस्म जा कम बैंक ॾिना, त हुननि इहो ॾिठो त जेको बेस्ट हिन मां कढी सघिजे थो उहो कढूं, छो त रुचि जो कमु मिलियो कुझु न करे, ऐं कुझु पागलपन हो मुंहिंजो।
1: अच्छा,
0: मां राति जो 2:30-3:30 बजे ताईं वेही करे लिखंदो हुउसि।
1: त रुचि हूंदे ऐं हीउ पागलपन हूंदो की पाण पंहिंजे लाइ एक्स्ट्रा टाइम कढंदा हुआसीं भले राति जाॻणो पए। तमामु सुठो तव्हां ॿुधायो दादा। मूंखे इहा बि ॻाल्हि तव्हां ॿुधायो की छा साहित्य सामाजिक बदिलाव जो आधार ठही सघे थो?
0: मूंखे ईअं लॻंदो आहे त कुझु गणिया किताब जीअं कार्ल मार्क्स जो दास कैपिटा या रामायण महाभारत गीता, इन्हनि सभिनी त सामाजिक बदिलाव में हिकु ख़ासि क़िस्म जो कमु कयो आहे। प्रेमचंद समेत, जेकर मां हिंदीअ जी ॻाल्हि कयां, सामाजिक बदिलाव में उन्हनि को ॾाढो वॾो किरदारु अदा कयो हुजे मूंखे न लॻंदो आहे। मूंखे इहो लॻंदो आहे त जिन पढ़ियो उन्हनि जे जीवन में कुझु बदिलाउ आयो, शख़्सी सतह ते, समाज जे जीवन में न। प्रिया जेकॾहिं मुंहिंजी का कहाणी पढ़ी आहे ऐं उन कहाणीअ में जेका समस्या मूं खई आहे, प्रिया जी ज़िंदगी में उहा या उन सां मिलंदड़ जुलंदड़ समस्या आहे, जेको समाधान मां ॿुधाए रहियो आहियां, जेको रस्तो मां ॿुधाए रहियो आहियां,
1: जी जी,
0: उहो प्रिया जे कम में अची वियो।
1: बिल्कुलु बिल्कुलु,
0: इहा ॻाल्हि त थी सघे थी, पर समाज कुल मिलाए करे मुंहिंजी कहाणीअ जे आधार ते बदिलजी वियो मूंखे न लॻंदो आहे।
1: पर कुझु हद ताईं अगरि शख़्सी कंहिंजे जीवन जे आधार ते उहा कहाणी सही आहे त हू पढ़े ऐं इम्प्लीमेंट करे त पोइ थी सघे।
0: इहो त थींदो ई आहे, इहो थींदो ई आहे। मुंहिंजे कहाणियुनि खे पढ़ी करे, सेकेंड मैरिज करण वारी उज्जैन जी मैरिज आहे।
1: अच्छा,
0: रिटायर थियल जबलपुर जो पुरुष,
1: हा,
0: 20 सालनि जो मेरठ जो BSC करण वारो स्टूडेंट
1: जी,
0: उन सभिनी जा मूं वटि फोन या ईमेल मैसेजिस
1: अच्छा
0: ईंदा रहिया आहिनि। शख़्सी सतह ते उनजो असरु बाक़ाइदा थियो आहे, हुननि कुझु न कुझु उन मां खयो आहे के बदिलाउ पंहिंजी ज़िंदगी में उनजे आधार ते उन्हनि कया हूंदा, अनुमान लॻाए सघां थो मां।
1: बिल्कुलु बिल्कुलु,
0: पर समाज कुल मिलाए करे मुंहिंजी रचना जे आधार ते कुझु खणी सघियो मूंखे अॼु ताईं कॾहिं महसूसु न थियो आहे।
1: दादा, हाणे असां तव्हांखां इहो बि ॼाणणु चाहींदासीं कि तव्हांखे जेके बि अवार्ड मिलिया आहिनि ऐं तव्हां जेके किताब लिखिया आहिनि, घणा लिखिया आहिनि, उहे बि असांखे ॿुधायो ऐं कहिड़ी भाषा में लिखिया आहिनि उहे बि थोरे में असांखे ॿुधायो।

0: हिंदी सिंधी बिनी में मुख्य रूप से थोड़ो घणो अंग्रेजी में भी लिखो है
1: जी
0: हिंदी मुख्य रूप से मुझे साहित्य की भाषा रही है आकाशवाणी के यो शर्फ डींदुस तो मुख्य सिंधी में आता ही
1: अच्छा तो सिंधी भाषा में तमा लिखण आकाशवाणी जे वजह सा शुरुआत कई
0: प्रिया एक रोचक गाल थी
1: जी
0: शायद किस्मत के यो मंजूर हो इसराणी साहब नाले जा एक प्रोग्राम ऑफिसर हुंदा हुआ आकाशवाणी जयपुर में
1: हाँ हाँ
0: सिंधी प्रोग्राम हुनन वटी हो मुखे हिंदी जी कहानी रिकॉर्ड करण ला आकाशवाणी में अचनो पियो
1: जी
0: ए उन दी हिंदी जो जो प्रोग्राम ऑफिसर वो मुकल थे हो
1: अच्छा
0: तो हुनन के रिकॉर्डिंग करनी हुई
1: अच्छा
0: रिकॉर्डिंग हुनन कई है तेका पो मुखे चयो तो तू सिंधी आई ए हिंदी में तो लिखी सिंधी में लिख हुनन प्रेरित कयो
1: प्रेरित कयो
0: ए मुखे सिधो हुनन फीचर राइटिंग में आंदो
1: अच्छा
0: काके जी ओताक उन में मुखे उनन बुक कयो
1: अच्छा
0: बाकायदा मैंने मैंने वो प्रोग्राम हिंदो हो
1: अज जदी रूबरू थेण जो मौको मिलियो है ये तांजी जबानी असा ये गाल बुधी रहे हूं तो तमाम सुठो महसूस थी रहे है
0: छेर चिमके थी
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल फीचर
1: हाँ
0: मुझे अवार्ड थे हो
1: तमाम बढ़िया है वो फीचर तांजो साहित्यिक सफ़र जी गाल कंदे कंदे असा हाने हलंदासी साहित्य अकादमी अवार्ड तमाके जेको वेझो मिलियो आहे वो कैडी कृति लाए मिलियो आहे सब खां पहिरीं त असांखे वो बुधायो ऐं थोड़े में इहो भी बुधाइजो कि उहा अवार्ड ताईं कीअं पहुती
0: साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025
1: जी
0: वो मूंखे मिलियो
1: जी
0: ऐं वाघू नाले जे कहाणियुनि जे मजमूए ते मिलियो
1: अच्छा
0: 13 कहाणियूं आहिनि हिन में वाघू नाले सां जेका कहाणी आहे इहो उनवान ॿुधी करे अलॻि अलॻि तरह जा सोच दिमाग़ में उभरनि था
1: जी जी
0: पर जेका वाघू वांगुरु झपटण वारी ॻाल्हि डॉक्टर्स जे तरफ़ां असांखे हॉस्पिटल्स में केतिरा दफ़ा नज़र ईंदी आहे
1: हा
0: उन ते लिखियल इहा कहाणी आहे
1: अच्छा
0: बाक़ी तव्हांखे हिकु ॻाल्हि मां वाज़े कयां मुंहिंजा जेके कहाणियुनि जा सब्जेक्ट्स हूंदा आहिनि उहे सोशियो साइकिक प्रॉब्लम्स ते हूंदा आहिनि समाज हुजे ऐं दिमाग़ में हलंदड़ हलचल हुजे कश्मकश हुजे ॿिन्ही जो तालमेल विहारे करे कहाणियूं लिखंदो आहियां ऐं जेके कहाणियूं लिखंदो आहियां उन्हनि में कल्पना घटि हक़ीक़त वधीक हूंदी आहे
1: वधीक हूंदी आहे
0: प्रिया मूंसां हिन वक़्तु आकाशवाणी जे स्टूडियो में ॻाल्हाए रही आहे प्रिया जे दिमाग़ में छा हली रहियो आहे
1: अच्छा
0: इहा पढ़ण जी कोशिशि कंदुसि ऐं उहा ॻाल्हि मुंहिंजी रचना में ईंदी
1: अच्छा दादा हाणे मूंखे इहो बि ॿुधायो की जेको साहित्य अकादमी अवार्ड तव्हांखे मिलियो आहे कहिड़े बेस ते इहो पंहिंजो सिलेक्शन थियो
0: जेकॾहिं तव्हां आधार पुछंदा त साहित्य अकेडमी जो हिकु सिलसिलो आहे अवार्ड ॾियण जो सभिनी खां पहिरीं ग्राउंड लिस्ट तयारु कंदा आहिनि त गुज़िरियल 5 सालनि में कहिड़ा कहिड़ा किताब छपिया
1: अच्छा
0: हिकु ॼणो ॿ ॼणा इहा ग्राउंड लिस्ट तयारु कंदा आहिनि उहा ग्राउंड लिस्ट साहित्य अकेडमी जे एडवाइज़री बोर्ड वटि मोकिली वेंदी आहे हिन मां ॿ किताब तव्हां चूंडियो
1: अच्छा
0: जेके किताब उन्हनि चूंडिया अरिड़हं 20 जेके बि किताब थिया उहे किताब वरी 10 ॼणनि वटि वेंदा आहिनि त तव्हां हिननि मां वरी ॿ किताब चूंडियो उहे किताब साहित्य अकेडमी परचेस कंदी आहे 5 कॉपीस
1: अच्छा
0: पोइ जूरी मुंबई में छो त रीजनल ऑफिस आहे सिंधी भाषा बि आहे त जूरी उहो किताबु पढ़ंदी आहे पोइ जूरी उहो फ़ैसिलो कंदी आहे त कहिड़े किताब खे हिननि किताबनि मां या जेके किताब हिननि में न आहिनि उन्हनि मां बि
1: अच्छा
0: अवार्ड ॾेई सघिजे थो
1: त दादा इहो ॿुधायो की छा नवनि लेखकनि लाइ बि कुझु अवार्ड साहित्य अकादमी अवार्ड्स में आहिनि
0: साहित्य अकेडमी 4 अवार्ड्स ॾींदी आहे जिन मां हिकु अवार्ड 35 सालनि खां घटि उमिरि वारनि लेखकनि लाइ
1: अच्छा दादा तव्हांजे लेखनीअ जे सफ़र जे बारे में असां ॻाल्हायोसीं त अॼु जेके असांखे ॿुधी रहिया आहिनि असांजा ॿुधंदड़नि नए लेखकनि खे तव्हां छा चवणु चाहींदा जीअं उहे अञा अॻिते अचनि ऐं उहे कहिड़ी कहिड़ी लेखनीअ जी फील्ड में अॻियां अचनि जीअं

0: ट्रांसलेशन बि हूंदो आहे ट्रांसक्रिप्शन बि हूंदो आहे ऐं उहो कीअं कनि इहो असांखे ॿुधायो
1: नज़र इहो थो अचे त सिंधीअ में ख़ासि तौर सां नवां लेखक पढ़नि नथा
0: जी
1: पहिरीं ज़रूरत इहा आहे त जेको साहित्य छपजी करे अचे थो उनखे उहे पढ़नि पढ़ंदा त पोइ भाषा सोच सभिनी जो विस्तार थींदो
0: जी
1: जेकॾहिं पढ़ंदा त पोइ नवां नवां वीचार उन्हनि जे दिमाग़नि में अचणु शुरू थींदा मूंखे ईअं लॻंदो आहे त ख़ासि तौर सां सिंधी समाज में पहिरीं ज़रूरत इहा आहे त जेका नई टही आहे उहा पढ़े पढ़ंदी तंहिंखां पोइ सुठो लिखंदी जेकॾहिं सुठो लिखंदी त पोइ हुननि जे साहित्यिक सफ़र खे को रोके नथो सघे
0: बिल्कुलु दादा तव्हां सुठो ॿुधायो दादा इहो बि ॿुधायो की तव्हां कहिड़ा कहिड़ा किताब हिंदीअ में लिखिया आहिनि कहिड़ा कहिड़ा सिंधीअ में लिखिया आहिनि ऐं तव्हांखे कहिड़ा कहिड़ा अवार्ड मिलियल आहिनि उहो बि असांखे ॿुधायो
1: मुंहिंजा कुल मिलाए 40 किताब आहिनि 15 किताब हिंदी में 13 किताब सिंधी में ऐं 12 किताब आहिनि जिन में मुंहिंजा ट्रांसलेट कयल ऐं ॿियनि जा मुंहिंजा किताब ट्रांसलेट कयल इहे शामिल आहिनि त हीअ जेके 40 किताब छपिया आहिनि
0: जी
1: उन्हनि लाइ मूं कॾहिं बि को पैसो कंहिंखे न ॾिनो आहे
0: अच्छा
1: जेका रिवायत हिन वक़्तु ख़ासि तौर सां हली रही आहे त पैसो ॾेई करे किताब छपाराइनि था
0: जी
1: मूं इहो न कयो आहे हा एकेडमीज़ खां माली मदद वठी करे सिंधीअ में किताबूं छपाराया आहिनि
0: जी जी
1: छो त सिंधीअ में को पब्लिशर आहे कोन तंहिं करे किताब पाणे त
0: छपाराइजनि
1: माली मदद वरिती पोइ जेकॾहिं पाण खे कुझु जोड़णो पियो जोड़ियोसीं
0: जी
1: न त मुंहिंजे तरफ़ां इहा ॻाल्हि न थी आहे अॼु ताईं मूंखे कुल मिलाए नंढा वॾा 39 अवार्ड्स मिलिया आहिनि
0: अच्छा
1: वरी हिकु ख़ासि ॻाल्हि इहा त कंहिं बि अवार्ड लाइ मूं कॾहिं कंहिंखे चयो न आहे
0: जी जी
1: जेका आमतौर सां डुक डुड लॻी पई आहे मुंड खां वठी इन खां पासीरो रहियो आहियां
0: जी जी
1: ऐं जेके अवार्ड्स मिलिया आहिनि उन्हनि जे करे बेहद संतोष मूंखे मिलंदो रहियो आहे हीउ जेको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलियो इहा ॻाल्हि मूंखे लॻातार चई वेंदी रही
0: अच्छा
1: अवार्ड मिलण खां पोइ एतिरो देरि सां तोखे अवार्ड छो थो मिले
0: अच्छा
1: उनजो सभिनी खां वॾो कारण इहो त मूं कॾहिं कन्वेंसिंग न कई
0: अच्छा
1: चोच वार न कई अवार्ड ॾियणो आहे ॾियो न ॾियणो आहे न ॾियो लेखन मुंहिंजो पेशो न आहे मूंखे सुठो लॻंदो आहे लिखण बि ऐं पढ़ण बि त पोइ मां का बेजा हरकत छो कयां
0: बिल्कुलु सही दादा एतिरियूं तमामु घणियूं सुठियूं सुठियूं असां ॻाल्हियूं कयूं आहिनि ऐं हलंदे हलंदे मां तव्हांखां हिकिड़ो इहो ई सुवाल पुछणु चाहींदसि की तव्हांखे छा थो लॻे सिंधी भाषा जो आईंदो छा आहे
1: हमेशह इहो सुवाल पुछियो वेंदो रहियो आहे ऐं इन जे जवाब में नकारात्मकता निराशा नज़र ईंदी रही आहे मूंखे ईअं लॻंदो आहे त भली नई टई सिंधी नथी ॻाल्हाए भली घरनि मां सिंधी छॾाइजंदी थी वञे तॾहिं बि चयो त इहो वेंदो त प्रिया सिंधी आहे ऐं जेसिताईं इहो चयो वेंदो जेसिताईं मां चवंदुसि त मां सिंधी आहियां इहा ॻाल्हि भली मां हिंदीअ में चवां पर चवंदुसि त मां सिंधी आहियां तेसिताईं सिंधी खे को लोॾो कोन्हे
0: सुठो आहे सिंधी जो आईंदो तमामु सुठो आहे ऐं मां बि इहो ई सम्झां थी की अॼु असां ॻाल्हायूं था ऐं ईंदड़ टईअ अगरि थोरो घणो बि ॿुधे थी घरनि में बि त ज़रूरु इहा सिंधी असांजी अॻिते सुठो हलंदी रहंदी
1: घरनि में हालति इहा थी वई आहे या त नई टई सां हिंदीअ में अंग्रेज़ीअ में ॻाल्हाए थो वञे या मूं जहिड़ा तव्हां भली हिंदीअ में ॻाल्हायो मां त सिंधीअ में ॻाल्हाईंदुसि त घटि में घटि तव्हांखे सिंधी सम्झ में त ईंदी
0: बिल्कुलु बिल्कुलु
1: स्थिति इहा थी वई आहे तंहिं हूंदे बि मुंहिंजो इहो विश्वासु आहे त सिंधी मरी न सघे उन जे कारण आहिनि सिंध पाकिस्तान उते त सिंधी आहे न
0: हा बिल्कुलु आहे
1: केॾां वेंदी

0: थींदी जेकॾहिं उन्हनि सां असां जुड़ियल न आहियूं त अॼु न सुभाणे इहा उमेद त आहे त सिंध असां वटि वरी ईंदी
1: बिल्कुलु बिल्कुलु
0: जेकॾहिं सिंध ईंदी त पोइ सिंधी बि त ईंदी
1: बिल्कुलु उमेद आहे त उहा ज़रूरु पूरी बि थींदी तमामु सुठो लॻो आहे दादा तव्हां सां इहा ॻाल्हि ॿोल करे हलंदे हलंदे असांजे ॿुधंदड़नि खे तव्हां छा संदेश ॾियणु चाहींदा
0: फ़क़ति हिकु संदेश सिंधीअ में ॻाल्हायूं ऐं जेतिरो थी सघे थो पढ़ूं साहित्य खे हिमथायूं
1: तमामु सुठो संदेश तव्हां असांजे स्टूडियो में आया ऐं तमामु सुठी असां अॼु ॻाल्हि ॿोल कईसीं ऐं ज़रूरु असांजी ईंदड़ टईअ खे ऐं जेके बि असांजा ॿुधंदड़ असांजो इहो प्रोग्राम ॿुधंदा त उन्हनि खे घणेई कुझु सिखण लाइ मिलंदो हिन ॻाल्हि ॿोल सां तव्हां हिते आया तव्हांजो घणो घणो धन्यवाद साजो हींअर अवां ॿुधी रहिया हुआ साहित्यिक सफ़र खां साहित्य अकाडमी अवार्ड ताईं जो सफ़र श्री भगवान अटलानी सां भेट वार्ता अवां ॿुधी रहिया हुआ
2: मालिक ॾिए त शुक्र कर न ॾिए त सब्र कर यार पंहिंजी ज़िंदगीअ में हिननि ॿिनि ॻाल्हियुनि ते अमल कर अहिड़ी शहाणी ऐं लासानी सिंधी क़ौम जे लाइ सिंधी प्रोग्राम आर्तवार मंगल ऐं विस्पत जे ॾींहुं आकाशवाणी जयपुर अजमेर जे आमेर चैनल तां ॿुधंदा रहो सिंधी प्रोग्राम
1: सॼो तव्हांखे इहा ॼाण ॾियूं त हर साल 15 मई जे ॾींहुं असां मल्हाईंदा आहियूं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ ही ॾींहुं हर साल गॾियल क़ौमुनि पारां मल्हायो वेंदो आहे त जीअं ख़ानदाननि जी अहमियत ऐं उन्हनि जे समाजी आर्थिक ऐं सकाफ़ती किरदारनि बाबति शऊर उजागर करे सघिजे साल 2026 जी थीम आहे परिवार असमानताऊं ऐं बाल कल्याण यानी ख़ानदान असमानताऊं ऐं ॿारनि जी भलाई हीअ थीम हिन ॻाल्हि ते ध्यानु ॾिए थी त वधंदड़ असमानताऊं ख़ानदानी ज़िंदगी खे कीअं मुतासिर कनि थियूं ऐं कीअं ख़ानदाननि ते ॿधल पॉलिसियूं ॿारनि जे भलाईअ खे बहितर बणाए सघनि थियूं हिन ॾींहं जी अहमियत इहा ई आहे त कीअं ख़ानदानी प्रणालीअ खे मज़बूत करणु ॿारनि जे सिहत खे बहितर बणाइण ऐं असमानताउनि खे घटाइण लाइ पॉलिसियुनि ते ज़ोर ॾींदो आहे साथियो तव्हांखे इहा बि ॼाण ॾियूं त 15 मई जे ॾींहुं सिंधियत जे सचे शहदाईअ डॉक्टर मोती प्रकाश जिन जी जनम तिथि आहे असां सभिनि उन्हनि जो लिखियलु गीत घणेई दफ़ा ॿुधो आहे त आंधीअ में जोति जॻाइण वारा सिंधी खाख खे सोण बणाइण वारा सिंधी अचो त गॾिजी इन्हनि खे असां सभु श्रद्धांजलि था ॾियूं शत शत नमन ऐं हाणे कार्यक्रम जे आख़िर में अचो त ॿुधूं चंद्रू आत्मा जे आवाज़ में ही गीत

साथियों हिंयर अवां चंद्रू आत्मा जे आवाज में गीत बुधी रहया वा साथियों यो गीत बुधन सा मुखे ब लाइनो याद अची रही हुआ इंत रिश्तन जी छिकतान में सदा रहे थी खेंच रिश्तन जी छिकतान में सदा रहे थी खेंच जे हर को समझे हल कीन की पवंदा पेच जे हर को समझे हल तकीन पवंदा पेच ऐं इन सां गॾु ई अॼु जो असांजो सिंधी कार्यक्रम इते ई पूरो थो थिए वरी खणी हाज़िर थींदासीं ईंदड़ आर्तवार ॾींहुं हिकिड़ो ॿियो नओं सिंधी प्रोग्राम ईअं ई ॾींहं जो 12:10 ते तेसीं ताईं प्रिया नंदवानी खे ॾींदा मोकल नमस्कार।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। 12:40 में हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
0: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
0: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
0: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

लता मंगेशकर और सखियों को आप सुन रहे थे राम तेरी गंगा मैली फिल्म में, और लीजिए अब सुनिए पैपॉन को, ये फिल्म है मद्रास कैफे।

पैपॉन को आप सुन रहे थे मद्रास कैफे फिल्म में। लीजिए अब सुनिए कुछ दिल ने कहा फिल्म का गीत, स्वर है अनुराधा पांडवाल और उदित नारायण के।

अनुराधा पौंडवाल और उदित नारायण के गाए कुछ दिल ने कहा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 1 बजने को है। अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर के आमेर चैनल से।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागौर और जोधपुर जिले के दौरे पर हैं। जोधपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनकी अगुवाई की। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। इसके बाद श्री सिंह नागौर के मेड़ता सिटी पहुंचे। उन्होंने वहां मेड़ता के संस्थापक राव दूदा की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद रक्षा मंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री वापस जोधपुर जाएंगे। वे वहां रातानाड़ा में पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री

भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा अनावरण समारोह में भाग लेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज डूंगरपुर जिले के प्रवास पर हैं। राज्यपाल बोरी स्थित गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन संस्थान पहुंचे। वहां वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत आयोजित महिला प्रशिक्षणार्थियों के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। उनका जनजाति क्षेत्र में कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित आशीर्वाद समारोह में भी शिरकत करने का कार्यक्रम है। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने एक आदेश जारी कर प्रोफेसर कैलाश डागा को उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद पर और प्रोफेसर मदन सिंह राठौड़ को भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद पर नियुक्त किया है। श्री बागड़े ने राज्य सरकार के परामर्श से ये आदेश जारी किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले में चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, हरियाणा निवासी यश यादव और विकास के रूप में हुई है। चारों को जयपुर से गिरफ्तार कर कल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। बाद में उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पूछताछ के लिए दिल्ली भेज दिया गया। जांच अधिकारियों के अनुसार आरोपी यश यादव और विकास ने पहले सीकर जिले के एक कोचिंग सेंटर में साथ में पढ़ाई की थी। सीबीआई अब कोचिंग संस्थानों, बिचौलियों, छात्रों और आरोपियों से जुड़े अन्य व्यक्तियों के बीच संभावित संबंधों की जांच कर रही है। इस बीच जांच का दायरा और बढ़ गया है। एजेंसी उन आरोपियों के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों की भूमिका की भी जांच कर रही है जिन्होंने हाल ही में नीट परीक्षा उत्तीर्ण की और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त किया है। सीबीआई की एक टीम सीकर में और नेटवर्क से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर रही है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री और सदस्य तथा भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भाग ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इस अवसर पर विदेश मंत्री ने कहा कि तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को नया आकार दे रही है और इसका उपयोग सुशासन तथा समावेशी विकास के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने को लेकर भी साझा हित जुड़े हैं। डॉ. जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। भरतपुर में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की ओर से किसान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी दी गई। अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉ. विजय वीर सिंह ने किसानों को बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से खेत की मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जैविक कार्बन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी मिलती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। 16 मई तक चलने वाली इन परीक्षाओं का आयोजन प्रदेश के 167 केंद्रों पर हो रहा है। परीक्षा में 40,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इसके सफल आयोजन के लिए बोर्ड प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्थाएं की हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने के उपलक्ष्य में आज आकाशवाणी जैसलमेर की ओर से गड़ीसर तालाब से कार्यालय परिसर तक वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। वॉकेथॉन को जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने रवाना किया। इसमें आकाशवाणी के सभी कर्मचारियों, शहर के प्रबुद्धजन और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम घर आंगन।

0: घर आंगन सुनने वाली मरी सगली सखिया ने आपरी सखी मनोज खंगारो
1: और मैं खुशबू हरसा घना न घना राम राम सा।
0: और खुशबू बहन कई हाल है आपरा?
1: बढ़िया है, पर थोड़ी गर्मी तो ज्यादा है।
0: अब वो तो देखो ऋतु परिवर्तन है, आपा ने किया करनी हर जो स्थिति है उनरे सागे सहज होने रो अभ्यास तो होनो ही चाहिए। आज गर्मी है तो काले सर्दी आ जा सी।
1: सही बात है, तो है ही है।
0: मतलब ये जो ऋतु परिवर्तन जो होया करे नी खुशबू बहन, ए भी जीवन रो एक बहुत अहम हिस्सो होया करे।
1: ब्या
0: तो देखो मिनख रा जीवन रा बहुत जरूरी जरूरी हिस्सा होया करे है। इनरे मायने अगर बात करी जाए रिश्ता री, तो ए तो मिनख रा जीवन रा सबसे महत्वपूर्ण कैसे कहा ईश्वर रा दिया उपहार होया करे। जा रहे होने सु जीवन एक महकती बगिया सो लागे है को नी?
1: सही बात है।
0: इनरे मायने कुछ रिश्ता देखो खुशबू बहन, जन्म रे सागे जुड़ जावे तो कुछ उम्र रे सागे सागे जुड़ता चला जावे। जिया एक रिश्तो आपनो अपनी सगिया सागे भी तो जुड़ी ही है। पर खुशबू बहन एक रिश्तो बहुत खास होया करे जो जन्म लेने से पहला ही जुड़ जाया करे, और वो है एक माँ और उनरी संतान रो रिश्तो।
1: बिल्कुल मनोज बहन, जीवन रे मायने जुड़ियो हर रिश्तो खूबसूरत होया करे।
0: बिल्कुल।
1: पर एक माँ और संतान रा रिश्ता री बात करी जावे तो जाने ईश्वर री बात करी जावे।
0: बिल्कुल।
1: यदि तो एक टाबर रे जीवन री बात करी जावे तो सब अहम जिम्मेदारी माँ ने ही दी जाया करे है। इनरी परिवरिश में सब अहम भूमिका मारी मानी जावे है, और टाबर जीवन रे मायने सबसे महत्वपूर्ण बीरवी माँ ही हुआ करे।
0: सही कह रहे हो। मतलब क्या ही करे नी कि बच्चा री जो पहली गुरु होया करे नी, प्रथम गुरु बा माँ होया करे है। उनरी पहली दोस्त माँ होया करे। जब टाबर आपने देखा को नी, जब छोटा छोटा टाबर हुए तो सबसे ज्यादा राजी आपरी माँ री सागे रिया करे है नी। आपरी हर हरकत बाने बताणो, बासी कोई शर्म नी की नी बाने हर चीज अपने जो तुतलाहट में बाने बताणो। केणो रो मतलब बारो पहलो जो दोस्त होया करे बा माँ होया करे। इनरे अलावा सबसे बड़ी प्रेरणा भी तो माँ ही होया करे खुशबू बहन। एक बच्चो जब जन्म लेवे तब आप देखो माँ उन्हें अपना आंचल में समेट हर बुरी नजर से बचाने की कोशिश करे है, उनरी रक्षा करे है। टाबरा ने बोलनो चालनो संस्कार और बाने किन तरीके से व्यवहार करनो है सब कुछ एक माँ ही तो सिखावे। क्योंकि समय मतलब परिवार रे मायने जो एक टाबर होया करे वो जो सबसे ज्यादा समय है नी वो अपनी माँ रे सागे। हालांकि घर रे मायने घना मिनक घना मेंबर और भी होवे है, सदस्य होवे, पर जो टाबर रो सबसे ज्यादा समय कह लो वो एक माँ के सागे ही बीते है। तो बस माँ री सिखाई चीजा ही टाबर ने सबसे ज्यादा समझ में भी आया करे है।
1: सही बात है। और घर परिवार परवरिश में माँ रो जो को योगदान हुए नी वो सब महत्वपूर्ण मान्यो गयो है।
0: बिल्कुल।
1: माँ आपरे बच्चा ने प्रेम अनुशासन और संस्कार सु मजबूत बनावे है।
0: हाँ।
1: और माँ हर माँ है जी की आपरे टाबरा ने ईमानदारी बड़ोरो आदर और छोटा सु प्यार करनो जेड़ा नैतिक संस्कार भी सिखावे है। और मनोज बहन देखो नी के आज भी जदा पापा रे पीरे जावा नी तो सबु पहले नाम कही आवे की माँ घटे।
0: बिल्कुल। क्या करे नी माँ बिना तो पीर ही क्या को।
1: भाई सब बैठे है सब सदस्य बैठा है लेकिन तब भी आपारे मुंडे सोई निकले की भाई आपारी माँ घटे है। जद आपा सासरे में हुआ आप आपारी माँ सु फोन पर बात करा, जद आपारो मन थोड़ो सी उदास हुए नहीं तो बा फोन पर झटसू समझ जावे कि भाई आज तो कहीं ना कहीं इरे मन में है जी की कोई बात है, तो बापा ने पूछे भी है और आपा भी ने बतावा भी। लेकिन बात आ है कि देखो इतनी दूर बैठी भी एक माँ है नी जी की आपरे औलाद रो सुख दुख है जी को समझ सके है,
0: बिन की है समझ सके। हाँ। टाबर री जो किया करे ना मन री बात, टाबर री क्यों हर हर उम्र मतलब व्यक्ति री बात आप मान लो, एक माँ होया करे जो बिन कह सब कुछ समझ लिया करे। माँ री जो जिम्मेदारी है बस सिर्फ खानो

0: बनावणो या फिर देखभाल करने तक सीमित को नहीं आकरे, बल्कि माँ तो टाबरारी हर छोटी मोटी जरूरत ने समझे है, जिया के बार आपा किया कि बिना बोलिया ही समझे
1: बोले
0: है। हर माँ अपना टाबर रो भविष्य उज्जवल बनावन खातर देखो हर संभव प्रयास भी करे है, अठे तक कि अगर अपनो जो संपूर्ण जीवन कह लो वो तक न्योछावर कर दे। आप कई बार देखा कि कई महिला यान होया करे जगह बहुत सक्षम हो सके, सक्षम होवे है, बहुत कुछ लाइफ में कर सके है, लेकिन जन कई बार आप बहुत सी महिलाओं देखा कि बे अपना करियर ने अब जो बारा सपना हाँ सब ने एक समय के लिए ताक में रख दे, क्यों? क्योंकि बाने लगे कि बा का खुद का भविष्य बनाने से ज्यादा जरूरी है बारा टाबरारो जो भविष्य है भी ने उज्जवल बनानो।
1: सही बात है मनोज बहन, देखो आप घर में भी बैठा हुआ ने तो आप साथ कई एक बात हुए कि जब आप तबियत खराब हुए तो आप एक बार थोड़ा सी सोचा कि भाई आराम कर ला, और आप खुदरे वास्ते कई भी करना हुए तो आप सोचा कि नहीं रहन दो छोड़ो कई कोनी भाई भूख कोनी या इच्छा कोनी, लेकिन जब टाबर कह देवे नी तो आप शरीर में झट सू एक एनर्जी आ जावे कि भाई ओ तो काम है जिको करनो ही है, क्यों? क्योंकि आप टाबर कह दियो बी टाइम कही हुए कि आप शरीर में थकान भी घुनी हुए आप इच्छा भी हो जावे कि नहीं टाबर कह दियो तो आप झटसू उठा और झटसू काम करा, तो ओ ही तो माँ हुए मा। इन खातर ही तो मनोज बहन माँ ने तो भगवान सु भी बड़ो दर्जो दियो गयो।
0: सही कह रहे हो, तो चलो इतनी खूबसूरत बात रहे सागे सागे बहना ने एक बढ़िया सो लोकगीत भी सुनवा दे
1: जरूर।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।

0: खुशबूबेन, अभी आप बात करी कि एक जो महिला है, एक जो माँ है, बीरे मायने हमेशा अपनो सर्वस्व न्योछावर करने री तो मानो घुटी दिए रही है कोनी, पर ई सर्वस्व न्योछावर करने रे चक्कर रे मायने कई बार जो है महिला अपना सर्वांगीण स्वास्थ्य रे सागे खिलवाड़ कर बैठे है कोनी। मतलब आज आप देखा कि आज री जो भागदौड़ भरी जिंदगी है इन रे मायने जो महिला है पर घर नौकरी समाज री जो जिम्मेदारियां है उन्हें निभाते निभाते खुदरो जो ध्यान देनो है नहीं, वो बहुत ही लागे जाने भूल सी जावे या खुद ने जो प्रायोरिटी पर रखने के बजाय सबसे पीछे कर दिया करे है।
1: सही है मनोज बहन, और तनाव थकान कमजोरी चिंता और अनिद्रा ये सब तो आज हर उम्र री महिलाओं में सामान्य समस्या बन चुकी है।
0: सही कह रहे हो।
1: और इनसो कही है बचन रो सब चोखो तरीको है योग करनो, जिके ने अपनार महिला तन सु भी स्वस्थ रह सके और मन सु भी प्रसन्न रह सके है।
0: बिल्कुल खुशबू, खुशबू आजकल जो योग केवल व्यायाम ही नहीं बल्कि जीवन जीने री कला होया करे है। योग शरीर मन और आत्मा तुया ने संतुलित राखे है। प्राचीन भारत री आ महान परंपरा ने आज पूरी दुनिया अपनावे है। आप देखो अगर कोई भी महिला है जो महिला क्यों मतलब हर स्त्री पुरुष सब अगर आप रे जीवन रे मायने योग ने शामिल करे तो बारो जो जीवन है बारो जो स्वास्थ्य है वो एक बहुत ही खूबसूरत डगर पकड़ ले सी
1: है। सही बात है।
0: लेकिन समय री व्यस्तता रे चालते कह लो या फिर आपने आलसा रे चालते कह लो हर कोई इन योग ने व्यायाम ने अपने जीवन में शामिल कर ही कोनी पा। और बिना इकली आपने बहुत कुछ उठा पटक करने री जरूरत कोनी, बस अपना खुदरा समय महसूस खुदरे लिए दिन रा 20 मिनट 25 मिनट ज्यादा करो तो 30 मिनट आपने निकालना है।
1: सही है मनोज बहन, और योग एक ऐसो तरीको है जिके सु बड़ी सु बड़ी बीमारी भी मनोज बहन ठीक करी जा सके।
0: सही कह रहे हो।
1: महिलाओं खातर बहुत ही ज्यादा लाभदायक होया करे है, चाहे बाकी सोरी हुए गृहिणी हुए या नौकरी पैसा हुए या महिला कोई भी वृद्ध महिला भी हो तो योग हुए नी वो सबने स्वस्थ रखे है। क्योंकि महिलाओं में कई बार हार्मोन जिको बदलाव हुए नी वो सामान्य बात है, तो योग है नी जिको ई संतुलन ने बनाए रखण में मदद करे है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो। इनके अलावा देखो इन सारू जरूरी है कि आपने एक तो नियमित जो अभ्यास है नी
1: वो जरूरी
0: है करना है, जिया कि आपने कई आसन है प्राणायाम है और ध्यान जो है वो अपनी दिनचर्या रे मैंने शामिल करने है। और आजकल तो देखो खुशबू बहन अगर कोई अपनी बहना है जो योग क्लासेस बहुत सी योगा की जो क्लासेस वगैरह लागे है, कई अपनी बहना हो जो व्यस्त रहे चलते कह लो घर से को नहीं निकल पावे तो आज तो घर से निकलने की भी जरूरत को नहीं। आप देखो स्मार्टफोन के ऊपर आज कई ऐसा एड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आपने घर बैठे योग और मतलब योग से जुड़ा जो भी आसन वगैरह है या कौन सी समस्या में आपने किन तरह को योग ने अपने जीवन में शामिल करना है सब कुछ क्या करें बिल्कुल फ्री रिमाइंड उपलब्ध है। करनो का ही है बस खुदरे समय रिमाइंड आपने समय निकालना है और अपना मन ने आ चीज समझानी है कि योग आपा खातर बहुत जरूरी है।
1: जरूरी है। और योग सु देखो शरीर भी है जिको लचीलो बने
0: बिल्कुल
1: और हड्डिया भी मजबूत रहे और दिन भर है जिकी थकान कुनी हुए।
0: आज सबसे बड़ी बात है। सही कह रहे हो।
1: बड़ी बात है कि भाई दिन भर थकान कुनी हुए
0: और बनी रहे शरीर में।
1: और जब आप शरीर में थकान नहीं हुए नहीं तो आप जिको मन है नी वो हर एक काम करने में लागे
0: और खुश आप मतलब खुशबू बहन में आपने बीच में रोकी एक बार मैं आज चीज हमेशा खुद रे मायने महसूस करी हूँ कि जब मैं सुबह उठ योग या फिर यूं कह लूं कि अगर मैं 20-25 मिनट के लिए सुबह सुबह री सैर पर भी निकल ली नहीं तो मारो वो जो दिन है पूरो तो संतुलित व्यवस्थित और सबसे बड़ी चीज की मैं न केवल चेहरे से खुश लागू हूँ बल्कि मैं खुद ने अंदर से मतलब खुश फील करूँ कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ या मन हर चीज अच्छी लाग रही है, चिड़चिड़ाहट तनाव लागे को सो दूर आपने से जा चुके हैं।
1: सही बात है। और वैसे भी देखो मनोज बहन की चिंता और तनाव से कोई समस्या रो हल तो यहाँ भी नहीं
0: हो सके
1: तो जरूरी है कि आपने किसी भी परिस्थिति हो आपने खुद ने मजबूत रखने की कोशिश करनी चाहिए। आपने शरीर ने स्वस्थ रखने का तरीका है जिसका वे अपनाना चाहिए क्योंकि मन सु भी दुखी शरीर सु भी दुखी तो फिर कोई भी काम है जिको चोखो को नहीं।

0: और योग तो मनोज बहन गर्भवती जकी महिला वे नी बीरे खातर भी घणो ही फायदो करे है। पर इनरे बीच में आ जरूरी है कि ई बखत रे मायने डॉक्टर सु सलाह लेनी योग करनो सही रहे, नहीं तो या नहीं हो जाए कि फिर फायदे री जगह नुकसान हो जावे है।
1: तो बहना आप भी इतनी जो लंबी आपा चर्चा करी, इनसु मैं आपसे बस एक ही अनुरोध कर सका हां कि आप जो योग है उन्हें अपने जीवन में जरूर शामिल करो।
0: और मनोज बहन योग सु कही हुए कि आपारो शरीर है जो स्वस्थ हुए, और मनोरंजन सु क्या हुए अपारो मन है जो सही रहे। तो बेना ने सुना एक
1: बढ़िया जरूर।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: Sena.
1: खुशबू, आज रो दौर तकनीक रो दौर है और देखो इन तकनीक रा जीवन में शामिल होने सु जीवन जो है आपनों की तो आसान भी हुए है। आज हर चीज मानो एक क्लिक की दूरी पर है।
2: बात तो सही है मनोज, पर तकनीक तेज की जद सही तरीके सु काम में ली जावे जद बिने आसान बनायो जावे।
1: बिल्कुल,
2: पर अति जिको हुए नी हर चीज री आप कह सका कि अति उपयोग है जिको नुकसान रो कारण भी बन सके।
1: हाँ, अब बात तो सही है। आज रो दौर देखो स्मार्टफोन रो दौर है। पढ़ाई, जानकारी, बैंकिंग, मनोरंजन और आपसी संपर्क, मतलब हर काम आज देखो आप स्मार्टफोन से आसानी से हो गया है। विद्यार्थी जो है ऑनलाइन पढ़ाई कर सके है। आज आप देखो कि अगर कोई महिला अपनी साथी है या कोई भी अगर जी बड़ा बड़ा शहरा में जा जो शिक्षा लेनो है वो अफोर्ड नहीं कर पावे तो आजकल मोबाइल के ऊपर आप सब क्लास वगैरह सब ले सको हो। आप अपनी पढ़ाई ने मतलब बिना रुकिया आगे बढ़ा सको हो। इनके अलावा आपने जो किसान भाई बहन है बाने मौसम री जानकारियाँ है, योजना री जो जानकारियाँ हैं वे फोन रे माध्यम से आसानी से मिल जावे है। और एक चीज़ की जो सब लोग है वे घर बैठे दुनिया भर से जुड़ सके है। आज क्या करे कि एक समय हो जब सात समुन्द्र री दूरी ने बहुत बड़ी मानी जाए थी, लेकिन आज लगे जाने समुन्द्र री जो आ दूरी है नी आ घट सी गई है। आज को दुनिया रे कोई भी कोने में बैठा हो अपना जो भी रिश्तेदार है अपना जो भी अपना है आप बात करने रे सागे सागे बारी फोटो तक दापा फोटो देख सका। हाँ, तो जीवन सोचो आप कितो आसान हो चुके हैं।
2: पर बैना जद ओ जिको फोन है नी वो जरूरत सु ज्यादा उपयोग कई समस्या ने भी पैदा कर सके।
1: सही बात है, क्या करे नी सिक्का रा दो पहलू है। हाँ। होया करे बिया ही हर चीज रा फायदा और नुकसान दोनों होया करे। सही बात है,
2: घंटो घंटो मोबाइल फोन चलाने सु आंखें तो कमजोर हुए ही है, बिना साथे साथे समय भी बर्बाद हुए और सागे जी को मानसिक तनाव हुए नहीं वो भी बढ़े है। क्यों? क्योंकि आप जब बहुत ज्यादा मोबाइल देख सा तो आप जी की सोचने समझने री जी की क्षमता है नी मनोज बहन भाभी धीरे धीरे कम हो जावे, क्योंकि आप आसे पासे तो कई देख ही नहीं पा रहे हैं।
1: सही बात,
2: खाली बस मोबाइल मोबाइल और बिरे मायने जिको आ रहे हो वो ही अपारे दिन भरे जिको दिमाग में चाल तो रहे है। तो अपारे जिको आसे पासे हुए कि आप कहवा के भाई टाबरा ने जब आप पढ़ाई करावा तो भी ने व्यवहारिक ज्ञान भी आप करावा हाँ कि भाई वो भी जरूरी है कि भाई बे समाज रे मायने परिवार रे मायने किया रहे तो वो तो टाबरा ने मिले ही को नहीं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई और पढ़ाई सु थोड़ो सी बखत मिले तो फिर मोबाइल तो इसु तो कितना ज्यादा नुकसान है। क्योंकि
1: तो
2: जद आपा भी कहता देखो मार तो टाबर है जिके ने भूखी गोनी लागे तो किया लागसी मनोज बहन, क्योंकि किया लागसी थे बताओ कि बे खाया और सीधा मोबाइल ले बैठ गया। हाँ। तो बे बारे तो खेले ही गोनी, जब बे खार बारे खेलसी नहीं जद भी आने भूख भी लागसी।
1: हाँ, बात तो आप बिल्कुल सही करी। मतलब खुशबू बहन मन यह लगे कि आजकल मतलब जो माता पिता रा जो स्मार्टफोन है नी माने माता पिता ज्यादा तो जो छोटा टाबर है नी चला रहे। आपकी घड़ी अगर आप कोई अपना बहना वगैरह ने कोई ना भी आप फोन कर रहे हो फोन सीधो टाबर उठा रहे हो, क्योंकि फोन रे माथे ही वो टाबर बैठे हो। अभी फोन नहीं वो चला रहे
2: भाई सामने वाला फोन उठाए कौन तो बिहार तरफ से एक ही बात हुए कि भाई मार टाबर खाने
1: टाबर कर फोन हो। और इन सब रो कहीं नतीजो हो रहे कि जो टाबरा रो जी आप बोले कि बारे जार जो खेल कूदा बे तो लगभग बंद हो चला। आपनो जो स

0: मैं अगर खुशबू बहन याद करा तो आप देखो मतलब जी अभी गर्मी रे मायने तो दिन रे मायने तो आपने बारे को निकलवा दिया करता कि चलो धूप है, लेकिन आप उड़ीकता कि कद 4-5 बजे और कद आप बारे खेलने जावा और तरह तरह आप खेल खेलता से तोलिया मार दड़ी, लेकिन आज रा टावर सब कुछ खेल भी बारा फोन में ही सिमट गया है। सारे दिन बे जो वीडियो गेम है ऑनलाइन जो गेमिंग है बे सब बे खेल रहा है और मतलब कुण घर में आ रहे है कुण घर से जा रहे है बे कुण के घर गया है टाबरा ने कुछ पतो को नहीं। सिर्फ बारी आंखियां जो है बा फोन में गड़ोड़ी रखे है। तो आज आप देखो खुशबू बहन छोटा छोटा टाबर जाने मतलब आप यूं कह लो 18-18 महीने का 2-2 साल रहा जो टाबर है बे मतलब फोन री स्क्रीन पर आंगलियां इन चलावे कि मतलब एक पल रे खातिर या स्तब्ध रह जावा कि काई मतलब बच्चों क्यों डेवलप हो रहे है। तो इसलिए चाहिए कि जो स्मार्टफोन है नी बीन रो यूज आपने थोड़ो सीमित करनो पड़सी और टाबरा ने भी करनो पड़सी पर टाबर कद कर सी जब आप बड़ा अपने आदत रे मायने चीज ने शामिल कर सी।
1: सही बात है और इन सब समस्या रो एक ही उपाय है कि आपने फोन ने जो मनोज बहन बतायो कि भाई जितनी जरूरत हुए नी बस तो ही काम में लेना है। एक बात मैं थोने और बताऊं देखो मनोज बहन की आज हर मारी आ एक समस्या है कि मारो जी को टाबर है वो खावे को नी भूख लागे को नहीं या पच्चे को नहीं। आपारे बखत में कई हो तो कि आपारी माँ या दादी होती नहीं बे रात ने जब आप सुबह स्कूल जाऊं था नहीं तो रात ने ही नमक मिर्ची पूड़ी बना रखती और मनोज बहन बा आपा ने इतनी चोखी लागती सुबह और आपा ने पच भी जानती और अबार आपा कई करते आपा अबार वास्ते आपारे टाबरा खातर आज को टिफिन है बीरे माए ने नित नवी चीजा मनाओ तो भी टाबर है नी जिको आधो टिफिन है वो इया रिहाण लिया वे और बिने भूखी को नहीं लागे बिने पच्चे होनी। तो बीरो कारण ओ है कि समय रे साथे कई बदलाव हो गया तो अपने ओ ध्यान रखनी जरूरत है कि भी टाबरा ने मोबाइल सु दूर रखनो है
0: बारे जावे
1: बारे जार खेल सो तो बियारो जी को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है जी को दोनों बढ़िया हो सी।
0: बिल्कुल तो बेना आप भी अगर स्मार्टफोन ने बहुत ज्यादा चला रहा हो तो आपने भी थोड़ो सो ध्यान देने रो थोड़ो सावचेत होने रो बकत है मतलब कोशिश करो कि जितनी जरूरत है तो स्मार्टफोन यूज करो बाकी और मनोरंजन का बहुत साधन है कि आप जो गीत संगीत है वो भी तो मनोरंजन रो ही एक साधन है। तो चलो
1: मैंने सुना हुआ एक चोखो सो की तड़लो

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खुशबू, आज रे समय रे मायने एक चीज आपा एक बात हमेशा आपा करिया करा कि जो आत्मनिर्भरता है नी पा बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति ने आत्मनिर्भर होना चाहिए। और अगर बात करा महिलाओं रे आत्मनिर्भरता री नी तो बा भी देखो बहुत जरूरी है। अगर कोई महिला है आत्मनिर्भर है तो बा अपना सपना ने जी सके है, है कुनी बीरा जो भी वह सपना है बाबा ने पूरा कर सके है, खुलर अपनी बात रख सके है। क्यों? क्योंकि वह आत्मनिर्भर है। मतलब कहने रो मतलब आत्मनिर्भरता आज रे समय री सबसे बड़ी जरूरत है।
3: जरूरत है क्योंकि आज आपा बात करा कि भाई लुघायरी के महिला उद्यमिता रे बारे में, मतलब कि घर बैठे छोटा छोटा उद्योग शुरू कर और आत्मनिर्भर बनन री प्रेरणा है। बिल्कुल आप बात कर रहा हाँ छोटा छोटा उद्योगारी।
2: हाँ आ बात सही है बेना। मतलब आत्मनिर्भरता रो मतलब वो कदे ही को नहीं होया करे कि आप कोई बहुत बड़ी या बहुत ऊंचा पद पर आप बैठे हो, कोई बहुत बड़ी

कंपनी में आप नौकरी कर रहा हो या फिर कोई बहुत बड़ा शहर में आपने आत्मनिर्भर होने के लिए जानो आत्मनिर्भरता रो मतलब कतई को नहीं। आत्मनिर्भरता रो मतलब आप इतो समझो कि आप रो जो हुनर है बिने आप काम में लो और दो क्या करे ना कि खुद एक आजीविका हाँ, आप कमा सको हो कुछ रुपया आप कमा सको हो। आत्मनिर्भरता बा है जरूरी को नहीं के लिए आपने कोई बहुत बारे जानो पड़सी या आप बहुत ज्यादा शिक्षित हो सो जद ही आ चीज अपनाई जा सके है। आज रे समय रे मायने जो महिला है वो केवल घर तक ही सीमित को नहीं। आप भी देखो ये खुशबू बहन अपना मेहनत अपने हुनर रे दम पे आज देखो परिवार और समाज दोनों ने बहुत ही क्या करे ना शालीनता रे सागे साथ लेर आगे बढ़ रही है। पर और आपनी कई बहना यान की भी है घर परिवार में आपा देखा हाँ कि कुछ मजबूरियां रे चालते देख लो कुछ परिस्थितियां रे चालते देख लो कि बे घर से बारे को नहीं निकल पाए तो इन रो मतलब वो कदे को नहीं हो सके कि अब आत्मनिर्भर कौन बन सके। बहना यान का बहुत छोटा मोटा उद्योग है जो घर रे मायने घर री चार दीवारी रे मायने रेर शुरू कराया जा सके है। जहाँ की पापड़ बनाने रो जो काम है अपने बीकानेर रे मायने तो आप देखो खूब सारी जो अपनी

0: देखा हाँ कि कुछ मजबूरियां रे चालते देख लो, कुछ परिस्थितियां रे चालते देख लो कि बे घर सुवारे को नहीं निकल पाए,
1: निकल पाए है
0: तो इन रो मतलब वो कदे को नहीं हो सके कि अब बे आत्मनिर्भर कौन बन सके। पे ना यान का बहुत छोटा मोटा उद्योग है जो घर रे मायने, घर री चार दीवारी रे मायने रेर शुरू कराया जा सके है, जिया की पापड़ बनाने रो जो काम है अपने बीकानेर रे मायने, तो आप देखो खूब सारी जो अपनी महिला साथी है बे इन पापड़ बनाने रा उद्योग रे सागे आज आत्मनिर्भर बनी है। इनके अलावा आपनी कई बहना है जो सिलाई कढ़ाई रे मायने बहुत अच्छो बारीक मतलब कला है, बहुत अच्छी भी पकड़ राखे है, तो अपना ये जो सिलाई कढ़ाई वालों जो हुनर है इन्हें आप सिर्फ अपने तक सीमित मत रखो, आप इन्हें एक उद्योग रो, आप इन्हें एक व्यवसाय रो दर्जो दो। इनके अलावा आज देखो अभी आप बात भी करी है कि डिजिटल इंडिया तकनीक इन सभी बात करी कि जीवन बहुत आसान हो चुके, तो बहना अगर आप रे मायने कोई हुनर है तो आप ऑनलाइन बिजनेस री दुनिया में भी कदम रख सको हो। इनके लिए आपने घर से बाहर जाने की कतई जरूरत को नहीं, आपने चाहिए बस एक फोन और आप रो हुनर, आप देखो कि आप रो जो बिजनेस है वो कितनी ऊंचाइयां छू सी।
1: सही है मनोज बहन कि छोटो काम है जिको बड़ी पहचान भी दिला सके है,
0: बिल्कुल,
1: और आ सोच की महिलाओं ने नई ऊंचाई तक पहुंचा रही है, और जठे चाह और बठे रहा आ तो बात है ही है,
0: बिल्कुल,
1: और महिला री मेहनत परिवारों साथ जठे है नी बठे तो सफलता आवनी ही है। घर बैठा आपा कहीं भी काम कर सका जहाँ मनोज बहन बताई ही अबार पिंडरे साथे साथे आपा जिका छोटा छोटा टाबर हुए नी बिया ने भी ट्यूशन पढ़ाने रो काम कर सका।
0: हाँ, बहुत सा काम है, मतलब कहने रो मतलब कि अगर आप छोटा मोटा उद्योग जो है छोटा उद्योग है और एक फायदा है खुशबू बहन कि आने शुरू करवाने खातिर आपने कोई बहुत बड़ी पूंजी को नहीं चाहिए है को नहीं, इनके अलावा आपने कोई बहुत बड़ो स्पेस कोई बहुत बड़ी जगह को नहीं चाहिए कि आपने कोई बहुत बड़ी जगह के लिए अपना काम ने शुरू करने खातिर चाहिए, मतलब कहने रो मतलब कम लागत में कम जगह में भी शुरू किया जा सके,
1: कर सके है,
0: उद्योग मतलब कि जी अचार बनाने रो उद्योग आप कह लो है, मसाला पैकिंग रो काम है, ब्यूटी पार्लर रो है, मेहंदी लगाने रो है, बुटीक रो है, मोमबत्ती, मतलब बहुत टेढ़ा छोटा मोटा उद्योग
1: है, मोटा बहुत काम है जिका आप घर बैठा कर सका,
0: कर सका हाँ।
1: तो इसु कही है कि घर वाला जिका अगर आप घर में बूढ़ा माई थे तो बिहारा भी ध्यान रख कीजिए, टाबरों भी ध्यान रख कीजिए, और आपारो काम है जिको वो भी हो तो रहे है। और खास बात तो आ है कि आज सरकार भी महिलाओं ने कई योजनाओं के जरिए मदद कर रही है जिनसु लुगाया आत्मनिर्भर भी बन रही है, और आपरे साथे साथे दूसरा ने भी रोजगार दे रही है।
0: बिल्कुल जी हाँ, आप देखो कि आज सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह चलाया जा रहा है जेठे 5-7 महिला 5-10 महिला जो है सब इकट्ठी हुए छोटी छोटी पूंजी जमा करे और उनसे अपना जो जो भी उद्योग है व्यवसाय माने, इनके अलावा आप आजीविका योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, एंडी और महिलाओं ने मतलब एंडी बहुत सी योजना है जिनके जरिए जो महिला है बिना आर्थिक सहायता तो दी जावे ही है, सागे सागे प्रशिक्षण भी दियो जावे है, और अगर व्यवसाय शुरू करने खातर महिला ने धन री जरूरत है तो बाने ऋण री जो उपलब्ध ऋण भी उपलब्ध करवाए
1: हुए है बाबी उपलब्ध कराई जावे,
0: बिल्कुल बाने ऋण भी उपलब्ध,
1: और यहाँ भी मनोज बहन की अगर एक महिला ठान लेवे नहीं तो वह हर मुश्किल आसान बना सके है,
0: बिल्कुल,
1: तो आज रे बखत रे मायने जरूरत है की पढ़ाई रे सागे सागे कौशल री और आत्मनिर्भरता रे सागे एक शुरुआत री ही, और यहाँ भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं ने सिलाई डेयरी हस्तशिल्प खाद्य प्रसंस्करण जिसा कामासु जोड़न रो प्रयास हो रहे है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: महिला उद्यमिता केवल आर्थिक विकास को नहीं है बल्कि महिला रो सशक्तिकरण रो प्रतीक है,
0: और सशक्तिकरण तो देखो बहुत जरूरी है एक महिला रो, तो बिना आप भी अगर कुछ इन तरह का सपना देखा हो कि आप रो खुदरो कोई ऑफिस हो, आप री खुदरी कोई कमाई हो, आप रो खुदरो कोई बिजनेस हो, तो आपने सोचने री बिल्कुल भी जरूरत को नहीं कि अभी जिया खुशबू बहन बोलिया ना कि जहाँ चाह वहाँ रहा, जठे आप चाह रख ली नहीं कि माने वो करना है तो वो काम जरूर हो सी, तो चलो अब बिना ने एक बढ़िया सो गीत सुना दे
1: जरूर।

0: तो देखो खुशबू बहन, बातें तो खूब है बहना संग करने खातिर, लेकिन समय रही थोड़ी सी कमी मान लो। तो बहना अबार के लिए आपकी सखी मनोज खंगारोत ने
1: और खुशबू हर्ष ने दे सीख।
0: राम राम, राम।

0: state government directed all departments to ensure that only 50% of Group C and Group D employees attend office each day, while the remaining staff will work from home on a rotational basis. The crucial talks between US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping is underway in Beijing. Iran war, global energy crisis, tariffs, trade tensions, Taiwan and artificial intelligence are likely to dominate the agenda. Earlier in his opening remarks, President Xi called for China and the US to be partners, not rivals. In his opening remarks, US President Trump described his Chinese counterpart as a great leader and said the relationship between the two superpowers will be better than ever before. The US President arrived in Beijing last evening for the high-stakes summit with Chinese President. The US President has brought along several top business and technology executives on his visit to China. Among the prominent executives accompanying the President are NVIDIA CEO Jensen Huang, Apple CEO Tim Cook, Tesla and SpaceX chief Elon Musk. In badminton, India's PV Sindhu and top men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the quarterfinals of Thailand Open with impressive victories today. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Denmark's Amalie Schultz in women's singles. World number 12 Sindhu will now face reigning world champion Akane Yamaguchi of Japan in the quarterfinals. In men's singles, 7th seed Lakshya Sen defeated Chinese Taipei Su Li Yang to enter the last eight. Meanwhile, top-seeded Indian men's doubles pair Sattvik and Chirag defeated Malaysia's Brian Jeremy Gunting and Mohammad Haikal to book their place in the last eight. News just in. Election Commission today announced Special Intensive Revision SIR Phase 3, which will be conducted in a phased manner in 16 states and 3 union territories. The states are Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Sikkim, Tripura, Telangana and Uttarakhand. The UTs are NCT of Delhi, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India asserts BRICS expected to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. Two-day BRICS foreign ministers meeting begins in New Delhi. India and UAE set to take bilateral ties to next level during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi tomorrow. Congress leader V.D. Satheesan to be Chief Minister of Kerala. Home Minister Amit Shah says India has emerged as a global leader and first responder in disaster management. US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping hold crucial talks in Beijing. And in badminton, India's PV Sindhu and men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter quarterfinals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanaklata. भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत।

0: विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबूधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग $3 अरब के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को

0: विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप

0: हमारे सोशल मीडिया हैंडल XH या AR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजय नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।

आनंद बख्शे की इस रचना को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और ये फिल्म थी आशा, स्वर था लता मंगेशकर का। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, हाथी मेरे साथी फिल्म से हैं, स्वर है मोहम्मद रफी का, गीत रचना आनंद बख्शी की और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

ये आवाज थी मोहम्मद रफी की और ये फिल्म थी हाथी मेरे साथी। फिल्म संगीत आप इसमें सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से और आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर, फिल्म का नाम है सन्यासी।

विनोद राठौड़, अलका याग्निक के गाए बाजीगर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर 3 बजे हैं हमारी आज की पहली सभा अब समाप्त होती है। शाम 4 बजे हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हमारे प्रसारण जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज। 4 बज रहे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। इस सभा में हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी। और दोस्तों, हर हफ्ते हमें रहता है इंतजार एक ऐसी शख्सियत से मिलने का इस कार्यक्रम में, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर उन्होंने अपना जीवन सेना के लिए समर्पित कर दिया और साथ ही साथ हम सबके लिए अनुभवों की एक मिसाल बन गए। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हमारी अतिथि हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे, जिन्होंने लगभग डेढ़ दशक तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दी है। रिटायरमेंट के बाद वे कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रही हैं, साथ ही साइबर सुरक्षा इंफोसेक से जुड़े कार्यों में भी आप योगदान दे रही हैं। प्रतीक्षा ठाकरे का नाम विशेष रूप से उन महिला सैन्य अधिकारियों में लिया जाता है जिन्होंने

0: भारतीय वायुसेना में नेतृत्व, अनुशासन और तकनीकी दक्षता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपकी विशिष्टता और विशेषज्ञता रक्षा सेवाओं, नेतृत्व, सुरक्षा और तकनीकी प्रबंधन में रही है। हम आपका स्वागत करते हैं प्रतीक्षा जी, और संदेश टू सोल्जर्स में आज आपने समय निकालकर जो यहाँ शिरकत की इस कार्यक्रम में, उसके लिए आपके हृदय से आभारी हैं।
1: धन्यवाद विनीता जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का हिस्सा बनना वास्तव में मेरे लिए सम्मान और गर्व की बात है, जहाँ मुझे पूरे भारत के सैनिकों तक अपना संदेश पहुँचाने का अवसर मिल रहा है।
0: जी शुक्रिया, इसलिए भी कि आपने आकाशवाणी में न केवल आकर हम लोगों को अनुभवों का खजाना सौंपा है, बल्कि इसलिए भी कि आप इसके लिए हमारे ही आभार जता रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही आपसे कहना चाहती हूँ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, आप इतनी यंग हैं, और ऐसे में जब हम आपके साथ रिटायर्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आता, क्योंकि रिटायर तो आमतौर पर व्यक्ति 60 साल की उम्र के बाद होता है, तो आप इतनी छोटी सी उम्र में रिटायर्ड कैसे हैं?
1: बात आपकी सही है, क्योंकि मैं भी रिटायर्ड ये शब्द थोड़े से बुजुर्ग लोगों के साथ एसोसिएट करती थी, बट क्योंकि मैंने अपने लाइफ के प्राइम 14 साल एयरफोर्स को समर्पित किए हैं और उसके बाद मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ, इसी वजह से वो रिटायर्ड शब्द है, और वो मेरे लिए है पक्का, और डेफिनेटली इट इज नॉट फॉर द रैंक बट इट इज फॉर मी फ्रॉम द एयरफोर्स।
0: दैट्स सो सो ब्यूटिफुल। अच्छा एक बात बताएं, आपको कैसे लगा कि आपको एयरफोर्स में आना है, कौन था इसके पीछे या किससे आपको प्रेरणा मिली?
1: विनीता जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, बट ये ऐसी एक चीज है जो मुझे विरासत में मिली है
0: जी।
1: क्योंकि अगर मैं शुरुआत करूं तो मेरे दादाजी स्वतंत्र सेनानी थे जो भारत की आजादी के लिए लड़े। उसके बाद परंपरा बढ़ाई गई मेरे फादर ने, जो इंडियन आर्मी में भर्ती हुए और 25 साल की सेवा जो उन्होंने देश के लिए की, उसके बाद वो रिटायर्ड हुए एज कर्नल। और परिवार की मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जिसने सिर्फ यूनिफॉर्म वर्दी पहनने का सपना ही नहीं देखा, बल्कि उसको जीने का सपना भी देखा।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसीलिए दोस्तों मैंने आप सभी से ये बात कही कि आज की हमारी अतिथि अनुभवों का खजाना है, और इतना कुछ है इनके पास हमें बताने के लिए, क्योंकि आपके परिवार में प्रारंभ से ही फोर्सेस के लिए बहुत रुझान रहा है ना। तो भारतीय वायुसेना में यानी इंडियन एयरफोर्स में जब आप आई तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था?
1: अच्छा विनीता जी मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी
0: जी,
1: मेरे बचपन की तरफ, जहां पे मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था। जैसे उस टाइम पे जब मैं छोटी थी उस टाइम मेजरली दो प्रोफेशन ज्यादा नामचीन हुआ करते थे, एक था डॉक्टर दूसरा था इंजीनियर, की ये दो प्रोफेशन है तो आपने जिंदगी में कुछ पा लिया है, नहीं तो नहीं। जो मैं अभी सोचती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, और भी बहुत अच्छे प्रोफेशन हैं। बट हालांकि उस टाइम मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, और जैसे मैंने आपको बताया मैंने घर पे एक ही प्रोफेशन देखा था, वो था देश सेवा का
0: जी।
1: तो तब मैंने ठाना कि अच्छा डॉक्टर बनूंगी तो डिफेंस फोर्सेस में ही डॉक्टर बनूंगी, ताकि मेरे दो सपने पूरे हो सके, एक तो देश की सेवा और देश के नागरिकों की सेवा। तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ाई करती चली गई, अच्छा किया, बायो में मेरा काफी रुझान था, काफी इंटरेस्ट था, तो बायो लिया। जब मैंने प्री मेडिकल एग्जाम दिया तब मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए कि मैं MBBS कर पाऊं, हालांकि इतने नंबर थे कि मुझे डेंटल में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन उस टाइम ऐसा लगा कि नहीं करना है तो MBBS ही करना है। तो जब मैं कॉलेज में एंटर होने वाली थी, उस टाइम मेरा 12th होने के बाद, मेरे फादर तब तक रिटायर्ड हो चुके थे और वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे।
0: अच्छा।
1: हालांकि उन्होंने और मेरी मम्मी ने कभी भी मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला कि तुमने ये करना है या वो प्रोफेशन चुनना है, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे फादर के मन में था कि मेरी बेटी भी इंजीनियर बने उन्हीं की तरह। तो उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूं, तो उन्होंने बोला मेडिकल के तरफ अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंजीनियरिंग कर लो, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, वहां से भी तुम कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लोगी, इतना विश्वास उनको मेरे ऊपर था। तो वहां से शुरुआत हुई कि ठीक है, इंजीनियरिंग की एग्जाम दी,

0: एडमिशन मिला नागपुर यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिला, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच उस टाइम की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एडमिशन ली. एंड फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इन इंजीनियरिंग. तब तक लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता था कि आधा सपना तो मेरा रह गया है जो है डॉक्टर बनने का. लेकिन जो बचा आधा था शायद वो भी कहीं छूटता नजर आ रहा था मुझे. लेकिन एक और बात बताना चाहूंगी विनीता जी कि ये हम जो कहते हैं कि हमने सपना छोड़ दिया, वो बात नहीं होती. सपना हमें नहीं छोड़ता है, ये बात होती है.
1: सो ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी बात कही है आपने.
0: सो कहीं ना कहीं वो सपना मुझे ही चेस कर रहा था कि नहीं, तुम अगर डॉक्टर नहीं बनी हो तो डिफेंस फोर्सेस में तो पक्का जाओगी. सो दैट वॉज द पॉइंट जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहां पे एयरफोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर में रिक्रूटमेंट के लिए आए. मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे थे तो मैं भी गई उनके साथ कि चलो जाते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर तक हमारा प्लेसमेंट हो चुका था वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनीज में. सो लाइफ तो सेट थी. एज अ यंग पर्सन मुझे लगता था लाइफ में और क्या चाहिए, आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आपकी नौकरी लग चुकी है, पैसे कमाना है एंड लाइफ में मजे ही मजे हैं, ये होता था उस टाइम. एंड अभी भी काफी यंग लोगों का दिमाग में माइंडसेट ये होता है. बट स्टिल जैसे मैंने आपको बताया कि वो सपना था मेरे मन में कि वर्दी तो पहननी है, यूनिफॉर्म वॉज माई ड्रीम. सो वैसे करके देन रिक्रूटमेंट के लिए हम गए. एयरफोर्स ने एग्जाम्स कंडक्ट की, उस टाइम फास्ट ट्रैक एग्जाम एक होता था. उसमें एग्जाम हुई, क्लियर किया. एंड द नेक्स्ट थिंग जो मेरे ध्यान में है, मेरे जहन में है कि हम मैसूर पहुंचे, मैं और मेरे फ्रेंड्स, एसएसबी देने के लिए. और आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, एसएसबी के जो वो 5 दिन होते हैं, मतलब वो लाइफ के आर द बेस्ट डेज, दैट इज द गोल्डन पीरियड. और एक संदेश जो मैं अभी देना चाहूंगी देश के सब यंग बच्चों को कि रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन यू शुड एंजॉय, यू शुड एक्सपीरियंस दोज 5 डेज ऑफ एसएसबी. वो आपको आपके खुद के बारे में इतना सिखाता है जो और कहीं आपको सीखने नहीं मिलेगा.
1: अमेजिंग. और ना सिर्फ सीखने को बहुत कुछ मिलता है बल्कि ये आपका वो सपना पूरा करता है कि आपके तन पर यूनिफॉर्म हो, मन में जज्बा हो और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कदम उठें.
0: जी बिल्कुल.
1: और साथ के साथ आपके आपके कदम तो जमीन पर नहीं, आपके कदम तो आसमान के लिए है ना. तो आपने डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का सपना ही नहीं देखा बल्कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन भी की. इसके आगे की यात्रा की बात आपसे बिल्कुल करेंगे लेकिन उससे पहले आपके इस आसमानी यात्रा की शुरुआत के लिए ये गाना विशेष रूप से आपके लिए समर्पित है.

0: प्यार दोस्तों, संदेश टू सोल्जर्स में स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और प्रतीक्षा जी, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूं इस गाने के बाद पर्टिकुलरली, कि क्या कभी कोई ऐसा है जिसने ये गाना आपको डेडिकेट किया है या कोई आपके लिए ये गाना गाता है?
1: जी हाँ बिल्कुल, ये है मेरे हस्बैंड जो खुद एयरफोर्स में है।
0: ओह नाइस, अच्छा अच्छा वो भी एयरफोर्स में?
1: जी हाँ, वो अभी सर्विंग है, विंग कमांडर अभिषेक लूथरा मेरे हस्बैंड है। एंड बिल्कुल ये गाना वो कभी हमारे लिए गाते हैं, कभी हम उनके लिए गाते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बात बताएं, आप एयरफोर्स ने आपकी पर्सनालिटी को कैसे बदल दिया? क्या उसका क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव तो नहीं ही है, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या आपकी पर्सनालिटी पे आया? क्योंकि आपने अभी तक जो कुछ भी अपने बारे में बताया प्रतीक्षा जी, मुझे लगता है कि आप तो पहले से ही काफी फोकस्ड और डेडिकेटेड रही, तो एयरफोर्स ने भी कुछ आप में बदला?
1: बिल्कुल, लेकिन एयरफोर्स जाने से पहले जो एक एडवाइस मेरे फादर ने मुझे दिया था, मतलब जस्ट मैं निकल रही थी एयरफोर्स अकेडमी डुंडिगल के लिए, और एक चीज जो आखिरी में उन्होंने मुझे जाते वक्त कही थी कि बेटा ये वर्दी है, ये कोई कपड़ा नहीं है, इसकी इज्जत करना, बिकॉज ये तुम्हें सम्मान और एक पहचान देगी।
0: वाह।
1: और उस लास्ट थॉट्स, लास्ट सेंटेंसेस के बाद जब मैं एयरफोर्स अकेडमी पहुंची, सो एक वो अलग दुनिया थी। जैसे मैंने आपको बताया मेरे फादर आर्मी में थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि ट्रेनिंग में होता क्या है। और जब मैंने उनको वापस जाके पूछा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला वो एक्सपीरियंस तुम्हारा खुद का था और मैं चाहता था कि वो एक्सपीरियंस तुम लो और उसको अपनी तरीके से ढालो, ना कि कोई पहले से दिमाग में कोई चीज लेके चलना, वो ठीक बात नहीं है।
0: Oh, that's so amazing. In fact, मुझे लगता है कि आपने ये जो बात कही है ना, ये उन सभी फादर्स को सुनना चाहिए जो अपने बच्चों के स्कूल बैग्स अपने कंधों में रखकर उनको बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आते हैं। दे शुड लर्न कि प्रतीक्षा जी के फादर ने कहा था कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग खुद अपनी नजरों से अपने एक्सपीरियंस के साथ समझनी है, वही तुम्हारे काम आएगी। ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा, अब ट्रेनिंग की बात आपने कही है, तो ट्रेनिंग के दौरान सबसे कठिन चुनौती, सबसे मुश्किल घड़ी आपके लिए कौन सी रही?
1: वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एज एक्स फौजी अगर मैं ये बोलूं तो कुछ लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम जो सबसे मुश्किल चीज थी मेरे लिए थी, वो थी रनिंग।
0: रनिंग?
1: जी हाँ, ऑल्दो मैं स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलती थी, मैं बास्केटबॉल खेलती थी, लेकिन जो अकेडमी में जिस लेवल की रनिंग होती है, क्रॉस कंट्री होती है, उससे मैं डर जाती थी शुरुआत में। बहरहाल ट्रेनिंग होती ही इसके लिए कि आपको पहले ट्रेनिंग में मेंटली टफ बनाया जाता है, उसके बाद आप फिजिकली टफ तो बन ही जाते हो। सो वो एक शुरुआत की चुनौती थी जो मैंने कर ली थी, वो पार कर ली थी मैंने। लेकिन हाँ जी, अगर आप पूछेंगे तो एक रनिंग एक मेरा बहुत बड़ा खौफ था।
0: इसीलिए आपने जमीन छोड़कर आसमान चुना।
1: हो सकता है।
0: अच्छा एक बात और बताइए, विंग कमांडर बनने की जो आपकी जर्नी थी, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन्स रहे आपके लिए?
1: जी विंग कमांडर की जर्नी बिल्कुल आपको

0: आना चाहूंगी, बिल्कुल भी आसान नहीं है. डिफेंस फोर्सेस में जाना ही आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये एक और चीज बताना देश के सैनिकों को और जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कि डिफेंस केवल एक नौकरी नहीं है, ये एक जीवन शैली है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. तो आपको पूरी तरह अपने में ढालनी पड़ती है. बिल्कुल, आपको आपकी पास्ट लाइफ जो आप एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले जो चल रही थी, जो आपको लाइफ, आपको पूरी तरह छोड़नी पड़ती है. क्योंकि एक वे ऑफ लाइफ का कहने का मतलब ही ये है कि एक डिसिप्लिन लाना, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट जो आपको आपके काम की तरफ देनी पड़ती है. तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं उस जर्नी में टू बिकम अ विंग कमांडर, स्टार्टिंग विथ पोस्टिंग्स. आपको अलग अलग जगह पोस्टिंग जाना होता है, आपके फ्रेंड्स छूट जाते हैं और आपको एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करना होता है, आपको बंदूक चलानी होती है, आपको फिजिकल फिट रहना पड़ता है. तो सारी चीजें आपके लाइफ में एक साथ हो रही होती है. सो दैट इज, दैट कम्स फ्रॉम योर मेंटल फिटनेस एज वेल एज फिजिकल फिटनेस. तो ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में ही आपको तैयार किया जाता है ताकि आगे के लाइफ में आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें.
1: अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, हम डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस में डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की जो इंपॉर्टेंस है आपकी नजर में क्या है? वैसे तो मुझे लगता है कि हमारी सबकी जिंदगी में, चाहे वो फोर्सेस में हो या सिविलियंस हो, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन तो सबकी लाइफ में होना ही चाहिए. लेकिन जब हम फोर्सेस की बात करते हैं तब हम इसे बहुत हाईलाइटेड रूप में देखते हैं, तो एज पर यू इसकी क्या इंपॉर्टेंस है?
0: जी देखिए, डिसिप्लिन, आपने जैसा बोला कि डिसिप्लिन हर एक के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट डिसिप्लिन आप, मुझे नहीं लगता आप कभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं. एंड सक्सेस का पैरामीटर हर एक के लाइफ का अलग होता है. सो डिसिप्लिन आर्म फोर्सेस में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए आर्म फोर्सेस बना ही इसलिए ताकि वॉर टाइम में हम काम कर सके और देश को प्रोटेक्ट कर सके. सो उसके लिए पहला स्टेप ही, पहला कदम ही डिसिप्लिन है. अगर आप अपने काम में, आप अपने लाइफ में हर एक चीज को लेके डिसिप्लिन है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी आएगा. और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. सेकेंड सेकेंड का भी बहुत फर्क पड़ता है. अगर आप वॉर टाइम सिनेरियो देखेंगे तो हर एक सेकेंड का बहुत बहुत मेजर इंपॉर्टेंस होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन, ऑन ग्राउंड, इन एयर, फ्लाइंग, एवरीथिंग. हर एक जगह पे टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. सो इसीलिए जैसे आपने कहा, बहुत हाईलाइट किया जाता है क्योंकि डिफेंस फोर्सेस चलती ही इन दो चक्कों पे है, वो है डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट. कोई भी एक चीज अगर खराब हुई तो आपकी गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाएगी.
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने. अच्छा, आप उन खास लोगों में से हैं, या कहना चाहिए कि उन महिला सैन्य अधिकारियों में से हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में लीडरशिप, डिसिप्लिन और टेक्निकल एक्सीलेंस का एग्जाम्पल दिया है. तो इस नजरिए से मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपने लीडरशिप का सबसे बड़ा पार्ट खुद क्या सीखा है, मतलब आपकी नजर में लीडरशिप की कौन सा ऐसा लेसन है जिसने आपकी पर्सनैलिटी को वो बनाया है जो आज आप हैं और बड़े फक्र से सब आपका नाम लेते हैं.
0: जी, लीडरशिप में मैं तीन चीजें आपको बताना चाहूंगी. एक है पेशेंस एंड पेशेंटली लिसनिंग, खुद धैर्य रखना और धैर्य के साथ सामने वाले की बात सुनना, ये बहुत जरूरी है. दूसरी बात आती है ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल. आप अपनी टीम को अगर आप बोल रहे कुछ करने के लिए, पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा. अगर आप बोल रहे इंटेग्रिटी होनी चाहिए तो आपको इंटेग्रिटी दिखानी होगी, आपको एथिकली एक्ट करना पड़ेगा. वो होता है लीड बाय एग्जांपल. और तीसरी चीज है आपकी टीम. आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, तो आपकी टीम का ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी होती है. दैट इज वॉट इज लीडरशिप फॉर मी.
1: अमेजिंग, इतनी खूबसूरत डेफिनेशन आपने लीडरशिप की दी है. तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी लीडर ना सिर्फ डिफेंस फोर्सेज में या इंडियन एयरफोर्स में रही हैं, बल्कि अब जो आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं, आपने वहां भी लीडरशिप की एक मिसाल कायम की होगी, मैं ऐसा मान के चलती हूं. तो ये तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई आपने. ये कहकर कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की क्या इम्पोर्टेंस रही है।

0: बट अदरवाइज अगर आपसे ये कहा जाए कि डिफेंस की फील्ड में महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखती हैं, ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं कि ना सिर्फ एक महिला होने का गौरव आप रखती हैं बल्कि एक बेहतरीन ऑफिसर के रूप में आप जानी जाती हैं। आप रिटायर्ड हुई हैं लेकिन आज भी लोग आपका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की क्या भूमिका है इस फील्ड में, रक्षा सेवाओं में खासकर?
1: जी देखिए, महिला या मर्द, मुझे लगता है दोनों में कोई फर्क नहीं है। फॉर दैट मैटर इवन डिफेंस फोर्सेज में कोई जेंडर बायस नहीं है
0: जी,
1: क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर मैं आपको मेरे ट्रेनिंग के डेज में लेके जाऊं तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक महिला होके मैंने नहीं की है या किसी और मेल ऑफिसर ने हमारे साथ जो थे ट्रेनिंग में उन्होंने ज्यादा की है या हमने कम की है। तो अगर ट्रेनिंग में भेदभाव नहीं है तो आगे भी कोई भेदभाव नहीं होता है। सो एज अ वुमेन अगर आप मुझे पूछे तो बहुत जरूरी है कि आप आपके मेल काउंटर पार्ट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चले, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो बंधन होता है वो हमारे दिमाग में होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। वो जो एक सेल्फ डाउट होता है वो हमारे अंदर होता है ना कि बाहर। बाहर सबको दुनिया एक समान देख रही है और स्पेशली डिफेंस फोर्सेस सबको एक समान ही देख रही है। तो एज अ वुमेन मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए, आप उतनी ही केपेबल हो जितना एक मेल ऑफिसर होते हैं।
0: जी बेहतरीन, मुझे लगता है कि कोई जेंडर बायस एटलीस्ट डिफेंस फोर्सेस में नहीं है, ये बात आपकी इस स्टेटमेंट ने तो साबित कर ही दी है। तो अगर किसी के मन में ये वहम हो कि औरत है ये कैसे कर पाएगी या महिलाएं कैसे इस फील्ड में जा सकती हैं या आर्मी नेवी एयरफोर्स ये औरतों के लिए नहीं है, उन सब की बात का एक बहुत ही करारा जवाब आपने अपने इस स्टेटमेंट के द्वारा दिया है। हैट्स ऑफ टू यू, आई रियली गिव यू अप्लॉज फॉर दिस आंसर। और मुझे लगता है कि जिस तरह आपने इंडियन एयरफोर्स को अपनी भूमिका से बहुत गौरवान्वित किया है तो ये बादलों का गाना तो आपके लिए बनता ही है।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी। मैं बहुत सारी बातें कर रही हूं प्रतीक्षा जी से, बहुत कुछ अच्छा जानने को भी मिल रहा है और काफी कुछ आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो एक बात जो मैं आप सबकी तरफ से प्रतीक्षा जी से पूछना चाहती हूं वो ये है कि आपके लिए अब तक अगर पूछा जाए तो आपकी जिंदगी का सबसे गौरव भरा पल कौन सा था, आपका प्राउडेस्ट मोमेंट ऐसा कौन सा था जिस पर आपको लगे कि ये वो पल है जो मैं सपना देख रही थी जिसका।
1: विनीता जी, वैसे तो काफी है। पहला तो था और अभी भी है, जो जिस दिन मैंने यूनिफॉर्म पहली बार पहनी वो पक्का मेरा एक प्राउडेस्ट मोमेंट था। बट उसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि हर सैनिक के जीवन में एक ऐसा पल होता है जो सिर्फ याद नहीं रहता लेकिन उनके रूह में बस जाता है। और मेरे जीवन में एक ऐसा पल आया था 26 जनवरी 2015 में। 26 जनवरी 2015 में जो आरडी परेड हुई थी,
0: रिपब्लिक डे परेड, हाँ जी,
1: उसमें आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स का इंडिविजुअल ऑल वुमेन कंटिजेंट बना था। और मैं उस कंटिजेंट का पार्ट थी एयरफोर्स की तरफ से।
0: ओह, वंडरफुल।
1: अब आप सोचिए, एक लड़की जिसका बचपन का सपना था यूनिफॉर्म पहनना, देश सेवा करना, अब वो देश के सबसे बड़े मंच पे खड़ी थी, वो था राजपथ। और पहले तो उसका सिलेक्शन हुआ, पहले तो 2 महीने की उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर, क्योंकि जनवरी एंड में होता है, 26 जनवरी को होता है पूरा परेड। तो पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, वो मेंटल टफनेस से स्टार्ट होती है, फिर फिजिकल टफनेस पे जाती है, बिकॉज वो आसान नहीं होता है। वो परेड होती है लगभग 14 किलोमीटर लंबी परेड, जो आपको पूरे कंटिजेंट के साथ ताल में ताल मिला के रिदम में आपको मार्च करते हुए जाना होता है
0: पूरे 14 किलोमीटर।
1: बिल्कुल। तो वो सिर्फ एक मार्च नहीं होती, वो एक गौरव होता है और एक अनुशासन होता है कि आप आपकी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चले। और वो भारत की एक शक्ति का प्रदर्शन होता है पूरे विश्व के सामने।
0: ट्रू।
1: सो जब हम राजपथ पे चले, तब मार्च किया कंटिजेंट के साथ, और फिर वो पल आया जहां हमने भारत के सुप्रीम कमांडर जो राष्ट्रपति थे उस समय के, श्री प्रणब मुखर्जी जी, और उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी थे श्री नरेंद्र मोदी जी, और भारत के इतिहास में पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में एज चीफ गेस्ट फॉर दैट ईयर, मिस्टर बराक ओबामा। सो एक वो जो सलामी थी
0: जी,
1: वो सिर्फ हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक हर लड़की की मेहनत थी, हर महिला का सपना था, और उसके साथ हमको पता था पूरे देश का विश्वास है हमारे साथ। बट आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि वो एक सिर्फ पल नहीं था, बट वो एक हर महिला, हर लड़की

0: देश की हर लड़की का एक वो सपना था कि उस राजपथ पे मैं चलूं, क्योंकि उस दिन मैंने एक और बात सीखी थी कि सीमाएं बाहर नहीं होती, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो हमारे दिमाग में होती है। और जब आप वर्दी पहनते हैं तो आप खुद को प्रूव नहीं करते, लेकिन आप आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं। तो मुझे लगा वो उस तरफ हमने एक छोटा सा योगदान दिया था।
1: कितनी सुंदर बात आपने कही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक मिसाल बनते हैं, आप उनके लिए एक रास्ता तैयार करते हैं जिस पर चलकर वो आपसे भी आगे निकल पाएं, आपके सपनों को और अधिक बुलंदियों पे पहुंचा सके। बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत सुंदर विचार हैं आपके। प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, ये जब आपने अपना अनुभव बताया रिपब्लिक डे परेड पर, तो उस वक्त जब आप राजपथ पर थी, आपको अपने बचपन के उस सपने को पूरा होते देखने की खुशी तो होगी ही, साथ में ये भी फीलिंग थी कि आपने अपने पापा को प्राउड किया है आज।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं फिर से उस चीज पे जाना चाहूंगी जहां मैंने बोला कि आप सपना छोड़ सकते हो लेकिन सपना आपको नहीं छोड़ता है।
1: कितनी
0: क्योंकि
1: सुंदर बात।
0: एक और चीज मैं बताती हूँ आपको, जब मैं स्कूल में थी तब मैं एनसीसी में थी, और तब भी मुझे मौका मिला था रिपब्लिक डे परेड पे जाने का, लेकिन तब दिमाग में था कि मेरी स्टडीज मिस हो जाएंगी, मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी, क्योंकि तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तब मैंने दिल पे पत्थर रख के अपनी मैम को बोला था कि मैम मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी। तो वो सपना मेरा शायद अधूरा रह गया था जो एयरफोर्स ने पूरा किया है।
1: हाउ स्वीट, कितनी प्यारी बात है ये कि आपने बचपन के सपने को बड़े होकर जिया, और ना सिर्फ जिया बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बना दिया। बहुत ही सुंदर। अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात बताइए, आप तो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा रही हैं, तो बहुत थ्रिल माना जाता है इस डिफेंस फोर्स को, तो आपका भी कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा जो आज आप हमारे साथ बांटना चाहेंगी?
0: जी बिल्कुल। और थ्रिलिंग तो डेफिनेटली है, एयरफोर्स इज फुल ऑफ थ्रिल। और उस थ्रिल में मैंने एक जो काम किया था वो था पैरा जंपिंग का। पैरा जंपिंग एक ऐसा अनुभव रहा है मेरी लाइफ में जिसने मुझे बाहर से तो बदला ही है, जैसे एयरफोर्स ने मुझे बाहर से बदला है, लेकिन पैरा जंपिंग ने मुझे अंदर से बदल दिया।
1: क्या बात है।
0: उसका अनुभव ऐसा रहा कि Mi-17 हेलीकॉप्टर से आपको 5 जंप्स करनी होती है, तब आप ट्रेन पैरा जंपर बनते हैं।
1: और ये जो 5 जंप करनी होती हैं, ये किसी टाइम पीरियड में करनी होती हैं?
0: जी ये 2-3 दिन के पीरियड में करनी होती है, क्योंकि मॉर्निंग जंप्स होती है, आपकी नाइट जंप्स होती है, सो वो सब मिला के 2-3 दिन में आपको कंप्लीट करनी होती
1: सिर्फ
0: है।
1: दो तीन दिन में?
0: जी हाँ।
1: माय गॉड।
0: और उसके पहले अगेन हर एक चीज की ट्रेनिंग तो होती ही है, तो ट्रेनिंग के बाद फिर आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप जंप करें, और वो लगभग 3,000 से 5,000 फीट की ऊंचाई से जंप की जाती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं होता है, वो अपने अंदर का जो डर है वो निकालने के लिए होता है। और आपको मैं एक और चीज बताऊंगी, उस टाइम तक मुझे ऊंचाई का डर था, थोड़ा सा तो डर रहता था मुझे। और जब मेरी पहली जंप थी, मैं इतनी एक्साइटेड थी उस पहले जंप के लिए, क्योंकि वो होता है ना, इट्स एन अननोन टेरिटरी, आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। तो पहली जंप तो बहुत मजेदार थी, और इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस, इतना खूबसूरत अनुभव था वो, कि आपको पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है, बस एक एड्रेनलिन रश होता है, एक एक्साइटमेंट होती है।
1: जी
0: क्योंकि जैसे कहते हैं, कभी कभी अनजानी चीज भी डराती नहीं है लेकिन आपको उड़ना सिखाती है।
1: हाँ,
0: लेकिन दूसरा जंप जो था वो थोड़ा अलग था, क्योंकि तब तक मुझे पता चल चुका था कि पहले जंप में हुआ क्या था। तो दूसरी जंप में मुझे ऑनेस्टली बताऊं डर लगा था, और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी सुसाइड मिशन पे निकली हूं।
1: ओह माय गॉड।
0: बट तीसरे जंप के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी, और एक मैजिकल फीलिंग थी उस टाइम पे, क्योंकि आप जब जंप कर जाते हो आप वहां पे होते हो जहां पे और कोई शोर नहीं है, कोई नहीं है आपके आसपास, सिर्फ आप हो, चारों तरफ सन्नाटा है, और आपकी अपनी सांस से आप सुन पा रहे हो।
1: इनर स्ट्रेंथ
0: इनर
1: बेसिकली।
0: स्ट्रेंथ, वो एक ऐसा पल है जब आपको लगता है कि एक पक्षी होना कैसे लगता है, दैट इज एक्चुअल फ्रीडम। एंड वो एक पॉइंट होता है जहां आप खुद से कनेक्ट करते हो।
1: ऑसम, कितना सुंदर एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, और सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं अगर आप देख सकें तो मतलब ऐसा जब आप ये अभी एक्सप्लेन कर रही थी, ये बता रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ ही जंप करने के लिए नीचे झांक रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं. तो ये आपका डिस्क्रिप्शन तो बहुत ही खूबसूरत है. आई मस्ट से कि आप बताती बहुत अच्छा है अपने अनुभव. और एक और बात बताइए, देखिए अभी आपने अभी तक जो भी बात बताई वो आपकी सक्सेस स्टोरीज थी
0: जी.
1: क्या ऐसा कभी हुआ कि आपको किसी असफलता का सामना करना पड़ा हो, और अगर ऐसा हुआ तो फेलियर का डर और फेलियर से उबरना, मतलब उस डर को पीछे छोड़ना या उस डर से बाहर निकलना, ये आपका तरीका क्या है इसके लिए?
0: एक कहीं मैंने ये बड़ी अच्छी चीज पढ़ी थी कि असफलता अंत नहीं होता, ये बस एक नया रास्ता दिखाना और उसका दिखाने का तरीका होता है
1: जी.
0: सो फेलियर्स तो बिल्कुल आए हैं लाइफ में, बहुत फेलियर्स है, और वो जिंदगी ही क्या जहां पे फेलियर्स ना हो. लेकिन आपको लाइफ सिखाती है कि आप गिरिए, आप उठिए, आप अपने कपड़े झाड़िए, साफ कीजिए और आगे बढ़िए. ये जिंदगी है.
1: बहुत सुंदर.
0: तो आप जैसे बता पूछ रही हैं कि फेलियर्स काफी आए हैं, लेकिन हाँ इनिशियली एक जो सेटबैक लगता है आपको, एक थोड़ा सा धक्का सा लगता है, आपने उस पीरियड से जल्दी उबर जाना चाहिए. अगर आप उस फेज में ज्यादा दिन तक रहे या ज्यादा टाइम तक रहे, फिर वो फेलियर आपको खा जाएगा. एंड वही मेंटल टफनेस डिफेंस फोर्सेस हर एक इंसान को सिखाती है. रादर डिफेंस फोर्सेस तो सिखाती है, लेकिन एक संदेश जो मैं सबको देना चाहूंगी कि ये आपने खुद में भी डेवलप करना चाहिए कि फेलियर्स तो आएंगे. जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबके लाइफ में फेलियर्स तो आए हैं, लेकिन कितनी जल्दी आप उन फेलियर्स से उबर के आगे बढ़ना सीख लेते हैं, वो एक्चुअल लाइफ है.
1: बिल्कुल. बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर. मुझे लगता है कि जो भी आपके साथ थोड़ी देर भी बैठ जाता होगा ना प्रतीक्षा जी, वो एक बेहतर इंसान बनकर ही बाहर निकलता होगा. आई एम श्योर फॉर दैट, बिकॉज यू हैव सच पॉजिटिव वाइब्स, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है आप में जो हर किसी को, जो भी आपके संपर्क में आता है उसको प्रेरित ही करता है, मोटिवेट ही करता है. अच्छा, आपकी इस जब भी हम आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो आपकी सेवा काल के दौरान ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा जिसने आपको बहुत इमोशनल किया हो और मोटिवेट किया हो?
0: इमोशनल किया हो
1: जी,
0: ऐसे तो काफी इंसिडेंट हुए हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूंगी कि कुछ चीजें, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, जो स्टार्ट किए हैं बहुत ज्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके, और फिर कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अलग अलग उसके रीजंस हैं. कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट सर्विस है, आपका बजट होता है, काफी सारी चीजें होती है, तो किसी भी रीजन के वजह से शायद वो आगे ना बढ़े, तो तब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपने मतलब मेरे नजरिए से मैंने उसमें अपनी लाइफ झोंक दी थी, लेकिन अगर उसका जो आउटकम मैंने एक्सपेक्ट किया था वो अगर नहीं मिला तो बुरा तो लगता है
1: जी.
0: लेकिन ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड वही सेटबैक्स है जिसको आपको पीछे छोड़ देना है और आगे बढ़ते चले जाना है.
1: इसी बात पर हम एक गाना सुनते हैं जो मोटिवेट भी करता है और इमोशनल भी कर देता है. केसरी फिल्म का गाना जो आपको बेहद पसंद है, संदेश टू सोल्जर्स में आज आप हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी के साथ.

0: संदेश टू सोल्जर्स सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ, और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी, जिनकी बातें न केवल मोटिवेट करती हैं बल्कि सुनकर ऐसा लग रहा है, ऐसा जज्बा पैदा हो रहा है कि आज ही एयरफोर्स ज्वाइन कर ली जाए। तो मेरे मन में जब ये विचार आ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि जितने युवा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनके मन में किस तरह के विचार आ रहे होंगे। तो मैं अब आपसे यही पूछना चाहती हूँ प्रतीक्षा जी कि अगर युवा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, पहली बात, और दूसरा एफकैट और सीडीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपकी क्या सजेशन है युवाओं के लिए।
1: जी विनीता जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम, ये मंच उसी के लिए है ताकि हम जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो फौज ज्वाइन करना चाह रहे हैं हम उनको अच्छा संदेश दें ताकि वो ज्वाइन कर सके। सो तैयारी के हिसाब से देखिए, मैं एक चीज शुरुआत में कहना चाहूंगी कि अगर आपका लक्ष्य नौकरी है तो डिफेंस फोर्सेस आपके लिए सही जगह नहीं है, लेकिन अगर आपका सपना देश सेवा है हाँ, तो इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है।
0: ओके, आई गॉट दैट।
1: सो तैयारी के हिसाब से पहले तो पक्का आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, पढ़ाई में मन लगाइए, क्योंकि आपने ये चीजें सुनी होंगी कि फौज में पढ़ाई नहीं है, जबकि मैं बताना चाहूंगी फौज में बहुत ज्यादा पढ़ाई है, और जो सीनियर ऑफिसर्स भी हैं जो जनरल ब्रिगेडियर बन जाते हैं वो भी पढ़ाई करते रहते हैं। तो पढ़ाई का कोई पीछा नहीं छूटता है अगर आपने फौज ज्वाइन कर लिया, तो ये एक दिमाग में जरूर रखिए कि पढ़ाई तो रहेगी रहेगी। तो आप पहले से खुद को प्रिपेयर कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अच्छे से आप अपना ट्वेल्थ पास कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ग्रेजुएशन में भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आजकल जो अलग अलग तरीके के एग्जाम्स हैं, एफकैट है, जैसे एयरफोर्स के लिए एफकैट है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, और तो इसमें इनिशियली आपके जो ग्रेजुएशन है उसके बेसिस पे एग्जाम होता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं या इंजीनियरिंग ब्रांच में आप आना चाहते हैं एयरफोर्स में, सो आपके इंजीनियरिंग का जो बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे आपको सवाल पूछे जाते हैं, प्लस थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान होता है उसके बारे में भी आपने थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप डिफेंस फोर्सेस में जा रहे हैं एंड उसके रिलेटेड

0: रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पेपर होता है, एक एग्जाम होता है. तो ऑल इन ऑल पूरी तरीके से आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, उससे आपका कोई निजात नहीं है. उसके अलावा एक आपको मेंटल टफनेस आपको खुद में करना पड़ेगा, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी. क्योंकि अगर आप मेंटली टफ हैं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि इमोशनल लोगों की जगह नहीं है, नहीं, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं. आप इमोशनल हो सकते हैं लेकिन आपको मेंटली टफ रहना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप मेंटली टफ है तभी आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे जो मोस्टली फिजिकल होती है. जो इनिशियल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वो ज्यादातर फिजिकल और कम पढ़ाई, और उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तब उसमें ज्यादा पढ़ाई होती है. लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपकी कभी नहीं रुकती. मेरे लास्ट डे तक भी, जहां मैंने 14 साल कंप्लीट किए एयरफोर्स में, आखिरी दिन तक फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी. पीटी, परेड, रनिंग, जिससे मैं बहुत डरती थी, वो मैंने आखिरी दम तक किया है एयरफोर्स के, और अभी भी करती हूँ, और इसीलिए फिजिकली फिट रहती हूँ. तो ये कुछ प्रिपरेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है. लेकिन आपको अगेन डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपकी लाइफ में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा. आपको खुद को कमिट करना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे करना है. अगर आपने वो सपना देखा है तो आप वो सपना जिएंगे. क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते.
1: कलाम साहब ने ये बात कही
0: जी,
1: बहुत सुंदर. और ये जो आपने एक संदेश दिया है सभी युवाओं को, मुझे लगता है कि हालांकि अभी बहुत कुछ मुझे आपसे बात करनी है, जानना है, लेकिन एक ये छोटा सा गाना मैं जरूर चलाना चाहूंगी आपकी इस बात पर
0: जी.
1: कि जब आप कह रहे हैं कि मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है, एंड वाइस वर्सा, तो ये एक गीत सभी युवाओं के लिए प्रतीक्षा जी की तरफ से.

0: संदेश टू सोल्जर्स का लास्ट सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए, आपका यहां पर होना प्रतीक्षा जी। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे आज हमसे संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रही हैं। बहुत कुछ सजेशन उन्होंने दी, बहुत कुछ मोटिवेशन दिया, लेकिन एक बात जाने बगैर भला हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं। आप स्वयं एक महिला हैं और महिला होने के नाते आपने विशेष प्रयास किए हैं अपनी जगह बनाने के लिए। तो सेना में करियर बनाने के लिए युवतियों के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं को तो सभी संदेश देते हैं, बट विशेष रूप से युवतियों को आप क्या कहना चाहती हैं?
1: युवतियों को मैं एक चीज जो मेरे जहन में बसी है और जो मैंने भी सीखी है, ऐसा नहीं है कि मैं सीख के आई थी, लेकिन मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी। नहीं।

0: जो मेरे जहन में बसी है और जो मैंने भी सीखी है, ऐसा नहीं है कि मैं सीख के आई थी, लेकिन मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए, ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी, नहीं, आप सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। आप अभी देखिए, हर दुनिया में हर फील्ड में लड़की है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पे लड़की नहीं है, नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वैसे ही मिलिट्री में भी, डिफेंस फोर्सेस में भी सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आप में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि हाँ ये मैं करूंगी। देखिए, फेलियर्स तो आएंगे, वो
1: बिल्कुल
0: सबके लाइफ में आते हैं, वो जेंडर देख के नहीं आते हैं। सो फेलियर आते हैं, फेस इट, गिरिए, उठिए, कपड़े झाड़िए और चलते बनिए।
1: मुझे आपकी ये वाली बात तो बहुत ही पसंद आई है कि अगर कभी ऐसा कुछ होता भी है, गिर भी पड़ते हैं तो भी रुकना नहीं है, कपड़े झाड़िए और आगे चलिए। तो सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को जो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हैं, इस बात से डेफिनेटली प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, आप अब क्योंकि रिटायर हो चुकी हैं, क्या आपके लाइफ में रिटायरमेंट के बाद कोई चेंजेस आए हैं क्या?
0: जी, सबसे बड़ा चेंज तो वो है जो सुबह उठते से ही जो मैं यूनिफॉर्म पहनती थी, वो एक बहुत बड़ा चेंज है और वो मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि रोज वो यूनिफॉर्म पहन के यूनिट जाते हैं, तो वो एक चीज मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। उसके अलावा देखिए, वर्क वाइज तो अभी भी मैं वर्किंग हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है आर्म फोर्सेस से, जितना मैं वहां अप्लाई कर सकती हूँ करती हूँ, तो कमिटमेंट में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन एक जो ऑरा होता है, और आजकल की जो जेंजी लैंग्वेज में कहते हैं वाइब, वो थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगती है, क्योंकि बाहर कॉरपोरेट में काफी लोग अकेले अकेले से काम करते हैं, जबकि डिफेंस फोर्सेस में इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। सो आई जेन्युइनली मिस दैट टीम वर्क एंड द वाइब ऑफ डिफेंस फोर्सेस।
1: ओह स्वीट, ये जो वाइब आपने बताई है ना, मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में जब सब मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं तो अपने आप वो काम भी बहुत अच्छा होता है, और एक वाइब तो पॉजिटिविटी की रहती ही है। अच्छा, महिला अधिकारियों के लिए इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या ऐसे अवसर हैं कि वो भी आपकी तरह अपने आप को एक प्राउड ऑफिसर कह सकते हैं?
0: पहली बात होगी, किसी चीज के लिए मना मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप अनकंफर्टेबल हो किसी चीज कोई काम करने के लिए और तब भी आप हाँ बोल रहे हैं, नहीं, लेकिन आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटी को भापे,
1: जी
0: और किसी भी चीज के लिए मना मत कीजिए, किसी भी चीज से डरिए मत कि ये होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलिए आप काम करिए, और आप में वो कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। तो वही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो बाधाएं होती है, जो जो हम बाउंड्रीज बनाते हैं, वो हमारे दिमाग में होती है, बाहर कोई नहीं बना रहा हमारे लिए वो बाउंड्रीज, हम खुद ही बनाते हैं। तो अगर आपने वो बाउंड्रीज पार कर ली, आपने वो जो लक्ष्मण रेखा आपने पार कर ली, तो वर्ल्ड इज ऑन योर फिंगर टिप्स, आप दुनिया, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकती हैं। वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत छोड़िए अपना।
1: तो आपको ये लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी, स्पेशली जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, वो अगर कॉन्फिडेंस का गहना पहन ले तो उन्हें फिर किसी और गहने की जरूरत नहीं पड़ेगी?
0: बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल वही गहना पहनना है हमने, और कोई पहने ना पहने, लेकिन कॉन्फिडेंस का गहना हमेशा होना चाहिए हमारे पास।
1: थैंक यू सो मच प्रतीक्षा ठाकरे जी, आज आप संदेश टू सोल्जर्स में आई हैं और आपने अपने इतने खूबसूरत अनुभव और उससे भी बढ़कर प्रेरक विचार हम सबके साथ बांटे हैं। मुझे लगता है कि डिफेंस फोर्सेस का इससे खूबसूरत उपहार हमारे श्रोताओं के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तो समय निकालने के लिए आपका आभार, अपनी पॉजिटिविटी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका आभार, और चलते चलते एक सल्यूट तो आपके लिए बनता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सभी को प्रेरित करने के लिए। आई होप आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा आज यहाँ।
0: धन्यवाद विनीता जी, यहाँ पहली बात तो मुझे बुलाने के लिए और ये बातचीत करने के लिए, और आखिरी में बस एक लाइन कहूंगी कि देश सेवा सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, ये एक ऑनर है, और जो ये ऑनर पा लेता है वो जिंदगी में कभी

0: नहीं हारता। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। और दोस्तों सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स, हम सभी दिल से सलाम करते हैं अपने सोल्जर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से प्रतीक्षा ठाकरे जी का, धन्यवाद। जय हिंद,
0: जय हिंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इस बैठक का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबुधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित होगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल है। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू LPG आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और LPG प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल वाले दो जहाज 90,000 मीट्रिक टन से अधिक LPG के साथ कल रात हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी

0: सिंह ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि धान का समर्थन मूल्य 2,369 रुपये से बढ़ाकर 2,441 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने विभागों को 50% सरकारी कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। आज गंगटोक में सरकारी खर्च में कटौती के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए एक वर्ष तथा विदेश यात्रा न करने और शनिवार तथा रविवार को कार्य दिवस के रूप में बनाए रखने का भी निर्देश दिया। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी ने पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 5:05 हुए हैं। अब हमारे युवा मित्र अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपकी प्यारी सी दोस्त भवानी।
1: और मैं हूँ शारदा।
0: बिल्कुल शारदा, आज का मौसम कितना प्यारा हो रखा है अभी, है ना?
1: हाँ, बहुत।
0: वैसे तुम्हें पता है, आज सुबह मैं बाजार गई थी, वहाँ एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुकी थी। चाय बनाने वाला लड़का मुश्किल से 20-22 साल का होगा, लेकिन जिस आत्मविश्वास से वो मोबाइल पर ऑनलाइन पेमेंट ले रहा था, ग्राहकों से बातचीत कर रहा था और साथ ही सोशल मीडिया पर अपनी दुकान का जिस तरह वो प्रचार कर रहा था ना, सच कहूँ शारदा, देखकर ऐसा लगा कि हमारा जो आज का जो युवा है वो कितना बदल चुका है।
1: सही कहा भवानी, आज का युवा सिर्फ नौकरी ढूंढना नहीं चाहता बल्कि अपने हुनर से नई पहचान बनाना चाहता है, और यही तो है कौशल विकास का असली मतलब, अपनी क्षमता को पहचानना और उसे सही दिशा देना।
0: क्योंकि सिर्फ दोस्तों डिग्री होना काफ़ी नहीं होता, आज समय है हुनर सीखने का, नई तकनीक समझने का और खुद को हर परिस्थिति के लिए तैयार करने का।
1: दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता है। हमारे देश की बड़ी आबादी युवाओं की है। अगर इन युवाओं को सही दिशा, सही शिक्षा और सही कौशल मिले तो देश की तस्वीर बदल सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा। आज कंपनियां सिर्फ किताबें जो होती है उनका ज्ञान नहीं देखती दोस्तों, बल्कि ये देखती है कि व्यक्ति में काम करने की क्षमता कितनी है, संवाद कौशल कितना है, तकनीकी समझ कितनी है और टीम के साथ काम करने का व्यवहार कैसा है।
1: बिल्कुल सही, यानी अब सफलता का रास्ता सिर्फ कॉलेज की डिग्री से नहीं बल्कि कौशल से होकर गुजरता है।
0: और कौशल सिर्फ कंप्यूटर या मशीन चलाना नहीं बल्कि अच्छी बातचीत करना, अच्छी आदतें सीखना, समय का सही उपयोग करना, निर्णय लेना, नई चीज़ें सीखना, ये सब भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
1: बिल्कुल, आज का युवा पहले से कहीं ज़्यादा जागरूक है। वो नए नए क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहता है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, फोटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग और भी बहुत कुछ।
0: बिल्कुल, ये बात तो तुमने एकदम सही कही। और अच्छी बात तो ये है शारदा कि अब गांव में भी युवा आगे बढ़ रहे हैं, कई युवा छोटे छोटे प्रशिक्षण लेकर अपना काम शुरू कर रहे हैं।
1: हाँ, पहले लोग सोचते थे कि सफलता सिर्फ सरकारी नौकरी में है, लेकिन अब युवा स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि आत्मनिर्भर बनने का कॉन्फिडेंस अब युवाओं में साफ दिखाई देता है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है भवानी, कि आखिर कौशल विकास इतना जरूरी है क्या?
0: ये बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा तुमने दोस्तों। आज जो समय है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है, नई तकनीकें आ रही हैं, काम करने के तरीके बदल रहे हैं। ऐसे में अगर युवा खुद को अपडेट नहीं करेगा

0: शायद वो पीछे रह जाएगा।
1: बिल्कुल, आज हर फील्ड में कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में वही आगे बढ़ेगा जिसके पास सीखने की इच्छा और काम करने का हुनर होगा। और कौशल विकास युवाओं को सिर्फ रोजगार ही नहीं देता बल्कि आत्मविश्वास भी देता है।
0: बिल्कुल शारदा, जब कोई युवा अपने हुनर से कमाई करता है ना, तो उसके अंदर एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और उसे लगता है कि वह समाज और परिवार के लिए कुछ कर सकता है।
1: और तो और भवानी, तुम्हें पता है सरकार भी युवाओं के कौशल विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है।
0: अरे वाह।
1: जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जहां युवाओं को अलग अलग क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन कोर्स, आईटीआई संस्थान और स्टार्टअप योजनाएं, ये सभी युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर दे रही हैं।
0: और साथ ही शारदा, तुम्हें पता है आज इंटरनेट ने सीखने के रास्ते भी आसान कर दिए हैं। अब युवा घर बैठे नई चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन शारदा, हर चीज़ के साथ चुनौतियां भी आती हैं और
1: है।
0: कई बार युवा दिशा की कमी, सही मार्गदर्शन ना मिलना, आत्मविश्वास की कमी होना, इस चीज़ों से वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं। और जब उन्हें सफलता नहीं मिलती या उनको अपना परिणाम नहीं मिलता तो वो निराश हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर बड़ी सफलता के पीछे मेहनत, धैर्य और लगातार सीखने की आदत होती है, और असफलता वो तो सीखने की सबसे बड़ा माध्यम है।
0: बिल्कुल, अगर कोई युवा ये सोच रहा है कि उसके पास संसाधन कम है, तो उसे यह समझना चाहिए कि सबसे बड़ा संसाधन उसकी मेहनत है और उसका हुनर है। सपने वहीं पूरे होते हैं जिसके लिए मेहनत की जाए, और कौशल विकास वही रास्ता है जो सपनों को हकीकत में बदल देता है।
1: दोस्तों, हर इंसान में कई ना कई खूबी ज़रूर होती है, ज़रूरत है तो सिर्फ उसे पहचानने की और निखारने की। तो
0: तो
1: दोस्तों,
0: दोस्तों
1: रुकना नहीं,
0: बस मेहनत करते रहे।
1: बिल्कुल।

0: दोस्तों वक्त हो चला है हमारे एक खास सेगमेंट का, यानी कि क्विज सेगमेंट का, जिसमें हम आज फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए दो रोचक सवाल। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है,
1: हाल ही में भारत में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट 2026 किस शहर में हुआ था?
0: और आज का दूसरा सवाल है, G20 समिट 2025 की मेज़बानी किस देश ने की थी। मैं अपना प्रश्न फिर से दोहराती हूँ, G20 समिट 2025 की मेज़बानी किस देश ने की थी।
1: तो दोस्तों इन सवालों के जो उत्तर हैं वो आपको कार्यक्रम के अंत में मिल जाएंगे।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी।

0: 90 साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी जिसने संगीत नाटक कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

0: होता है।
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।
2: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
1: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: तो दोस्तों, अब हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारे स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा है, लेकिन अक्सर लोग इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते, और वो है ब्लड ग्रुप।
1: अरे शारदा, ब्लड ग्रुप का नाम सुनते ही तुम्हें पता है मुझे एक किस्सा याद आ गया। अगर
0: क्या?
1: कहो तो सुनाओ।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: कुछ दिन पहले नहीं, मेरे कोई परिचित थे, अचानक से उनको अस्पताल जाना पड़ा। डॉक्टर ने तुरंत खून की ज़रूरत बताई। तब सबसे पहले डॉक्टर ने यही सवाल पूछा उनसे कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है।

0: और मजे की बात ये थी कि उनको अपना ब्लड ग्रुप ही नहीं पता था।
1: ये बात तो है भवानी कि लोग अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड और जाने कितनी बातें याद रखते हैं, लेकिन अपने शरीर से जुड़ी इतनी ज़रूरी जानकारी भूल जाते हैं। इसीलिए आज हम इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और यह जानना क्यों ज़रूरी है।
0: तो दोस्तों, सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ब्लड ग्रुप होता क्या है।
1: तो दोस्तों, हमारे शरीर में जो खून बनता है उसमें लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं की सतह पर कुछ विशेष प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जिनके आधार पर ब्लड ग्रुप तय होता है।
0: यानी हर व्यक्ति का खून जो होता है वो एक जैसा नहीं होता, सबका अलग होता है।
1: बिल्कुल, मुख्य रूप से ब्लड ग्रुप चार प्रकार के होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ।
0: और इनके साथ ही पॉजिटिव और नेगेटिव भी जुड़ा होता है दोस्तों, जैसे ए पॉजिटिव, ओ नेगेटिव वगैरह। इसे आरएच फैक्टर कहा जाता है। अगर खून में आरएच तत्व मौजूद होते हैं, इसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है, और अगर खून में आरएच तत्व नहीं पाए जाते, इसका मतलब आपका जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है। और शारदा, वैसे तुमसे एक सवाल पूछना था कि जो ओ नेगेटिव होता है, ये बहुत खास क्यों होता है?
1: क्योंकि भवानी, ओ नेगेटिव ब्लड को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है, यानी आपातकालीन स्थिति में यह कई लोगों को दिया जा सकता है।
0: अच्छा, और जैसे ए बी पॉजिटिव होता है, उसे
1: यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है, क्योंकि वह लगभग सभी ब्लड ग्रुप को खून ले सकता है।
0: अरे वाह, यानी हर ब्लड ग्रुप की अपनी अपनी खासियत है, क्यों?
1: बिल्कुल हाँ दोस्तों, अपना ब्लड ग्रुप जानना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि दुर्घटना, ऑपरेशन या किसी गंभीर बीमारी के समय तुरंत सही ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ सकती है।
0: बिल्कुल, और अगर ब्लड ग्रुप जो है अगर गलत चढ़ा दिया जाए तो दोस्तों ये खतरा भी बन सकता है। इसलिए डॉक्टर हमेशा ब्लड ग्रुप चढ़ाने से पहले जांच करते हैं। क्या ब्लड वैसे शारदा, क्या जो ब्लड ग्रुप होता है वो माता पिता से भी जुड़ा होता है?
1: हाँ, ब्लड ग्रुप आनुवंशिक होता है, यानी ये माता पिता से बच्चों में आता है।
0: बिल्कुल, और कुछ शोधों में ये भी बताया गया है दोस्तों कि अलग अलग ब्लड ग्रुप वाले लोगों की कुछ शारीरिक विशेषताएं अलग अलग होती हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर ब्लड ग्रुप अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट है।
1: अगर हम अपना ब्लड ग्रुप जान लें और समय पर रक्तदान करें तो कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है, क्योंकि इंसानियत का सबसे सुंदर रूप वही है जब हम किसी की मदद करें, और रक्तदान ऐसी मदद है जो सीधे किसी को नया जीवन दे सकती है।
0: बिल्कुल दोस्तों, हम सबको ये बात ज़रूर समझनी चाहिए, क्योंकि हम सबको अपने आप से बहुत प्यार करना चाहिए, और ये इतनी सी बात आपको समझ आ जानी चाहिए।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: खूबसूरती यही है कि यहाँ हर चीज अपने भीतर कोई ना कोई कहानी समेटे होती है, चाहे वो नदियाँ हो, पहाड़ हो या हमारी धरती हो।
7: बिल्कुल शारदा, और कई बार ऐसे शब्द भी सुनने को मिलते हैं जिसका संबंध सीधे हमारी प्रकृति और खेती से होता है, लेकिन हम उनके बारे में ज्यादा जान नहीं पाते।
6: सही कहा दोस्तों, आपने अक्सर भांगर और खादर जैसे शब्द सुन रखे होंगे।

0: खासकर ज्योग्राफी या खेती से जुड़ी बातों में। लेकिन आखिर ये होते क्या हैं? सबसे पहले अगर इजी लैंग्वेज में समझें तो भांगर और खादर दोनों ही मिट्टी का प्रकार होते हैं जो नदियों द्वारा लाई गई एलुवियल सॉइल यानी जलौद मिट्टी से बनते हैं।
1: लेकिन दोनों में फ़र्क है दोस्तों। भांगर पुरानी एलुवियल सॉइल होती है जबकि जो खादर होती है वो नई एलुवियल सॉइल कहलाती है।
0: दोस्तों भांगर मिट्टी ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है जहां बाढ़ का पानी आसानी से नहीं पहुंचता। यह मिट्टी काफ़ी पुरानी होती है और इसमें कंकड़ जैसी चीज़ें भी पाई जाती हैं।
1: वहीं खादर मिट्टी नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। हर साल बाढ़ आने पर नदियां नई उपजाऊ मिट्टी वहां जमा कर देती हैं, इसलिए इसे नई एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है।
0: और यही वजह है कि खादर मिट्टी खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है।
1: खासकर गेहूं, धान और गन्ने जैसी फसलों के लिए ये मिट्टी बहुत फायदेमंद है दोस्तों।
0: बिल्कुल। जबकि दोस्तों भांगर मिट्टी खेती के काम तो आती है लेकिन खादर की तुलना में उसकी उपजाऊ शक्ति थोड़ा कम होती है।
1: कितना इंटरेस्टिंग है ना, एक ही नदी अपने साथ दो तरह की मिट्टियाँ लेकर आती है और दोनों का अपना अलग अलग महत्व है।
0: सच में प्रकृति का हर हिस्सा अपने भीतर साइंस और जीवन दोनों को समेटे हुए है।
1: और यही छोटी छोटी जानकारियाँ हमें अपने इन्वायरमेंट और खेती को बेहतर बनाने और समझने में मदद करती हैं। दोस्तों हमारी जो धरती है वो जितनी समृद्ध है उतनी ही खूबसूरत है। उसकी जो जानकारी होती है, उसकी जो मिट्टी जो होती है, अगर हम मिट्टी की जानकारी ले, उसकी प्रकृति की हमारी सुंदरता की जानकारी ले, तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। और इसी प्रकृति की सुंदरता को महसूस करने के लिए अब वक्त हो गया है एक प्यारे से गाने का।

नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: दोस्तों, गर्मियों का मौसम आते ही तेज़ धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशानी को और भी बढ़ा देती है। कई बार ज़्यादा गर्मी हमारी सेहत पर भी बहुत ही बुरा असर डालती है।
1: बिल्कुल शारदा, खासकर दोपहर के समय में जब तापमान बहुत बढ़ जाता है तब शरीर जल्दी थकने लगता है, और अगर सावधानी ना रखी जाए तो तापमान यानी हीट स्ट्रोक जो होती है जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
0: तापघात शब्द होता है, मतलब बहुत ही सुन के ऐसा डर सा लगता है। ये तब होता है दोस्तों जब शरीर का तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और शरीर खुद को सामान्य रखने में मुश्किल महसूस करने लगता है।
1: इसके कारण चक्कर आना, तेज सिर दर्द, कमजोरी, घबराहट, अचानक तबीयत खराब हो जाना जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
0: और दोस्तों, इसीलिए गर्मियों में कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है।
1: जैसे घर से बाहर ना निकलें, और अगर आप घर से बाहर निकल भी रहे हैं कोई काम करने के लिए तो पानी ज़रूर साथ में लेकर जाएं। थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें, भले ही प्यास ना लगे लेकिन पानी साथ में लेकर ज़रूर जाएं।
0: कोशिश करें कि दोपहर की तेज़ धूप में ज़्यादा देर तक बाहर ना रहें, खासकर 12 बजे से 3 बजे के बीच।
1: बिल्कुल, हल्के रंग के और ढीले कपड़े पहनना भी शरीर को गर्मी से बचाने में मदद करता है।
0: और अगर बाहर जाना ज़रूरी हो तो सिर को टोपी, दुपट्टे या छाते से ढक कर रखें।
1: बिल्कुल, साथ ही ज़्यादा तला भुना खाना जो होता है वो बिल्कुल भी ना खाएं। इसके बजाय आप हल्का भोजन ले सकते हैं और ज़्यादा लिक्विड जो होते हैं जो हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं वो पिए।
0: जैसे कि तरबूजा हो गया या फिर सब्जा सीड्स हो गए, उनका जो है आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति को तेज़ चक्कर आए या फिर बहुत कमज़ोरी महसूस हो या शरीर का तापमान अचानक बढ़ जाए तो उसे तुरंत छांव या ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए।
1: बिल्कुल, थोड़ी सी सावधानी हमें बड़ी परेशानी से बचा सकती है।
0: गर्मी के इस मौसम में खुद का और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है।
1: और अब इस गर्म मौसम में मन को थोड़ा कूल और फ्रेश फील करवाने के लिए सुनते हैं अब एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, आज का दौर आइडियाज़ और इनोवेशन का दौर है। अब युवा सिर्फ नौकरी पाने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि कुछ नया करने, कुछ अलग बनाने और अपने सपनों को खुद आकार देने का भी सोच रखते हैं।
1: बिल्कुल शारदा, आज का युवा सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ढूंढता, बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, और यही सोच देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है।
0: दोस्तों, पहले अक्सर लोग कहते थे कि अच्छी पढ़ाई कर लो, फिर एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और जीवन सेट हो जाएगा। लेकिन अब समय बदल रहा है। आज कई युवा अपना खुद का बिजनेस शुरू करने और अपने आइडियाज़ को रियलिटी में बदलने का सपना देख रहे हैं।
1: बिल्कुल, और इसी सोच को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है स्टार्टअप इंडिया पहल, जैसे भारत सरकार द्वारा युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखती है।
0: अगर आसान भाषा में कहें तो स्टार्टअप का मतलब होता है किसी नए आइडिया या नई सोच के साथ शुरू किया गया बिजनेस, जो लोगों की किसी समस्या का समाधान देने की कोशिश करे।
1: बिल्कुल, जैसे ऑनलाइन लर्निंग ऐप, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, फूड डिलीवरी सर्विस, ये सब जो चीज़ें हैं, ये नए तकनीकी आइडियाज़ हैं। ये सब कभी छोटे छोटे स्टार्टअप आइडिया से ही शुरू हुए हैं।
0: स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य यह है कि युवाओं को अपने आइडियाज़ पर काम करने के लिए सही गाइडेंस और सपोर्ट मिल सके।
1: बिल्कुल, इसके तहत नए एंटरप्रेन्योर

0: को आसान रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अवेयरनेस प्रोग्राम और कई तरह की सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े।
1: और सबसे अच्छी बात यह है कि अब सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि छोटे शहरों और गाँव के युवाओं में भी अपने इनोशिएटिव आइडियाज़ के साथ सामने आ रहे हैं।
0: बिल्कुल, और कई युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने छोटी शुरुआत करके आज बड़ी सफलता हासिल की है। ये दिखता है कि अगर आत्मविश्वास और मेहनत साथ हो तो सपनों को सच किया जा सकता है।
1: तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई नया आइडिया है तो उसे छोटा समझकर कभी नज़रअंदाज मत कीजिए,
0: क्योंकि हर बड़ा बदलाव कभी ना कभी एक छोटा विचार से ही शुरू होता है।

0: तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है जो क्वेश्चंस हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे थे उनका आंसर देने का। तो हमारा जो पहला सवाल था वो था कि हाल ही में भारत में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट 2026 किस शहर में हुआ था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, न्यू दिल्ली।
1: और दोस्तों, आज का दूसरा सवाल था, G20 समिट 2025 की मेज़बानी किस देश ने की थी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है साउथ अफ्रीका।
0: साथ ही दोस्तों, अब हमारा वक्त हो गया है रोज़गार सूचना देने का। तो आज हम लेकर आए हैं युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण रोज़गार सूचना। केंद्रीय रिजर्व

0: पुलिस बल यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स द्वारा वर्ष 2026 के लिए कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जो देश सेवा के साथ एक सम्मानजनक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं।
1: तो दोस्तों, इस भर्ती अभियान के तहत लगभग 9,195 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मई 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक स्टूडेंट्स अंतिम तिथि से पहले आवेदन अवश्य करें।
0: बिल्कुल, और अगर इसकी

0: 2026 से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मई 2026 निर्धारित की गई है।
1: बिल्कुल
0: इच्छुक स्टूडेंट्स अंतिम तिथि से पहले आवेदन अवश्य करें।
1: बिल्कुल। और अगर इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो 10वीं पास रखी गई है और आयु सीमा 18 से 23 वर्ष। और अधिक आपको जानकारी इसके बारे में चाहिए तो आप इसकी आधिकारिक भर्ती वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट कुछ है
0: RECT.CRPF.GOV.IN। तो
1: दोस्तों अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा लेने का। हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ ऐसे ही मस्ती मजाक और बातचीत के साथ।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। आज युवाओं के साथ थी भवानी छंगाणी और शारदा नैन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। संध्या के 5:55 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं हमारे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

आज रात 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। विज्ञान पत्रिका का प्रसारण आज रात 10 बजे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से किया जाएगा। सुगम संगीत के अंतर्गत चंद गजलें सुनिएगा रात 9:30 पर, और रात 9:15 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं रात 8 बजे और लोक संगीत सुनिएगा रात 8:30 पर। सुगम संगीत का समय है संध्या 7:45।

0: और अब से कुछ ही देर बाद संध्या 6:05 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। ये तो था हमारे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू LPG आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
2: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और LPG प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
1: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार और प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एक जहाज को जब्त कर लिया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य के पास फुजैराह बंदरगाह के करीब इस जहाज पर अनाधिकृत कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद

ग्रामीण श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम ग्रामीण जगत होगा संध्या 7 बजे। कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय है सुरक्षित भविष्य के लिए पर्यावरण संरक्षण। उसके बाद पालतू पशुओं का लू व तापघात से बचाव, इस विषय पर जानकारी देंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इस विषय पर बात होगी और साथ ही अक्षय ऊर्जा के बारे में भी बताएंगे। इन सब के साथ ग्रामीण जगत कार्यक्रम में आप लोकगीत और लोक भजन भी सुन सकते हैं।

न करने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए गांव में एक अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में दो दिन घर से काम करेंगे। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर। संध्या के 6:05 हुए हैं। आइए आप सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं पुरानी फिल्मों से कुछ फिल्मी गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्वर था प्रदीप का और फिल्म का नाम था दो बहनें। और आइए अब सुनते हैं सुरैया को, फिल्म का नाम है क्षमा।

0: उषा मंगेशकर, कंचन को सुना आपने, फिल्म का नाम था रफू चक्कर। कार्यक्रम में अब सुनिए अगला गीत।
1: लेके अंगड़ाई सरे बजन बहुत पछताई, मुफ्त में हो गई बदनाम बढ़ी रुसवाई, आया गुस्सा कभी अपने पे कभी शर्म आई, उठी घबरा के मगर ऐसी कमर बल खाई।

फिल्म का नाम था पाकीज़ा, स्वर था सुमन कल्याणपुर का। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

0: आतंकवाद को लेकर भारत का रुख एकदम कड़ा और स्पष्ट। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ईंधन बचाने के लिए निजी वाहनों का उपयोग कम करने और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील की। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के तीसरे चरण की घोषणा की और प्रदेश में अगले 2 दिन में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में मामूली गिरावट की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रुख आतंकवाद के खिलाफ कड़ा और स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वे आज नागौर के मेड़ता में राव दूदा प्रतिमा अनावरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद का साथ देने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखता है। श्री सिंह ने कहा कि देश अब रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। उन्होंने राजस्थान की धरती को वीर भूमि बताते हुए कहा कि देश की रक्षा में यहां के सपूतों का बड़ा योगदान है।
1: राजस्थान के युवाओं को तो वैसे भी सेना से बहुत गहरा रिश्ता है। जब भी मैं कहीं जाता हूं सेवाओं के ऊपर, कोई ना कोई राजस्थान का ऐसा बहादुर नौजवान अथवा अधिकारी कोई हमको मिल जाता है। यहां के घर घर से फौजी निकलते हैं। आज भी हमारी सेनाओं में शामिल होकर नागौर के युवा पूरी निष्ठा के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। सरकार भी योजनाओं के मामले में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपनी सुरक्षा नीति में ऐतिहासिक बदलाव किया।
0: समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार महापुरुषों की याद में पैनोरमा बनवाकर नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार युवा, महिला, गरीब और किसानों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है।
2: कहते हैं कि हमारे 4 जातियां हैं, किसान, मजदूर, युवा, महिला। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे प्रदेश का उत्थान होगा। इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रदेश के हजारों किसान और पशुपालक उसमें भाग लेंगे। कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, तकनीकी जानकार, कृषि पंजीकरण उद्योगपति सभी उसमें आने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हर किसान का भला हो, हमारी माता बहनें भी आगे बढ़ें। इसके लिए लगातार हमारी सरकार नवाचार करते हुए हम काम कर रहे हैं। हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, उनका आपको लाभ लेना है, क्योंकि बहुत सारी योजना हमारी केंद्र और राज्य सरकार की है, उनका लाभ जन जन तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हम काम करते हैं।
0: इसके बाद रक्षा मंत्री ने जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण किया। रातानाड़ा सर्किल पर हुए इस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने पूर्व उपराष्ट्रपति श्री शेखावत को भारतीय लोकतंत्र का चलता फिरता विश्वविद्यालय बताते हुए कहा कि उनका जीवन जनसेवा और सादगी का अद्वितीय उदाहरण है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ईंधन बचाने की कवायद करते हुए अपने आधिकारिक काफिले में वाहनों की संख्या घटाने का फैसला किया है। राज्यपाल ने आज इस पर अमल करते हुए जयपुर में एयरपोर्ट जाते समय पायलट कार, एम्बुलेंस और दमकल जैसे वाहनों का उपयोग नहीं किया। श्री बागड़े ने आम जनता से भी अपील की है कि वे निजी वाहनों का कम उपयोग करें और सार्वजनिक परिवहन को

0: प्राथमिकता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा संरक्षण की अपील के बाद राज्य में ईंधन बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में कल अलवर जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव वर्चुअली जुड़ेंगे। वे भिवाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शुभारंभ करेंगे। साथ ही सरे खुर्द पाइपलाइन और टपूकड़ा के सरकारी स्कूल में नए शैक्षणिक ब्लॉक का भी उद्घाटन किया जाएगा। उधर प्रशासन स्तर पर भी ईंधन बचाने को लेकर व्यापक जागरूकता देखी जा रही है। इसी कड़ी में पाली में जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी और पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन आज पैदल चलकर कार्यालय पहुंचे। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज गुजरात के सासन गिर में लायन स्पीशीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह आयोजन अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन की तैयारियों के तहत किया गया। श्री यादव ने बताया कि आगामी 1 और 2 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पहला IBCA सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें 95 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुए, चीता और जगुआर जैसी 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण करना है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज बीकानेर के सुजान देसर में 40 सरकारी विद्यालयों को स्मार्ट बोर्ड और फर्नीचर वितरित किए। हुडको की ओर से 125 करोड़ रुपए की लागत से उपलब्ध कराए गए इन संसाधनों से 15,000 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। श्री मेघवाल ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित नए कमरों और लाइब्रेरी का भी लोकार्पण किया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के हर घर तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। श्री चौधरी ने आज भीलवाड़ा के मांडल में विभिन्न पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि पीने के पानी की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए व्यापक स्तर पर काम किए जा रहे हैं। श्री चौधरी ने अधिकारियों को भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में टैंकरों से नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है। इसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। ये मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका पूरा उद्देश्य पूरे देश में अपडेटेड और सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करना है। प्रदेश भर में जनगणना 2027 के तहत डिजिटल स्वगणना का काम तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में पाली जिले का तीखी गांव शत प्रतिशत स्वगणना पूरा करने वाला पहला गांव बन गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर बजरंग सिंह ने बताया कि ग्रामीणों ने मोबाइल के माध्यम से स्वयं अपना पंजीकरण कर इस प्रक्रिया को पूरा किया है। इस गाँव की ये उपलब्धि अन्य गाँवों के लिए मिसाल बन रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने पिछले 2 दशक में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने आज गाजियाबाद में NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में आपदा के समय लोग NDRF की मौजूदगी से सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सशस्त्र बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिलना गर्व की बात है।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात है। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA

0: और एनडीआरएफ ने किया है।
1: और अब मौसम। प्रदेश में अगले दो दिन में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में मामूली गिरावट आने की संभावना है। इस दौरान आज और कल बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के साथ साथ शेखावाटी अंचल में तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं हल्की बरसात की संभावना है। 17 मई से एक बार फिर पश्चिमी राजस्थान में तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में भी अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इस बीच 24 घंटों में प्रदेश में मौसम के कई रंग देखने को मिले, जहां राज्य के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन और आंधी के साथ बारिश हुई, वहीं अधिकांश स्थानों पर तेज गर्मी और लू का दौर चला। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे अधिक तापमान फलोदी में रहा, जहां पारा 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राज्य के ज्यादातर स्थानों पर दिन का पारा 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर जिले के जैतसर में आज करीब 50 बच्चे दूषित भोजन खाने से बीमार हो गए। निजी स्कूल के ये बच्चे पिकनिक मनाने वाटर पार्क गए थे, जहां खाना खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। सभी बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुखपाल बराड़ ने बताया कि बच्चों का इलाज जारी है और स्थिति नियंत्रण में है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE 1 जून से 12 जून तक आयोजित किया जाएगा। राज्य के 11 शहरों के 32 केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा के प्रवेश पत्र कल से आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि इस दौरान अग्निवीर, सिपाही, फार्मा और धार्मिक शिक्षक सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए परीक्षा ली जाएगी। अभ्यर्थी भर्ती से जुड़ी सभी जानकारियां विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए नजदीकी सेना भर्ती कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। भरतपुर में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की ओर से आज किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी दी गई। अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉ. विजय सिंह वीर ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिए किसान अपने खेत की मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और जैविक कार्बन जैसे तत्वों की सही स्थिति जान सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को लेकर भारत का रुख एकदम कड़ा और स्पष्ट है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ईंधन बचाने के लिए निजी वाहनों का उपयोग कम करने और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील की। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के तीसरे चरण की घोषणा की और प्रदेश में अगले दो दिन में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में मामूली गिरावट की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बाड़मेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं जसवंत सिंह डूडी। बाड़मेर देश और दुनिया में थार नगरी के नाम से विख्यात है। सरहदी जिले बाड़मेर में इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। जबरदस्त उछाल के साथ जिले में दिन का पारा 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। इस सीजन में 48.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बाड़मेर देश में सबसे गर्म स्थान रहा। जिले में प्रचंड गर्मी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली लू के थपेड़ों के कारण लोग बेहाल हैं। दिन के अलावा रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। पंखे और कूलर बेअसर साबित हो रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते वन्य जीव भी व्याकुल है। अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों को प्रचंड गर्मी के कारण भारी परेशानी हो रही है। गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने सहित कई जतन कर रहे हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंदे लगाए जा रहे हैं। भीषण गर्मी के मद्देनजर जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्यार्थियों के समय में बदलाव किया गया है। स्कूलों में कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों और आंगनबाड़ी केंद्रों के विद्यार्थियों के लिए समय सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। जिले के

0: प्रभारी सचिव डॉक्टर रोहित गुप्ता बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में पीने के पानी, बिजली, एलपीजी आपूर्ति, हीट वेव से बचाव और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम को देखते हुए आमजन को राहत पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सरकारी जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, दवा वितरण व्यवस्था और मरीजों को दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया। प्रभारी सचिव ने ग्राम पंचायत रामसर का कुआं में विकास कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे कामों का जायजा लिया। श्री गुप्ता ने लाभार्थियों से संवाद करते हुए ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चिन्मयी गोपाल ने पिछले दिनों बाड़मेर की नई जिला कलेक्टर के रूप में पदभार संभाला। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के बाद विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर बाड़मेर में जसदीर तालाब स्थित शिव शक्ति धाम में जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आयोजित मुख्य समारोह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सजीव प्रसारण किया गया। इस बीच विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से देशभक्ति, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई, चौहटन विधायक आदुराम मेघवाल और जिला कलेक्टर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बीते दिनों रेल मंत्रालय की ओर से बाड़मेर को विशेष रेल सेवा की सौगात दी गई। ये रेल सेवा बाड़मेर और हरिद्वार के बीच शुरू की गई है। इसके संचालन से हरिद्वार की धार्मिक यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को सुगम और सुविधाजनक यात्रा का फायदा मिलेगा। ये रेल सप्ताह में दो दिन बाड़मेर से प्रत्येक सोमवार और गुरुवार और हरिद्वार से प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को संचालित होगी। रेल सेवा की सौगात मिलने पर स्थानीय सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने लोगों को बधाई दी। जिले में इन दिनों ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे ग्राम रथ अभियान में आमजन की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में अलग अलग ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित एलईडी ग्राम रथों के साथ कला जत्थे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोकगीतों, नुक्कड़ नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए आमजन को सरल तरीके से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। जिले में पिछले दिनों हाली अमावस परंपरागत रूप से मनाई गई। इस पर्व को लेकर किसानों में खासा उत्साह देखने को मिला। हर साल वैशाख महीने की अमावस्या हाली अमावस के रूप में मनाई जाती है। ये किसानों का मुख्य पर्व है। इस अवसर पर किसानों द्वारा सांकेतिक रूप से खेतों की जुताई करते हुए सुकाल की कामना की गई। इस मौके पर हर घर में बाजरे का खींच और गुड़ की गलवोणी बनाई गई। इस बीच पारंपरिक खेल औंधल घेटों की धूम रही। इसके साथ ही बाड़मेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूं, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो आतंकवाद रा बारा माय भारत रो रुख एकदम साफ अर करडो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ईंधन बचावन सारू जनताओं खुदरी गाड़ियां काम ले उनो कम कर और सार्वजनिक परिवहन न बधावो देवन बाबत कहो। चुनाव आयोग वोटर लिस्टा रा पुनरीक्षण रा काम SIR रा तीजा दौर रो ऐलान कीनो। अर प्रदेश माय आवता दिना पारो थोड़ो उतरन रा आसार। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो है कि आतंकवाद रे खिलाफ भारत रो रुख एकदम साफ है। वे आज नागौर जिला रा मेड़ता माय राव दूदारी मूरत रा अनावरण जलसा माय बोल रहा है। रक्षा मंत्री कहो कि भारत आतंकवाद रा सगान मुंह तोड़ जवाब देवन रो बूतो रखे है। वह कहो कि देश अब सरहद री हिफाजत तू जुड़िया साजो सामान रा मामला माए

0: खुद रे पाण उबो फेरियो है। रक्षा मंत्री राजस्थान री जमीन वीर भूमि बताता था का कहो का देश री हिफाजत रा काम माय 18 सपूतों रो मोटो योगदान है।
1: राजस्थान के युवाओं को तो वैसे भी सेना से बहुत गहरा रिश्ता है। जब भी मैं कहीं जाता हूं सेवाओं के ऊपर, कोई न कोई राजस्थान का ऐसा बहादुर नौजवान अथवा अधिकारी कोई हमको मिल जाता है। यहाँ के घर घर से फौजी निकलते हैं। आज भी हमारी इस सेनाओं में शामिल होकर नागौर के युवा पूरी निष्ठा के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। सरकार भी योजनाओं के मामले में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपनी सुरक्षा नीति में ऐतिहासिक बदलाव किया।
0: राजनाथ सिंह महिलाओं का मान समाज री तरक्की सारू जरूरी बतायो और मेड़ता माय मीरा महोत्सव सारू केंद्र सरकार री ओर 5 करोड़ रुपया देवन रो ऐलान कीनो। जलसा माय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो कि राज्य सरकार महापुरुषों री याद माय पेनोरमा बनार नवी पीढ़ी ने इतिहास हूँ जोड़ रही है। वह कहो कि सरकार नौजवाना महिलावा गरीबा और किसाना रा भला सारू लगातार काम कर रही है।
2: कहते हैं कि हमारे 4 जातियां हैं, किसान, मजदूर, युवा, महिला। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे प्रदेश का उत्थान होगा। इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रदेश के हजारों किसान और पशुपालक उसमें भाग लेंगे। कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, तकनीकी जानकार, कृषि पंजीकरण उद्योगपति सभी उसमें आने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हर किसान का भला हो, हमारी माता बहनें भी आगे बढ़े। इसके लिए लगातार हमारी सरकार नवाचार करते हुए हम काम कर रहे हैं। हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, उनका आपको लाभ लेना है, क्योंकि बहुत सारी योजना हमारी केंद्र और राज्य सरकार की है, उनका लाभ जन जन तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हम काम करते हैं।
0: इन पाछे रक्षा मंत्री जोधपुर माय पहली वाला उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत री मूर्त रो अनावरण कीनो। रातानाड़ा सर्किल माथे राखी जिया जलसा माय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्माई मौजूद रहा। इ मौके श्री सिंह भैरव सिंह शेखावत ने भारत रा लोकतंत्र रो चाल तो फिर तो विश्वविद्यालय बताता था का कहो के वारी जिंदगी जन सेवा और सादगी री बेहतरीन मिसाल है। इ मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो के भैरव सिंह शेखावत सियासत ने सेवा रो जरियो बनायो। लाडला दिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कान्यू करीची अपील पाछे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ईंधन बचावन रा मकसद वारा आधिकारिक काफिला माय गाड़ियां री तादाद कम करन रा हुकम दीना है। राज्यपाल आज जयपुर हवाई अड्डा ओढ़ी जाती बगत आगे चालन वाली गाड़ी, एम्बुलेंस और दमकल काम नहीं लीनी। श्री बागड़े जनता हुई खुदरी गाड़ियां कम काम लेवन सागे सार्वजनिक परिवहन ने बधावो देवन री अरज कीनी। काल अलवर जिला माय न्यारी न्यारी विकास योजनावां जनता ने सौंपण रे मौके राख्या जावण वाला कार्यक्रम माय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्माई वर्चुअल तरीका जुड़ेला। इन दौरान भिवाड़ी माय इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट री शुरुआत करी जावेला। इसा गई सरे खुर्द पाइप लेन और टपूकड़ा री सरकारी स्कूल माय नुआ शैक्षणिक ब्लॉक रोई उद्घाटन करियो जावेला। ईंधन बचावन रे बारा माय जाग जगावन सारू पाली माय जिला कलेक्टर रविन्द्र गोस्वामी और SP मोनिका सेन आज पैदल चाल और दफ्तर पुग्या। जिला कलेक्टर सप्ताह माय एक दिन पैदल या साइकिलों दफ्तर जावन रो फैसलो कीनो है। नई दिल्ली माय 1 और 2 जून ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत माय पहलो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA सम्मेलन रखियो जावेला। इनरी तैयारियां रा सिलसिला माय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज गुजरात रा शासन गिर माय लायन स्पीशीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम रो उद्घाटन कीनो। इ मौके यादव कहो के IBCA रो मकसद बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा सरीखा बिल्ली प्रजाति रा मोटा जिनावरा ने बचावन माथे विचार करनो है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर जिला रासुजान देसर री 40 सरकारी स्कूला माए स्मार्ट बोर्ड और फर्नीचर दीना। हुडकोरी ओरों करीब 1.25 करोड़ रुपया रा खर्चों मुहैया कराई जा आ साधनाओं करीब 15,000 विद्यार्थियों ने फायदो फैला। श्री मेघवाल स्कूल माय पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का न्यू बनवाई जा नुआ कमरा और लाइब्रेरी रोई उद्घाटन कीनो।

राज्यमाय पड़ रही जोरदार गर्मी बीच जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी अहलकारा ने पानी री परेशानी वाला हलका माय टैंकरा रे जरिए लगातार पानी री पूर्ति तय करावन रा हुकम दीना है। वे आज भीलवाड़ा कने मंडल विधानसभा हलका माय पीवन रा पानी जुड़ी करोड़ा रुपया रा खर्च वाली न्यारी न्यारी परियोजनावां रा काम री नींव रखी और पूरा व्या काम जनता ने सौंपया। ई मौके वे कहो के प्रदेश माय पानी री व्यवस्था ने चोखी बनावन सारू सगला जरूरी जतन करया जा रहा है। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। निर्वाचन आयोग आज वोटर लिस्टां रा विशेष गहन पुनरीक्षण SIR रा तीजा दौर रो ऐलान कर दिनो। 16 राज्यां और केंद्र रा राज वाला 3 प्रदेशां माय ओ अभियान चलायो जावेला। प्रदेश माय जनगणना 2027 रा तहत डिजिटल स्वगणना रो काम चल रियो है। पाली जिला माय देसुरी ब्लॉक रो तिखी गांव स्वगणना पूरी करन

0: विशेष गहन पुनरीक्षण SIR राती जा दौर रो ऐलान कर दिनो। 16 राज्यां और केंद्र रा राज वाला 3 प्रदेशां माए वो अभियान चलायो चावेला। प्रदेश माए जनगणना 2027 रा तहत डिजिटल स्वगणना रो काम चल रियो है। पाली जिला माए देसुरी ब्लॉक रो तिखी गांव स्वगणना पूरी करण वालो पहलो गांव बनक्यो है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर बजरंग सिंह आ जानकारी दीनी। वे बतायो के गांव वाला शिक्षक उमेश कुमार मेवाड़ा का न्यू तकनीकी जानकारी हासिल कर मोबाइल जरिए खुद पंजीकरण कीना। गृह मंत्री अमित शाह कहो है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF 20 साल रकम भगत माई जनता रो भरोसो जीत लिनो है। वे आज गाजियाबाद माए NDRF रा राष्ट्रपति ध्वज समारोह माए बोल रहा है। गृहमंत्री कहो कि देश माए कणी ठौड़ आपदारी सूरत माए NDRF री मौजूदगी लोग सुरक्षित महसूस करे है। वह कहो कि किणी सशस्त्र बल ने राष्ट्रपति ध्वज नवाजनो वांसारू माथो ऊंचो करण री बात वे है।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा साहस शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: अरब मौसम प्रदेश में पारो थोड़ो उतरन रा आसार है। आज और कल बीकानेर जयपुर और भरतपुर संभाग और शेखावाटी हल्का माए जोरदार बायरो बाजन सागे कठे कठे हल्की बरसात री संभावना है। इन पाछे 17 मई राजरा आतुणी हल्का माए पारो ओजू चढ़बा रा आसार है। प्रदेश लंकाऊ उगनी हल्का माए तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस रे आरएसआर रेवन री संभावना है। इन बीचे लाडला 24 घंटा माए राज्य माए कठे कठे बादलों री गाज और आंधी सागे बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब लाडला 24 घंटा माए सबों बत्तो तापमान फलौदी माए 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी चियो। फौज माए भर्ती सारू ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE 1-12 जून ताई फैला। प्रदेश रा 11 शहरां रा 32 केंद्रां माते वेवन वाली ई परीक्षा रा एडमिट कार्ड कालू आधिकारिक वेबसाइट नू डाउनलोड करिया जा सकेला। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन आ जानकारी दीनी। वे बतायो के अजमेर अलवर बीकानेर जयपुर और जोधपुर समेत प्रदेश रा न्यारा न्यारा केंद्रां माते अग्निवीर सिपाही फार्मा और धार्मिक शिक्षक सरीखा न्यारा न्यारा ओहदा सारू आ परीक्षा ली जावेला। भरतपुर रा केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र री ओरू सिखावण शिविर लगार किसाना ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड रे बारा माई जानकारी दीरी जी। अनुसंधान निदेशालय रा निदेशक डॉक्टर विजय वीर सिंह बतायो के मृदा स्वास्थ्य कार्ड रे जरिए किसान खेत री मिट्टी माए नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश और जैविक कार्बन सरीखे चीजा री ठाक कर सके है। शिविर माए किसाना ने सरसों री उन्नत किस्मा मिट्टी री जांच जैविक खेती और बागवानी प्रबंधन रे बारा माए विगतवार जानकारी दीरी जी। बुनकराओं जुड़ियो जयपुर ग्रामीण दफ्तर हथकरघा बुनकरा ने जिला स्तर रो नकद इनाम देवन सारू अर्जियां मांगी है। लाडला 3 साल नू हथकरघा बुनाई रो काम करन वाला बुनकर इनाम सारू अर्जी दे सके है। अर्जियां काल ताई जिला उद्योग केंद्र माए जमा कराई जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक कर फेर सुन ली रहो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो आतंकवाद रा बारा माए भारत रो एकदम साफ और करड़ो रुख। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ईंधन बचावन सारू जनताओं खुदरी गाड़ियां काम लेवनो कम कर और सार्वजनिक परिवहन ने बधावो देवन बाबत कहो। चुनाव आयोग वोटर लिस्टाना पुनरीक्षण रा काम SIR रा तीजा दौर रो ऐलान कीनो। और प्रदेश माए आवता दिना पारो थोड़ो उतरन रा आसार। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी माई प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर संध्या के 7 बजे हैं। ये समय है हमारे ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम ग्रामीण जगत का,

0: कार्यक्रम सुनना सगळा भाया अर बहना ने आपरे हेतळे भरत कुमार जाजडरा अर
1: आपरी बहन मुक्ता जैंडा घणान घणा राम राम
0: राम ही राम भाई लोगा। और भाई लोगा देखो तावड़ो तो दिन रहा इतो तपे है और लाई रे मैंने कठी आनो जानो दूर हो जावे पण चौपाल आने रो तो कोड इसो वे के पूछो मती गुगरिया बन जावे जन ठावे ने के चौपाल आनो वे। और अठे तो आज आ ऐसे थी है कि सिंजरे भगत भी अबार यहाँ गर्मी महसूस हो रही है लाई जकी है बीरो असर अबार भी आ रही है। तो ई गर्मी मैंने देखा कि सघणो घणो तापमान में उतार चढ़ाव जको है वो ई महीने में नहीं आया करे है पर जड़ दरखत हुए और जड़ दरखत नहीं हुए बट तापमान में घणो फर्क दिखे।
1: और भरत भाई आपा देख रहे हैं कि तीन चार दिन सो सिंजा गए वक्त है नहीं मौसम बिल्कुल बदल जाया करे आंधी आप पूरे आसमान में छा जाए जिको धरती रो जिको तापमान है नहीं बहुत तो बढ़ी रही है और ये सुखाई है कि पानी रो स्तर भी कम हो रहा है और मौसम रो जिको बदलाव है नहीं वो आपा ने दिखाई दे रही है। आपा देखा कि आजकल जी ही गर्मी पड़े नहीं तो मौसम बदल जावे है पर्यावरण रो असंतुलन आपा इन्हें कह सका।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पर्यावरण असंतुलन रे मैंने सबसे बड़ी जकी चीज़ है अपन महत्वपूर्ण है बाहे दरखत लगानो। दरखत रो कई महत्व है जो देखो है नहीं कि नहीं तो देख लो कि तावड़ो जो है और तावड़े रे और दरखत रे नीचे तापमान रे मैंने घणो फर्क नजर आवे। और अगर वो तो एक जगह दरखत है अगर सगड़े दरखत हुआ है तो तापमान आप ही आप कम हो जैसी ऐसी स्थिति में गर्मी क्या रह सी।
1: भरत भाई जी दरखत गिरी आप बात करिए कि दरखत लगावा तो आपा ने पर्यावरण तो संतुलन रहे सागे सागे जिकी है आपा ने शुद्ध हवा मिलसी बरसात में भी मदद मिलसी धरती भी ठंडी रह सी और इन अलावा जिका अपना पशु है अपाणो दीणो दापो है वो भी बढ़ेलो और वह पशु जिका ताप सु परेशान हो रहे नहीं वह भी सुरक्षित रह सी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखो खाली पर्यावरण की जब बात करा दरखत ही कौन है इर मैंने वन्य जीव है बिहारी भी आपने रक्षा करने की जिम्मेदारी आवे है इर अलावा प्रकृति री जिकी भी चीज़ें सब री सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आप रही है और सगड़ो मिल रही तो पर्यावरण बने आप रखने अगर कोई पानी रो साधन है कोई स्रोत है तो वो भी साफ सुथरो रहे अगर कोई तालाब है नाडी है तो भी आगोर जकी है भी खाने कोई गंदगी है कचरो नहीं है बात तो पूरे गांव की जिम्मेदारी है कि नहीं है।
1: है भरत भी। और भरत भाई देखो अपना जिका गर्मी रो मौसम है ई गर्मी रे मौसम है जिका अपना पशु है बारो भी अपन ने ध्यान रखनो है अपन जिया की तावड़ो पड़े तो तावड़ो पड़े भी सो पहला ही बाने अंदर बांध देवा बांगो जिको रहन रो जिको जगह है बिने चौकी साफ सुथरी रखा और हवादार होनी चाहिए और चारों तरफ सो बिने तिरपाल है या कोई भी चीज़ें भी सो ढक रखा और पीवण को और पोषण पोषण युक्त बने खाणो भी देवा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और खुदरे भी खाने रो ध्यान रखना है सागे सागे आपारे जो को पशुधन है बीरे भी ध्यान रखना है। पर एक बात और है सा तावड़े मैंने जट तक हो सके है जाऊण बिने टालने कोशिश करो कोशिश करो कोई काम सुबह ऐसे ही हो जाए क्योंकि दिन रहा बगत लू पड़े और लू लाग जावे नहीं के नहीं तो पछे थोड़ो तकलीफ रो काम हो जाए इस वास्ते बढ़िया हो रही कि सुबह या सिंजे जर तक उसे कह काम करो रे कट्ठी भी जावे नहीं पानी जरूर रखना है सागे आप रे।
1: भरत भाई पानी रे सागे सागे जी अभी बाहर निकला तो मुँह रे कपड़ों ही बांध लें जिसू का ही है कि जिकी लू बजे नहीं बिसू भी आपाणो मतलब बचाव हुए। और भरत भाई आपा बात करा जिका अपना घर रहा पालतू पशु है बारो आपा ये लू रे मौसम है किया बांगो ताप घाचू बांगो बचाव करा तो वही है कि पशुआ ने बारे नहीं छोड़ा और अगर पशु मतलब हांकड़ हांपण लाग जाए या कमजोर पड़न लाग जाए या भी मैं कोई खाणो छोड़ देवे तो ऐस सगला जिका भी अपन ने लक्षण दिखे तो सबसे पहला अपन का ही करना है कि कोई चोखे से पशु चिकित्सक ने दिखाना है और सलाह

0: लेनी है और भी रहे अलावा आपा पशु वालों जी को खान पान है नहीं भी पर ध्यान देनो है ब मैं जिया कि आपा हरो चारू है और आपा बात करा चोखो स्वच्छ पानी बने पिलाणु है जिस उगाई आपा ना जी का पशु है वे सुरक्षित रहसी।
1: बिल्कुल बिल्कुल आ बात तो थे सही कही पर अब देखो भाई लोग है जगह अडीग रहा है कोई गीतड़ दार वास्ते है
0: तो भरत भाई बने चोखो सो पनिहारी रो गाणो सुनावा और जी को धीरा सेन रो गायोड़ो है
1: सुनाओ फिर।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
6: जलवायु और भूमि पर जीवन, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण भूमि की क्वालिटी गिर रही है, पौधे और जानवर लुप्त हो रहे हैं और रेगिस्तान बढ़ रहे हैं। जंगल, आर्द्र भूमि और घास के मैदान जैसे महत्वपूर्ण स्थान जो इंसान और प्रकृति दोनों की मदद करते हैं, आज काफ़ी दबाव में हैं। वनों की कटाई और अत्यधिक चराई जैसे

0: स्थिर तरीके इन खतरों को और बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर हम जमीन का सही और टिकाऊ उपयोग करें, पेड़ पौधे दोबारा लगाएं और पर्यावरण को सुधारें, तो इससे प्रदूषण कम होगा और जीव जंतुओं की रक्षा भी होगी। यह कदम एक सुरक्षित और मजबूत जलवायु वाले भविष्य के लिए जरूरी है। क्या आप जानते हैं, आज दुनिया की एक चौथाई से ज्यादा जानवरों और पौधों की प्रजातियां लुप्त होने के किनारे पर हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: तो भरत भाई अभी आपा मीठो सो गीतड़लो सुनियो और संदेशा सुनिया और आपा देखा कि जी की आपानी गांव सरकार है बा अपन विकास वातर बहुत सारा कार्य कर रही है और ये में ही है कि इन वास्ते आपानी सरकार जी का बहुत सारा महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। तो अभी मैं कही है कि एक बहुत ही चोखी योजना ले रही है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना जी की अपन वास्ते बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई है और इन योजना का जो उद्देश्य है वो गरीब परिवार ने पक्का घर देना बारी सुरक्षित बने उपलब्धता करवानी और जिका परिवार कने घर कोनी बने सरकार आर्थिक सहायता दे रही है।
1: इसके अलावा एक बात और है कि प्रधानमंत्री आवास योजना मैंने कई भाई लोग जगह है आबार लाभ ले चुके है पर देखने में आ रही है कि कई आबार भी आलस कर रहा है खाली पंचायत जाने आलस फार्म भर देवा। देखो आप ही आप तो क्या निठा पड़े को नहीं ठीक है पंचायत जाओ और सर्वे वास्ते आवे बीटे बताओ या फिर ठीक है आपके बारे में पूरी जानकारी दो और योजना का लाभ लो आज ही थे सरपंच साहब खन जाओ पंचायत कार्यालय जाओ काल जाओ और यहाँ मिलो थाने जानकारी दे सी बे और वीरो लाभ लियो जा सके।
0: और भरत भाई आप देखो बात कर रहा अपने जी की अक्षय ऊर्जा है नी बिंगा बारे में भी आजकल आप देखा कि जी की बिजली री मांग है नी लगातार बढ़ती जा रही है। कोयलो पेट्रोलियम जी का साधन है वे अपन खन सीमित है और पर्यावरण ने भी वह नुकसान पहुंचावे इन वास्ते कही है कि सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा और जी की बायोगैस जी की अक्षय ऊर्जा है वह अपन ने अपनानी चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है पर देखो सबसे पहली बात तो आया है कि अपर जगह पालतू पशु है नहीं माने लूसू बचावन रो ज्यादा जतन करने जरूरत है।
0: हाँ
1: है नहीं देखने में वो एक रहे कि पशु कहीं हुआ है कि कई बार बैठा रहे छपरे खाने या कोई छिया में थोड़ी देर में तावड़ो बदल जावे और तावड़ो बदल जाने थोड़ी देर पहले छिया में जगह तावड़े में तावड़े में बैठा रहे और इसी स्थिति में मैंने लू लागने की संभावना है। दूसरो वो भी देखा कि कई बार गाय रे छपरो जो को हुए है या पर गाय भैंस जो भी है छपरे मैंने पानी दुनगेर भरूड़ हुए और वो दोपहर लाए रे मैंने कहीं तातो हो जाए और तातो हो जाए जन मन कौन करे पीने रहे जन वो एक एक गुटको ले दो दो गुटका ले रहे जाए और इसी स्थिति में मैंने पानी की कमी होने लग जाए। तो देखो जहाँ आपने थोड़ा ठंडो पानी चोखो लागे नहीं तो बाने भी लागे तो जरूरी है कि पानी जो है सजल पानी यहाँ पर रहे इसी व्यवस्था करनी है और लू नहीं लाग जाए वास्ते दोपहर टाइम रे मैंने तो बिना चोखो छपरो बना ही रखना है बिर मैंने। और अब भाई लोगों ने नजर करा एक चोखो से गीतर लो।

0: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

0: है तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।
1: तुझको आशिकी वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: भरत भाई, आप देखो थोड़ी देर पहला गीतड़ों पहला एक योजना के बारे में चर्चा करी ही, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। इन योजना का अनेक फायदा है, जहाँ की गरीब परिवार ने सम्मानजनक आवास देनो, महिला ने प्राथमिकता देनी, स्वच्छ शौचालय, बिजली और पानी जैसी मूलभूत की सुविधा है बिरो समावेश अंदर है, और ग्रामीण विकास और रोजगार ने बढ़ावा देनो है।
4: इन अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना रे अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 उलेर 1,30,000 तक री सहायता सीधे बैंक खाते मैंने दी है, और 9,95 दिन री मजदूरी जकी है बा भी दी जा करे है। बा जकी है विकसित भारत जी राम जी की योजना है, बीरे अंतर्गत दी जा करे है। और अब भाई लोगों ने निजर करा गीतड़ लो सुवटियों।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: मुक्ता बहन, देखो ऊर्जा जब बात करा नहीं अपा, सगलों बढ़िया तो लगे अक्षय ऊर्जा, और अक्षय ऊर्जा यानी कि इसी ऊर्जा जगह कदी खत्म ही नहीं हुआ है, चाहे बा सूरज में आने वाली ऊर्जा हो, चाहे बा पवन चक्की से आने वाली ऊर्जा हो, या फिर पानी से आने वाली ऊर्जा हो। और यह जद साधन अपना वन जन पर्यावरण ने भी नुकसान को नहीं पहुँचावे।
3: और भरत भाई ए जकी ऊर्जा होया करे नी, वह अक्सर आ पानी जकी बिजली री जकी जकी जरूरत होया करे नी, बांगे समाधान के रूप में काम आया करे। आपा देखा कि सदिया सु प्रकृति री जकी प्राकृतिक शक्ति रूप

0: उपयोग कर रहा नहीं। बापावन चक्की है, पानी रपैया रो उपयोग है, अन्न भंडारण है या बिजली देंडा जिका भी कोई साधन है, जबकि सूर्य रो जिको उपयोग होया करे है बा गर्मी और प्रकाश के लिए आग पैदा करया करे है। तो इन वास्ते कहीं है कि जिकी अक्षय ऊर्जा है वह हमेशा ही फायदेमंद रही है।
1: और देखो गीत संगीत है नी वे भी एक ऊर्जा दिया करे है। तो अब थोड़ा गीत संगीत खानी ले चला, समंदर खान री आवाज़ मैंने सुना बोली प्यारी लगे।

0: बोली प्यारी लागे गीतर लो सुनियो सा। और अब बारी है MSP री न्यूनतम समर्थन मूल्य ए भाव जो है प्रत्येक क्विंटल रहा है सा और 2026-27 आड़ा जो को वर्ष विपणन वर्ष है बीरी बोदरियों में गऊ 2585 जौ 2150 रुपया चना 5875
1: और मसूर दाल 7000 सरसों कैनोला 6500 रुपया कुसुम सूर्यमुखी 6540 रुपया
0: और छा ए तो हा MSP रबीरी। और अब जो है घड़ी इशारो कर रही है कि बेदा लेने भगत आ गया तो आप रहे तड़े भाई भरत कुमार जाजड़ा और
1: आपरी बहन मुक्ता जैन ने इजाजत दियो सा घणन घणा राम
0: राम राम राम राम, राम, राम।

ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम सुन रहे थे ग्रामीण जगत मीडी वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम में। सबसे पहले सुनिए

भूपेंद्र सिंह की गाई हुई इस गज़ल के साथ ही फिल्म सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर रात के 8 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए नितिन मुकेश के स्वर में फिल्म घर परिवार का ये गीत।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर रात के 8:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे लोक संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए किशन कुमार किराड़ू का गाया हुआ ये लोकगीत।

कार्यक्रम में सुनिए साजिदा बानो का गाया हुआ ये लोकगीत।

साजिदा बानो के गाए हुए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर रात के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके पश्चात रात 9 बजे अंग्रेजी में।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता, होर्मूज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के यूएई को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
3: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उन से संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणी के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी।

मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने ओएस मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए टीवी के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: एन इंडियन डो
6: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
5: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
8: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
7: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए क्षित कुमार वैद्यान।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
1: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को

0: एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव

0: श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
1: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
0: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय की तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Division Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। मेरी वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम में। सुनते हैं चंद गज़लें। सबसे पहले सुनिए नेहा हर्ष की गाई हुई

इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका, जिसे हम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। विज्ञान पत्रिका का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से किया जाएगा।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म का नाम था परदेस, स्वर था चित्रा और शंकर महादेवन और साथियों का। अब सुनिए किशोर कुमार के स्वर में फिल्म पिया का घर का ये गीत।

फिल्म का नाम था बोल राधा बोल, और युगल स्वर थे सुरेश वाडकर और साधना सरगम के।

का है समा प्यार का है समा दिल मुझसे कहे मैं तुमसे कहूँ

कुमार सानू, अलका याग्निक और उदित नारायण को आपने सुना। फिल्म का नाम था इक्का राजा और रानी। कुमार सानू और अलका याग्निक को ही सुनिए। फिल्म का नाम है आरजू।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके पश्चात अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।

0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In this session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the group supports change and reforms, reflects a multipolar world, helps countries reduce the risks by expanding partnerships, and believes in mutual respect and equal rights for all nations. Prime Minister Narendra Modi will arrive in United Arab Emirates capital Abu Dhabi tomorrow